मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। आज मंगलवार है, शक संवत 1948, भाद्रपद की 17वीं तिथि, तदनुसार 8 सितंबर 2026 सुबह के 5:56 हुए हैं। हमारी आज की ये सभा आरंभ होती है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे। गुजरात में प्रधानमंत्री वडोदरा से 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। साथ ही पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई गलियारे के 3 महत्वपूर्ण खंड राष्ट्र को समर्पित करेंगे। अहमदाबाद हवाई अड्डे पर मीडिया से बातचीत में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह मेगा प्रोजेक्ट अब पूरी तरह से तैयार हो चुका है।
1: डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ईस्ट और वेस्ट, ये दोनों देश के लिए बहुत बड़ी एक बैकबोन की तरह है ट्रांसपोर्टेशन में। वो प्रोजेक्ट अब कंप्लीट हुआ पूरी तरह से, उसको माननीय प्रधानमंत्री जी राष्ट्र के प्रति समर्पित करेंगे। ये परियोजना ऐसी है जिसमें कई वर्ष लगे, 2014 में प्रधानमंत्री ने उस काम को हाथ में लिया, हाथ में लेके जितनी भी उसमें प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व किया।
0: प्रधानमंत्री कई नई रेल और मालगाड़ी सेवाओं की भी शुरुआत करेंगे। इस अवसर पर वे जनसभा को भी संबोधित करेंगे। महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम तकनीक, डिजिटल भुगतान और वित्तीय समावेशन जैसे विषयों पर चर्चा होगी। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का 7वां संस्करण 11 सितंबर तक मुंबई में चलेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कल गोवा पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान किया। इस अवसर पर गृह मंत्री ने गोवा पुलिस की सेवा, व्यावसायिकता, साहस और अनुशासन की सराहना की। इससे पहले गृह मंत्री ने गोवा के पणजी में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता की। श्री शाह ने कहा कि पश्चिमी क्षेत्र के राज्यों के बीच अब कोई विवाद नहीं है। लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री ज़ेवियर बेटल ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी में भारत की स्थायी सीट की मांग का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान वैश्विक व्यवस्था की वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित करने के लिए इस निकाय में सुधार आवश्यक है। एक समाचार एजेंसी को दिए साक्षात्कार में श्री बेटल ने कहा कि भारत का आकार और वैश्विक महत्व एक विस्तारित सुरक्षा परिषद में इसके समावेश को आवश्यक बनाते हैं। उन्होंने कहा कि यूएनएससी का विस्तार उन प्रमुख देशों को शामिल करने के लिए किया जा सकता है जिनकी वर्तमान में कोई स्थायी भूमिका नहीं है। उन्होंने भारत और ब्राजील का उदाहरण दिया। विदेश मंत्री डॉ. जयशंकर ने कहा है कि अनिश्चितता के दौर में भी भारत और लग्जमबर्ग के बीच भरोसेमंद संबंध है। नई दिल्ली में लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री ज़ेवियर बेटल से मुलाकात के दौरान डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और वित्तीय सहयोग संबंधों के प्रमुख क्षेत्र हैं। आगामी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियन की नई दिल्ली यात्रा से पहले ईरान ने भारत को एक महत्वपूर्ण राजनयिक केंद्र बताया है। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि यह समूह द्विपक्षीय व्यापार और रणनीतिक सहयोग को गहरा करने के लिए मजबूत मंच प्रदान करेगा। एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघई ने नई दिल्ली के साथ अपने दीर्घकालिक संबंधों के महत्व पर बल दिया। ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने ग्रेटर नोएडा में माल और यात्री यातायात को अलग करने और गंगा एक्सप्रेसवे से बेहतर कनेक्टिविटी के लिए हापुड़ बाईपास तक 105 मीटर चौड़ी सड़क बनाई।

0: बनाने का प्रस्ताव रखा है। इस प्रस्ताव पर कल लखनऊ में औद्योगिक विकास मंत्री नंदगोपाल गुप्ता की अध्यक्षता में हुई बैठक में चर्चा की गई। प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि इस सड़क से नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गंगा एक्सप्रेसवे के बीच दूरी घटकर लगभग 30 से 40 मिनट रह जाएगी। बयान में कहा गया है कि लगभग 15 किलोमीटर तक कनेक्टिविटी बढ़ाने से ग्रेटर नोएडा गंगा एक्सप्रेसवे से जुड़ जाएगा। उत्तर प्रदेश में बारिश और बांधों से छोड़े गए पानी के कारण 25 जिलों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। पिछले 24 घंटों में राज्य के कई हिस्सों में तेज से मध्यम वर्षा हुई। शीतल देवी ने विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला में महिला कंपाउंड के व्यक्तिगत वर्ग के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। अहमदाबाद में आज सेमीफाइनल में शीतल देवी ने सरिता को हराया। खिताबी मुकाबले में शीतल का सामना कजाकिस्तान के एजेदा सेदान से होगा। वहीं कांस्य पदक मुकाबले में सरिता चीन की वांग हुईतिंग से खेलेंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। सुख में धन्यवाद और दुख में भगवान पर भरोसा, यही तो है हमारी भक्ति की गहराई। हमें ईश्वर पर सदैव विश्वास रखना चाहिए और भरोसा।

सुख हो या दुख, हर परिस्थिति में ईश्वर पर अपना विश्वास बनाए रखें। समय चाहे जैसा भी हो, वह कट ही जाता है। हे प्रभु, मेरी भक्ति में ऐसी शक्ति भर देना कि सुख मिले तो अहंकार न हो और दुख मिले तो विश्वास न खोऊं।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे?
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
1: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
3: आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। न धन मांगू न यश मांगू, बस इतनी सी आस रहे प्रभु, जब तक सांस चले इस तन में तेरे नाम का ही वास मांगू।

कहते हैं जहां सच्चे मन से माँ का नाम लिया जाता है वहां दुखों का अंधेरा अपने आप छट जाता है। माँ के दरबार में आने वाला कोई खाली नहीं जाता। बस श्रद्धा से सर झुकाकर माँ हर बिगड़ी बात बना देती है। माँ की भक्ति में जो शक्ति है वो दुनिया की किसी दौलत में नहीं है।

0: अनुराधा पौडवाल के गाए इस खूबसूरत भजन के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना अब यही समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए विचार बिंदु कार्यक्रम में राम प्रसाद बिस्मिल के विचार।
1: सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजवे का दिल में है। इन ओजस्वी पंक्तियों के रचयिता राम प्रसाद बिस्मिल किसी व्यक्ति का नाम नहीं, एक भावना का नाम है। देश के लिए बलिदान हो जाने की भावना, देश को निजी स्वार्थों से ऊपर रखने की भावना, जननी जन्मभूमश्च स्वर्गादपि गरीयसी के सार तत्व को पूरे सम्मान के साथ, पूरी आस्था के साथ स्वीकार करने की भावना। देश प्रेम उनकी सांसों में बसा था, उनकी रग रग में कूट कूट कर भरा था। मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए अथक प्रयास और अनगिनत बलिदान होते हैं, तब कहीं वो स्वाधीन हो पाती है, स्वाधीन रह पाती है। भारत माता को स्वाधीन करने का संकल्प तो सभी देश प्रेमियों में था, किंतु उनके रास्ते अलग अलग थे। महात्मा गांधी और उनकी विचारधारा के प्रति समर्पित उनके निष्ठावान अनुयायियों ने अहिंसा का मार्ग अपनाया और समान रूप से असहाय मानी जाने वाली जनता के संकल्प को ही एक अमोघ और शक्तिशाली अस्त्र के रूप में बदल दिया। सुभाष चंद्र बोस ने देश के प्रति समर्पित सैन्य शक्ति जुटाकर भारत माता के पैरों में पड़ी बेड़ियां काट देनी चाहिए। अनेक ऐसे भी थे जो क्रांतिकारी उपायों से उन लोगों को निर्बल करने में विश्वास रखते थे जिन्होंने देश को गुलाम बना रखा था, जैसा शहीद भगत सिंह, अशफाक उल्ला खां, राजगुरु, राम प्रसाद बिस्मिल आदि अनगिनत बलिदानी क्रांतिकारियों ने किया। बस जैसे भी हो, देश को आज़ाद कराना है, यही उनका लक्ष्य और संकल्प था। ये सिलसिला यहाँ से शुरू होता है और बहुत दूर तक चलता चला जाता है। देश ही उनकी पूजा था, उनकी आस्था था, उनका विश्वास था। ये पूजा कोई मंदिर में जाकर करे या मस्जिद में, गुरुद्वारे में करे या गिरजाघर में, इसकी गहराई में कोई अंतर नहीं पड़ता। अंतर डालते हैं वे जो निहित स्वार्थ को देश के हित से ऊपर मानकर चलते हैं, जो ये कहते हुए हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल जाते हैं कि मालिक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे, बाकी न मैं रहूं न मेरी आरजू रहे। उन्हें किसका डर, अपने लिए तो उनकी कोई कामना ही नहीं है, जो कुछ है सब मातृभूमि पर न्यौछावर है। क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म तो उत्तर प्रदेश में मैनपुरी के एक गांव में हुआ, किंतु लालन पालन शाहजहांपुर में हुआ, जहां उनके पिता पंडित मुरलीधर बाद में जाकर रहने लगे थे। बिस्मिल दसवीं कक्षा में थे तभी गेंदालाल दीक्षित की अध्यक्षता में उन्होंने क्रांतिकारी जीवन का श्री गणेश किया। मातृभूमि की मुक्ति के दीवानों के लिए संघर्षों और यातनाओं का मार्ग प्रशस्त था। कई बार उन्हें मृत्यु से साक्षात्कार करना पड़ा, कितनी ही बार पैसा न होने के कारण घास पात खाकर गुजारा करना पड़ा, किंतु वे अपने मार्ग पर अडिग रहे। आगरा, राजस्थान, नेपाल, जाने कहां कहां अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भटकते रहे। संध्या के समय 8 नवंबर की एक रेलगाड़ी हरदोई से लखनऊ जा रही थी। एकाएक काकोरी और आलमनगर के बीच गाड़ी एक खंभे के पास खड़ी हो गई। कुछ लोगों ने पुकार कर मुसाफिरों से कह दिया कि वे केवल सरकारी खजाना लूटने ही आए हैं, किसी को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाने का उनका इरादा नहीं है। इसके बाद गार्ड से चाबी लेकर तिजोरी बाहर निकाली गई और लगभग पौने घंटे में लूट की धनराशि लेकर क्रांतिकारी वहां से

0: चले गए। 25 सितंबर से गिरफ्तारियां शुरू हो गई और रामप्रसाद बिस्मिल भी पकड़े गए। उन्हें फांसी की सजा हुई और दिसंबर 1927 में गोरखपुर में इस आज़ादी के दीवाने को फांसी पर लटका दिया गया। अंतिम समय मातृभूमि से विदा लेते हुए उन्होंने कहा था, दिल फिदा करते हैं, कुर्बान जिगर करते हैं, पास जो कुछ है वो माता की नज़र करते हैं, खाने वीरान कहाँ देखिए घर करते हैं, खुश रहो अहले वतन, हम तो सफ़र करते हैं।
1: विचार बिंदु कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे राम प्रसाद बिस्मिल के विचार। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। लीजिए सुनिए कृषि जगत कार्यक्रम। कृषि जगत कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे डॉक्टर रघुराज सिंह से सुरेश कुमार की बातचीत। विषय है वर्षा ऋतु में पशुओं में लगने वाले रोग।

0: भैया आपन किसान भैया बहिनी हरेन जैसे कि पशुपालन करत हैं, तो पशुपालन में ये देखा जात बा कि आपन जैसे गाय है, भैंस है, भेड़ है, बकरी हैं, ये बरसात के टाइम में तरह तरह के रोग बिरामी घेर लेते हैं। तो इन बीमारियों से बचाव खातिर आज अपने बीच कार्यक्रम में भैया डॉक्टर रघुराज सिंह भैया प्रयागराज से आए हैं। तो अपने कार्यक्रम में हम आपका बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। और हम आपसे पहले ये जानना चाहे थे कि वर्षा ऋतु में पशुओं में जो लगने वाली प्रमुख बीमारियां बा और उनसे बच बचाव के खातिर हमार किसान भैया बहनी हरेन कौन कौन बातन का ध्यान रखें।
1: किसान भाई, आपको मालूम है कि पशु आपके लिए कितने उपयोगी हैं।
0: हाँ।
1: उनका बचाव करेंगे तभी आपके लिए फायदा भी होगा।
0: हाँ।
1: आपका भी होगा, समाज का होगा और देश का होगा
0: जी।
1: इसके लिए आप ये ध्यान रखें कि पशुओं की सेहत जो है वो बरकरार रहे। इसमें बहुत सी बीमारियां फैलती हैं। मूलतः ये है कि सबसे पहला चीज है कि पशु को पहली वर्षा से बचाना बहुत जरूरी है।
0: अच्छा।
1: इसका मुख्य उद्देश्य है।
0: हाँ।
1: कि जो पशु है उसकी अंदर की रोग प्रतिरोध क्षमता बनी रहती है।
0: हाँ।
1: और वो जीवाणुओं से विषाणुओं से लड़ने के लिए तैयार रहता है।
0: अच्छा।
1: इसलिए मेरा अनुरोध है कि किसान भाई अपने पशुओं को पहली वर्षा से अवश्य बचाएं।
0: अच्छा।
1: इसके साथ साथ बहुत सी बीमारियां ऐसी हैं जो जीवाणु से फैलती हैं, कुछ विषाणु से फैलती हैं।
0: हाँ, हाँ।
1: कुछ परजीवियों से फैलती हैं।
0: हाँ।
1: उसमें परजीवी दो तरह के होते हैं, आंतरिक भी होते हैं, बाहरी भी होते हैं
0: जी।
1: तो आप ये ध्यान रखें कि हमको इन जीवाणुओं से या विषाणुओं से जो बीमारियां होती हैं,
0: हाँ,
1: वो मूलतः जो जीवाणु से फैलती है उसको हम आप अपने क्षेत्र बोलते हो गला घोंटू बीमारी होती है।
0: हाँ डॉक्टर साहब, जैसे कि भी देखा जाता है कि बारिश के टाइम में गला घोटू है, खुरपका है, हाँ मुँह पका है और भी तरह तरह के बीमारी जैसे कि बुखार आ जाता है। तो ऐसे दशा में हमार किसान भैया बहनी हरेन अपने पशुओं का देखभाल कैसे करें बताएं।
1: सबसे जरूरी ये है किसान भाई,
0: हाँ,
1: कि जो बीमारियां फैलती हैं वो
0: जी
1: तुरंत नहीं फैलती हैं।
0: अच्छा।
1: वो कुछ समय लेकर के फैलती हैं। जैसे खुरपका मुंहपका है, लंगड़िया है या गला घोंटू है।
0: हाँ,
1: ये ऐसी बीमारियां हैं जो कि मई और जून में ये फैलना शुरू होती हैं। इसलिए
0: अच्छा।
1: वो वर्षा ऋतु में जाकर के नहीं लगाएंगे, कोई चीज़ नहीं केयर करेंगे, प्रवाह नहीं करेंगे उसकी।
0: हाँ,
1: तो वो अब बीमारी आगे फैल जाती है। तो किसान भाइयों से अनुरोध है कि वो पशु चिकित्सालय से मिल करके अपने पशुओं का मई जून में टीकाकरण करवा लें जिससे बीमारी ना फैलने पाए।
0: अच्छा।
1: और
0: भैया जैसे कि ये बतावें कि आपन बहुत से अपने पशुओं का बाह्य परजीवी भी जौन है जीवाणु ऐसे होते हैं कि बहुत परेशानी करते हैं अपने पशुओं का, तो ये भैया कौन कौन तरह के हमें इन उनके बारे में बता दें।
1: किसान भाई, आप देखते होंगे कि आपके पशुओं में जो जो किलनी लगती है ऊपर,
0: हाँ, हाँ,
1: दिखाई पड़ती होगी, वो जो बाड़े की जो आप जहाँ गाय भैंस बनती है,
0: हाँ,
1: वहाँ
0: हाँ,
1: देखेंगे कि उसकी किलनी

0: जो है वो अपनी दीवार में अंडे रख देती है, और
1: अच्छा
0: उसी से फिर आकर के वो अंडे बड़े होते हैं, लार्वा बनते हैं और आकर के पशु के ऊपर लग जाते हैं। तो ऐसी दशा में अपने बाड़े की सफाई रखें। और ये जो क्लिनिक बीमारियां फैलती हैं
1: हाँ
0: उसमें मुख्यतः खून में फैलने वाली बीमारियां हैं, जिनको
1: अच्छा
0: बचाव रखें, नहीं तो पशु कभी कभी मर जाता है, उत्पादन तो मिलेगा नहीं और पशु की मृत्यु भी जाती है। तो अपने जो किसान भाई हैं अपने पशुओं को ध्यान रखें कि किलनी से कैसे बचाएं, उसके लिए बहुत दवाइयाँ भी आती हैं। और
1: हाँ
0: जो अंदर परजीवी होते हैं
1: हाँ हाँ
0: उसमें कुछ लंबे परजीवी होते हैं और कुछ लीवर में लगते हैं, तो ऐसे कन दशा में अपने पशुओं को जो जो हरा चारा जो आप देते हैं नाले किनारे का, तालाब किनारे का,
1: हाँ
0: उससे
1: हाँ
0: बचाव रखें, जिससे पशु में वो रोग फैल नहीं ना पावे, जिसमें लीवर फ्लूक होता है
1: अच्छा
0: और
1: अच्छा
0: कुछ एस्केरिश होते हैं जो फैल जाते हैं, और पशु के अंदर जो माँ गर्भित होती है तभी
1: जी
0: उस समय बच्चे के अंदर पहुँच जाते हैं। और
1: अच्छा
0: इसके साथ में अभी कुछ बीमारियाँ ऐसी फैली हुई हैं, होंगे कि मक्खियों से बीमारियाँ फैलती हैं।

0: पशु की मृत्यु भी जाती है, तो अपने जो किसान भाई हैं अपने पशुओं को ध्यान रखें कि किलनी से कैसे बचाएं, उसके लिए बहुत दवाइयां भी आती हैं।
1: हाँ,
0: और जो अंदर परजीवी होते हैं
1: हाँ,
0: उसमें कुछ लंबे परजीवी होते हैं और कुछ लीवर में लगते हैं, तो ऐसे कन दशा में अपने पशुओं को जो जो हरा चारा जो आप देते हैं नाले किनारे का, तालाब किनारे का,
1: हाँ,
0: उससे बचाव रखें, जिससे पशु में वो रोग फैल नहीं ना पावे, जिसमें लीवर फ्लूक होता है।
1: अच्छा,
0: और
1: अच्छा।
0: कुछ एस्केरिश होते हैं जो फैल जाते हैं और पशु के अंदर जो माँ गर्भित होती है तभी उस समय बच्चे के अंदर पहुंच जाते हैं।
1: अच्छा।
0: और इसके साथ में अभी कुछ बीमारियां ऐसी फैली हुई हैं, देखते होंगे कि मक्खियों से बीमारियां फैलती हैं।
1: हाँ,
0: जो सारा फैलती है वो मक्खियों से फैलती है,
1: जी।
0: उसमें पशु जो घूमता है और पशु की मृत भी आती है। तो ऐसे में आप ये देखें कि हमारे किसान भाई अपने पशुओं को कैसे बचाएं।
1: हाँ,
0: और अभी खुरपका बीमारी जो है
1: जी,
0: वो बहुत ही नुकसानदायक है, पशु उसमें मरता तो नहीं है
1: हाँ,
0: लेकिन इतना पशु की स्थिति खराब जाती है कि वो न उत्पादन देता है, न चारा खाता है, न पानी पीता है, लार टपकती है। तो ऐसी दशा में उसको ध्यान रखें कि आप पशु को हर दशा में अपने पशुओं को टीका लगवा लें। अभी
1: अच्छा,
0: अभी आप एक नई बीमारी आप सुना होगा किसान भाई, लंपी वायरस फैल गया है।
1: जी,
0: उसमें क्या है कि पशु के अंदर गांठें पड़ जाए शरीर पर, और वो जो गांठें होती हैं कभी कभी बढ़ करके वो फूट जाती हैं, पशु चारा भी नहीं खा पाता है, बीमार रह जाता है और पशु की मृत्यु भी आती है। तो इन बीमारियों के बचाव के लिए टीके आते हैं, तो जीवाणु से बचाओ और विषाणु से बचाओ, जिसमें मुख्यतः हमारा जो HS जिसको हम बोलते हैं गलाघोंट,
1: अच्छा,
0: और लंगड़िया BQ बोलते हैं उसको, और FMD खुरपका मुँहपका, और जो लंपी वायरस बीमारी है इनके बचाव के लिए टीके आते हैं। तो किसान भाइयों से अनुरोध है वो संबंधित निकटतम पशु चिकित्सक मिलकर के अपने पशुओं का टीकाकरण समयानुसार मई जून में अवश्य करा लें, जिससे बीमारी फैलने ही न पावे।
1: अच्छा, तो डॉक्टर साहब, जैसे कि बहुत से हमारे पशुओं का चेचक भी एक रोग हुई जाता है, तो ऐसे दशा में किसान भैया बहनी हरिन कौन बातन का ध्यान रखें?
0: हाँ, पशुओं में जो थन के पास ज्यादातर थनैला जो होता है वो ऊपर एक छोटी छोटी फुंसियाँ दिखाई दाने पड़ते हैं,
1: जी,
0: जो थन होता है और जो जिसे दुहान करते हैं,
1: हाँ हाँ
0: उसमें भी वो छाले पड़ जाते हैं।
1: जी,
0: तो पशु जो दुहते हैं तो वो दुहने में समस्या पैदा करता है, दूध भी नहीं देता है। तो हम उन पशुओं को कम से कम जो पोटेशियम परमैंगनेट लाल दवा की से उसकी धुलाई भी कर सकते हैं, और
1: हाँ,
0: अपने जो हाथ सफाई रखें, दूसरे पशु को दूर रखें, जिससे दुहने के समय में उस पशु को बीमारी फैलने न पाए, ये
1: अच्छा,
0: ध्यान रखें आप।
1: और डॉक्टर साहब, जैसे कि हमारे पशुओं के शरीर में भी तरह तरह के दाद है, खाज है, खुजली भी हुई जाते है, जौने से अपन पशुओं जो उन्हें बहुत परेशान हुई जाते हैं, तो ऐसे दशा में किसान भैया बहनी हरिन कौन बातन का ध्यान रख?
0: हाँ, जो दाद खाज खुजली है उसकी तो पहले तो जरूरी पहचान कैसे करेंगे आप?
1: हाँ,
0: देखिए, पशु जो है दीवार किनारे या पेड़ किनारे अपने शरीर को रगड़ता है,
1: जी,
0: उसमें जुएं होते हैं, हैं, कभी कभी फंजाई से हो जाता है जिसे हम दांत कहते हैं।
1: हाँ,
0: तो इससे क्या होता है, दूसरे पशु में फैलता है,
1: हाँ,
0: और वो पशु परेशान रहता है। तो उन पशुओं को निकटतम पशु चिकित्सालय से मिल करके कुछ दवाइयाँ भी ले सकते हैं,
1: हाँ,
0: और बचाव के लिए सफाई रखें, गंदगी न हो, एक पशु दूसरे पशु से अलग भी रखें, जिससे बीमारी उसमें फैलने न पाएगा।
1: अच्छा, डॉक्टर साहब, जैसे कि बहुत से हमारे जो उन्हें परजीवी जनित जो उन्हें रोग जो उन्हें कीटाणु होते हैं, तो ऐसे दशा में किन बातन का ध्यान रखें किसान भैया बहनी हरिन, ताकि ये रोग से बचाव हो सके?
0: हाँ, सबसे जरूरी ये है कि जो परजीवी हैं, बाह्य परजीवी भी हैं, अंतः परजीवी भी हैं।
1: जी,
0: तो बाह्य परजीवी किलनी से बहुत नुकसानदायक है, उससे बचाव के लिए ये जरूरी है कि हम किलनी के चक्र को कैसे तोड़ें,
1: अच्छा,
0: जिससे कि हम आगे बीमारी से उसे बचा सकें। इसके
1: हाँ,
0: लिए हम दीवारों में चूना चूना फेंक सकते हैं और उसका पुताई कर सकते हैं, और पशुओं के शरीर पर जो आवश्यक दवाइयाँ हैं लगा सकते हैं, जिससे कि और जो आंतरिक परजीवी हैं उसके लिए हम जो किसान भाई हैं वो जो घास है नाले की उसकी न खिलाएं, नहीं वहाँ पर घोंघे होते हैं, उससे बीमारी फैलती है, वो जीवाणु आते हैं जिससे वो पशु खा लेता है और उसको बीमारी वो फैल जाती है, उससे पोंखता भी है और
1: अच्छा,
0: कभी कभी मृत भी होती है। तो इसी को ध्यान रखें किसान भाई।
1: अच्छा, तो भैया डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम में आए और फरिया

0: कृषि जगत कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर रघुराज सिंह से सुरेश कुमार की बातचीत। विषय था वर्षा ऋतु में पशुओं में लगने वाली बीमारियां। इसी के साथ ये कार्यक्रम यहीं समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में सुनिए दंत चिकित्सा में ध्यान देने योग्य बातें डॉक्टर राधा मोहन मिश्र से।
1: दंत चिकित्सा में मरीज को कुछ ऐसी बातों को जरूर ध्यान देना चाहिए जिसका अगर अनदेखा करें तो गंभीर समस्या का सामना करना पड़ सकता है। मुंह का इलाज में क्रॉस इन्फेक्शन यानी एक मनुष्य की बीमारी दूसरे मनुष्य में आसानी से जा सकती है या संक्रमण फैल सकता है, इसकी संभावना बहुत अधिक होती है। कोरोना काल में दंत चिकित्सक बहुत अधिक प्रभावित रहे क्योंकि संक्रमण का 100% संभावना थी। ऐसे ही न केवल कोरोना बल्कि और ऐसी संक्रमणकारी बीमारी बड़ी आसानी से दंत चिकित्सक या मरीज की अनदेखी में फैल सकती है। संक्रमण टीबी का, एचआईवी का, हेपेटाइटिस का, साधारण इन्फ्लुएंजा आदि कई बीमारी हैं। ऐसे में डॉक्टर एवं मरीज ये सुनिश्चित करें कि क्या क्लिनिक में उपयोग होने वाले इंस्ट्रूमेंट न केवल साफ हों बल्कि ऑटोक्लेव हों। ऑटोक्लेव एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें न केवल बैक्टीरिया, वायरस, फंगस समाप्त हो जाते हैं बल्कि उनके स्पोर्स जिसमें क्षमता होती है कठिन से कठिन परिस्थिति में जीवित रहने की, वो भी मर जाते हैं। अतः कोई भी इलाज करवाने से पहले इस बात की जानकारी पुख्ता कर लें कि इंस्ट्रूमेंट ऑटोक्लेव है कि नहीं। जैसा कि हम जानते हैं कि टीबी की बीमारी खांसने और छींकने से निकलने वाले महीन लार के कण में मौजूद बैक्टीरिया से फैलते हैं, ऐसे में दंत चिकित्सा में उपयोग किए जाने वाले इंस्ट्रूमेंट अगर ऑटोक्लेव ना हो तो यह संक्रमण फैल सकता है और हमें पता ही नहीं चलेगा कि कैसे हुआ। ऐसे ही एचआईवी, हेपेटाइटिस जैसी जानलेवा बीमारी भी फैल सकती है। इसलिए अनुरोध है मुंह में किसी प्रकार का इलाज कराने से पहले सुनिश्चित करें कि इंस्ट्रूमेंट ऑटोक्लेव हो। साथ ही मरीज सुनिश्चित करे कि सुई नई हो, पुरानी या इस्तेमाल की हुई नहीं। दांत निकलवाने के बाद एक्सरे जरूर करवाएं जिससे ये भ्रम ना हो कि दांत पूरा निकला कि नहीं। कई बार छोटा सा दांत का बचा हुआ टुकड़ा गंभीर बीमारी का कारण बन सकता है। दांत निकलवाने के बाद जो खून का थक्का जमने लगता है निकले हुए दांत की जगह, उसे संभाल कर परिपक्व होने दें। अगर खून का थक्का बोलने, खांसने, कुल्ला करते वक्त निकल जाए तो ड्राई सॉकेट नाम की समस्या उत्पन्न हो जाती है जिसकी वजह से गंभीर दर्द का सामना करना पड़ सकता है। कई बार तो दर्द की दवा भी सही से काम नहीं करती और जो घाव 2-4 दिन में ही सही होने लगता है, अब 15 से 20 दिन या ज्यादा समय भी लग जाता है। ऐसे में कोई लापरवाही ना करें। दांत निकलवाने के बाद अपना विशेष ध्यान रखें। दांत निकलवाने के बाद अगर खून बंद ना हो तो तुरंत ही कॉटन घाव के ऊपर रखकर दबा दें और 15 मिनट तक दबा कर रखें। अगर फिर भी बहे तो दंत चिकित्सक की सलाह लें। 24 घंटे सिर्फ ठंडा या नॉर्मल खाना ही खाएं। बार बार थूकना या कुल्ला ना करें। सुन का इंजेक्शन अगर नीचे के जबड़े में इलाज के लिए दिया है तो जुबान भी सुन पड़ जाती है। ऐसे में ज़्यादा बातचीत ना करें क्योंकि कई बार दांत में जुबान कट जाती है और सुनपन की वजह से उस वक्त तो पता नहीं चलता पर बाद में जुबान में घाव हो जाता है और बेहद पीड़ा सहना पड़ता है। अतः मुंह में किसी प्रकार की सर्जरी हुई हो और टांका लगा हो तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि टांका ना टूटे। अगर टांका टूट गया तो घाव सूखने में समय लगेगा और बेहद पीड़ा का भी सामना करना पड़ सकता है। मुंह की सर्जरी से पहले मरीज खाना अवश्य खाए। खाली पेट सर्जरी नहीं हो तो बेहतर है क्योंकि मरीज सिंकोप या बेहोश हो सकता है और सर्जरी के बाद तुरंत कुछ खाया पिया भी नहीं जा सकता, इसलिए मरीज खाली पेट सर्जरी ना करवाएं। ध्यान देने बात यह है कि चूंकि लोकल एनेस्थीसिया में सर्जरी हो रही है इसलिए ऐसा कर सकते हैं। अगर जनरल एनेस्थीसिया है तो 24 घंटे खाली पेट अनिवार्य है। रूट कैनाल ट्रीटमेंट के दौरान जिस दांत में इलाज हो रहा है उसमें कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए। कभी कभी दर्द होने लगता है और जिसको ठीक होने में काफ़ी समय लग जाता है। अगर दंत चिकित्सक से रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बाद भी एक्सरे की कॉपी जरूर लें, भविष्य में दिक्कत

0: होने पर या क्रॉस चेक करने में मदद मिल सके। ज्यादातर दांत में रूट कैनाल ट्रीटमेंट तभी होता है जब वो काफी हद तक खोखले हो जाते हैं। ऐसे में दांत के ऊपर कैप जरूर लगवाएं रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बाद। ज्यादातर आम धारणा है कि जब सारे दांत निकल जाएंगे तो ही बत्तीसी लगवाएंगे। यह बचे हुए दो चार दांत निकलवा के बत्तीसी लगवाते हैं। बताना चाहूंगा कि अगर एक भी दांत अगर मुंह में है तो उसे ना निकलवाएं, क्योंकि वो आपकी बत्तीसी को और अच्छे से काम करने चबाने में चमत्कारिक रूप से मदद कर सकता है। दांत निकलवाने से आंख पर कोई असर नहीं पड़ता। दांत की सफाई करवाने से दांत खराब नहीं होते बल्कि मसूड़े स्वस्थ और दांत की उम्र बढ़ती है। साथ ही मुंह से बदबू और पैरिया से भी निजात मिल सकता है।
1: दंत चिकित्सा में ध्यान देने योग्य बातें। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर राधा मोहन मिश्र से। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। लीजिए सुनिए आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में।

सात बजे सुनिए श्री रामचरित मानस से संगीत में पाठ, फिल्मों से लिए गए भजन का आनंद लीजिएगा 7:10 पर। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में 7:30 पर सुनिए प्रियंका मलिक का उपशास्त्रीय गायन, 12:15 पर प्रेम मलिक जैन का गिटार वादन और रात 10:30 पर प्रेम कुमार मलिक का धमार गायन। 8:45 पर कार्यक्रम होगा नमस्कार प्रयागराज, प्रस्तुति होगी अभय कांत तिवारी की। लखनऊ केंद्र से उर्दू कार्यक्रम सुनेगा 9:30 पर, 9:50 पर और रात 7:45 पर सुगम संगीत का कार्यक्रम सुन सकेंगे।

10:30 पर लोकमाधुरी कार्यक्रम होगा। एक ही कलाकार ये कार्यक्रम सुनेगा दिन में 11 बजे। 12:30 पर हेलो फरमाइश कार्यक्रम सुनेगा, प्रस्तुति होगी मधु कुमार की। 1:15 पर बहनें सुन सकेंगी अपना कार्यक्रम पनघट। कार्यक्रम में रंजना त्रिपाठी के गाय लोकगीत के साथ सुनेगा सुभि मालवी के से कंचन श्रीवास्तव की बातचीत। विषय है महिलाएं सशक्त कैसे बनें।

2:30 पर सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम NCERT का उमंग। शाम 5 बजे धरती के गीत कार्यक्रम होगा। 6:30 पर पंचायत घर कार्यक्रम में

बाबूलाल दिवाकर के गाए लोकगीत के साथ सुनिए अवधेश चंद्र यादव की वार्ता डेयरी उद्योग में जैव प्रौद्योगिकी। 7:31 पर संस्कृत कार्यक्रम होगा। 8:30 पर सुनिए सबरस कार्यक्रम। गजलों पर आधारित कार्यक्रम सुनेगा कहकशा 9:30 पर। ये थी रूपरेखा आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार।

0: शस्त्राणां स्थानान्तरणं कुर्वन्तः नैके आतंकिनः आक्रान्ताः। भारतीय पारंपरिक क्रीडा क्षेत्रे नूतन इतिहासः रचितः। किर्गिस्ताने संधिपत्रे हस्ताक्षरं विधाय भारते विश्व बेल्ट मल्लयुद्ध स्पर्धायाः मार्गः प्रशस्तः कृतः। अस्यां स्पर्धायां नागा मल्लकला जागतिक मञ्चे स्वकौशलं दर्शयिष्यन्ति, येन भारतीय क्रीडकानां उत्साहः द्विगुणितः भविष्यति इति वार्ताः।
1: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। लीजिए सुनिए श्रीरामचरितमानस से संगीतमय पाठ, संगीत सतीश भाटिया का।

विश्व मोहिनी के स्वयंवर में अपने को कपि के रूप में पाकर नारद मुनि के क्रोध की सीमा ना रही। वो उपहास के पात्र बन गए थे। ब्राह्मणों के वेश में वहां उपस्थित शिव के गणों ने उनकी खिल्ली उड़ाई थी। नारद मुनि का आक्रोश श्री हरि के प्रति उमड़ा, जिन्होंने सुंदर रूप का वरदान मांगने पर उन्हें बंदर का समूह और भयंकर शरीर दे दिया। अतः मुनिवर ने उन्हें जी भरकर कोसा, कहा, जो शरीर धारण कर तुमने मुझे ठगा है तुम्हें वही शरीर मिलेगा, ये मेरा शाप है। तुमने मेरा रूप बंदर का सा बना दिया, अतः बंदरों की ही सहायता से तुम्हारे कष्ट दूर होंगे। प्रभु ने नारद जी का शाप शिरोधार्य किया और अपनी माया लीला वापस ले ली। नारद मुनि अत्यंत भयभीत हो गए। उन्होंने प्रभु के चरण पकड़कर आक्रोश में शाप देने के लिए क्षमा मांगी। प्रभु ने उन्हें शांति प्राप्त करने के लिए शिवजी का शतनाम जपने का परामर्श दिया।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस से संगीत में पाठ, संगीत सतीश भाटिया का था। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए फिल्मों से लिए गए भजन का ये कार्यक्रम। पहली रचना हमने ली है लगान फिल्म से, आवाज उदित नारायण, लता मंगेशकर की, बोल जावेद अख्तर की और संगीत ए आर रहमान का।

अगली भक्ति रचना सुनिए अग्निपथ फिल्म से। अमिताभ भट्टाचार्य के बोल, संगीत अजय अतुल का, आवाज अजय की।

अग्निपथ की इस खूबसूरत भक्ति रचना के साथ फिल्मों से लिए गए भजन का ये कार्यक्रम अब यही समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण राज्य के 2 दर्जन से अधिक जिले बाढ़ की चपेट में, राहत और बचाव कार्य जारी। मौसम विभाग ने पूर्वी जिलों में आज भारी बारिश की चेतावनी दी। उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच 14 नए रूटों पर बसें चलाने की तैयारी। दोनों राज्यों के परिवहन मंत्रियों ने लखनऊ में बैठक कर विस्तार से चर्चा की। बागपत में हुए सड़क हादसे में 13 लोगों की मौत, करीब 1.5 दर्जन से अधिक लोग घायल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के परिजनों और घायलों को आर्थिक सहायता देने के दिए निर्देश। और स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2026 में लखनऊ को मिला देश में पहला स्थान। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण 25 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार बाढ़ग्रस्त इलाकों की स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य जारी है। एक रिपोर्ट।
1: राहत आयुक्त कार्यालय के मुताबिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत दलों की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्तर पर नाव और मोटर बोट तैनात की गई है। बाढ़ के बाद संक्रमण और जल जनित बीमारियों की आशंका को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग को भी पूरी तरह सक्रिय रखा गया है। उधर बदायूं और बलिया में गंगा, शाहजहांपुर में राम गंगा, बाराबंकी, अयोध्या और बलिया के तुर्तीपार में घाघरा और लखीमपुर खीरी में शारदा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। पीलीभीत में पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने से शारदा और देवहा नदियां उफान पर हैं। बाढ़ की आशंका के मद्देनजर प्रशासन की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। पूरनपुर, सदर, कलीनगर और बीसलपुर तहसील क्षेत्र के करीब 3 दर्जन गांवों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। ट्रांस शारदा क्षेत्र में फसलें और संपर्क मार्ग डूबे हुए हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: इस बीच मौसम विभाग ने आज राज्य के पूर्वी जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच बस सेवाओं को बेहतर बनाने को लेकर कल लखनऊ में प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह और बिहार के परिवहन मंत्री दामोदर रावत की महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में यूपी रोडवेज और बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के बीच बस सेवाओं के विस्तार और नए मार्गों को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री ने बताया कि बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच पहले से संचालित 25 मार्गों के अलावा बिहार ने 14 नए मार्गों पर परिवहन की बसों के संचालन का प्रस्ताव दिया है।
2: 25 रूटें पहले बिहार और उत्तर प्रदेश के पहले से संचालित था और उसका एक्सटेंशन करने का बात थी 10 साल के लिए, और 14 नए रूट बिहार की तरफ से प्रस्तावित किया गया है। कुछ उसमें हम लोगों ने और भी अतिरिक्त रूट बढ़ाने के लिए कहा है। प्रतिदिन जो है लाखों लोग बिहार से उत्तर प्रदेश आते हैं, लाखों लोग उत्तर प्रदेश से बिहार में जाते हैं, तो सबके आवागमन की सुविधा रखना हम सबका दायित्व है। इस पर हम सब लोगों ने एक एक बिंदुओं पर निर्णय किया है।
0: केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने कहा कि केंद्र सरकार ने तेल विपणन कंपनियों को घरेलू रसोई गैस एलपीजी रिफिल बुकिंग के नियमों में बड़ी छूट देने का निर्देश दिया है। अब देश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में सभी घरेलू एलपीजी उपभोक्ता 25 दिनों के अंतराल पर सिलेंडर बुक करा सकेंगे। श्री गोपी ने कहा कि देश में एलपीजी आपूर्ति में सुधार और बैकलॉग में आई भारी कमी को देखते हुए सरकार ने यह पाबंदी हटाई है। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी कल वाराणसी से

0: नौवें राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ करेंगी। राष्ट्रीय पोषण माह का इस वर्ष का विषय है हमारी आंगनबाड़ी हमारी जिम्मेदारी। इसके अंतर्गत प्रत्येक नागरिक से आंगनबाड़ी केंद्रों की जिम्मेदारी साझा करने का आह्वान किया गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। बागपत में रविवार की मध्य रात्रि के बाद हुए एक सड़क हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब 1.5 दर्जन से अधिक लोग घायल हैं। यह हादसा जिले के खेकड़ा थाना क्षेत्र में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर बड़ा गांव टोल के पास तब हुआ जब एक तेज रफ्तार कैंटर ने श्रद्धालुओं से भरे वाहन में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगने से सवारी वाहन अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गया। ADG मेरठ भानु भास्कर ने बताया कि हादसे के बाद घायलों को इलाज के लिए अलग अलग अस्पतालों में भर्ती करा दिया गया।
1: बहुत ही दुखद है और मृतकों एवं घायलों के परिवार के साथ परिजनों के साथ जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक और पूरी टीम की लगातार बातचीत चल है। ये सभी लोग मूलतः जो है बदायूं जनपद के थे। वो राजस्थान में पूजा अर्चना के लिए 2 सितंबर को गए थे। 5 दिन बाद पूजा अर्चना पूरी करके वापस आ रहे थे तभी दुर्घटना हुई है। बदायूं प्रशासन बदायूं पुलिस जो है लगातार इनसे संपर्क में है और जितनी सुविधा मुहैया हो सकती है वो कराई जा रही है।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बागपत हादसे पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता देने के निर्देश दिए हैं। इस बीच बदायूं जिले के फैजगंज बेहटा थाना क्षेत्र में भी मुड़िया धुरे की गांव के पास कल देर शाम एक रोडवेज बस और बाइक की आमने सामने हुई टक्कर में बाइक सवार 3 लोगों की मौत हो गई। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2026 के तहत राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम में लखनऊ को राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले शहरों में पहला स्थान मिला है। स्वच्छ वायु दिवस के अवसर पर पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ओर से नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में लखनऊ की महापौर को इस उपलब्धि के लिए सम्मानित किया गया। इसके लिए 1,50,00,000 रुपये का नकद पुरस्कार भी प्रदान किया गया। एक रिपोर्ट।
2: स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2026 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की कैटेगरी 1 में उत्तर प्रदेश के 6 शहरों ने स्थान बनाया। इनमें लखनऊ ने देश में पहला, आगरा ने 4th, गाजियाबाद ने 9th, कानपुर ने 11th, प्रयागराज ने 13th और मेरठ ने 22वां स्थान प्राप्त किया। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण की वार्ड लेवल रैंकिंग में भी उत्तर प्रदेश ने अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है। कैटेगरी 1 में राजधानी लखनऊ के वार्ड 70 ने पूरे देश में प्रथम स्थान हासिल किया है। वहीं कैटेगरी 2 में प्रयागराज के वार्ड 31 ने देश में 3rd स्थान प्राप्त किया है। वहीं 3 से 10 लाख की आबादी वाले शहरों में झांसी, मुरादाबाद और नोएडा टॉप 10 शहरों में शामिल हैं। समाचार कक्ष से तनवीर फातिमा।
0: लखनऊ में केरल के प्रमुख मीडिया संस्थानों के प्रतिनिधिमंडल ने कल प्रेस सूचना ब्यूरो के अधिकारियों के साथ अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन RDSO का दौरा किया। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने एयर ब्रेक, फटीक टेस्टिंग तथा धातु एवं रसायन प्रयोगशालाओं का निरीक्षण कर अत्याधुनिक रेलवे प्रौद्योगिकियों और परीक्षण सुविधाओं की जानकारी ली। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने इसके निजीकरण से जुड़ी खबरों को खारिज किया है। बेंगलुरु में कल उन्होंने कहा कि इसरो एक सरकारी संगठन है और इसके निजीकरण का कोई सवाल ही नहीं है।
3: इसरो एक सरकारी संस्था है और हम सरकारी निवेश के अंतर्गत काम कर रहे हैं। इसरो और NCS के मुख्य लक्ष्यों में से एक बजट के अनुरूप अंतरिक्ष उपकरणों की लागत कम करना है। इसरो को हर साल सरकार आवश्यकता के अनुसार बजट देती है। बजट की कोई कमी नहीं है।
0: उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा UPTET 2026 में सफल अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र जारी कर दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर प्रशांत कुमार ने बताया कि अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर अनुक्रमांक और जन्म तिथि दर्ज कर प्रमाण पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण राज्य के 2 दर्जन से अधिक जिले बाढ़ की चपेट में। राहत और बचाव कार्य जारी। मौसम विभाग ने पूर्वी जिलों में आज भारी बारिश की चेतावनी दी।

0: उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच 14 नए रूटों पर बसें चलाने की तैयारी। दोनों राज्यों के परिवहन मंत्रियों ने लखनऊ में बैठक कर विस्तार से चर्चा की। बागपत में हुए सड़क हादसे में 13 लोगों की मौत, करीब 1.5 दर्जन से अधिक लोग घायल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के परिजनों और घायलों को आर्थिक सहायता देने के दिए निर्देश। और स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2026 में लखनऊ को मिला देश में पहला स्थान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 92.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुनिए प्रियंका मलिक का उपशास्त्रीय गायन राग भैरवी में ठुमरी। इनके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं श्रवण कुमार भट्ट, हारमोनियम पर शमशाद अहमद खान और तानपुरे पर सरगम लता श्रुति मिश्रा।

प्रियंका मलिक के स्वर में अभी आपने सुना भैरवी में ठुमरी। लीजिए सुनिए इन्हीं के स्वर में दादरा। तबले पर संगत कर रहे हैं श्रवण कुमार भट्ट, हारमोनियम पर शमशाद अहमद खान और तानपुरे पे हैं सरगम लता श्रुति मिश्रा।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे प्रियंका मलिक का उपशास्त्रीय गायन राग भैरवी में ठुमरी और दादरा, इनके साथ संगत किया तबले पर श्रवण कुमार, हारमोनियम पर शमशाद अहमद खान, तानपुरी पर सरगमलता श्रुति मिश्रा। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए आकाशवाणी वाद्य वृंद रचना।

अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी वाद्य वृंद रचना। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार प्रभात।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का उद्घाटन करेंगे। रक्षा खरीद परिषद ने 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक के खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी। लग्जमबर्ग ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए भारत के दावे का समर्थन किया। भारत अगली पीढ़ी के 6G नेटवर्क के विकास के लिए अमेरिका और 24 अन्य देशों के समूह में शामिल। दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी के सत्य निकेतन में ढही इमारत के मालिक सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया। और भारत आज अहमदाबाद में विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला में 4 फाइनल मुकाबले खेलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई गलियारे के 3 महत्वपूर्ण खंड का भी लोकार्पण होगा। अहमदाबाद में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये परियोजना अब पूरी तरह तैयार हो चुकी है।
1: डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ईस्ट और वेस्ट, ये दोनों देश के लिए बहुत बड़ी एक बैकबोन की तरह है ट्रांसपोर्टेशन में। वो प्रोजेक्ट अब कंप्लीट हुआ पूरी तरह से, उसको माननीय प्रधानमंत्री जी राष्ट्र के प्रति समर्पित करेंगे। ये परियोजना ऐसी है जिसमें कई वर्ष लगे। 2014 में प्रधानमंत्री ने उस काम को हाथ में लिया, जितनी भी उसमें प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व किया।
0: हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री कई रेलवे राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य सरकार की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी शुभारंभ करेंगे।
2: प्रधानमंत्री के इस दौरे का मुख्य आकर्षण 20,700 करोड़ से अधिक के लागत से निर्मित वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के 326 किलोमीटर लंबे 3 मुख्य खंडों को राष्ट्र को समर्पित करना है, जिससे यह पूरा फ्रेट कॉरिडोर नेटवर्क पूरी तरह से कार्यान्वित हो जाएगा। प्रधानमंत्री न्यू सारण, न्यू मकरपुरा, न्यू उमरगाम और न्यू JNPT से मालगाड़ियों को भी हरी झंडी दिखाएंगे। साथ ही वे टांडा रोड और वडोदरा के बीच एक नई यात्री सेवा की भी शुरुआत करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री गुजरात और मध्य प्रदेश के बीच कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए 9,700 करोड़ से अधिक की 3 रेल परियोजनाएं और 1,780 करोड़ की 3 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की भी आधारशिला रखेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री गुजरात सरकार की लगभग 2,600 करोड़ की विकास परियोजनाओं का भी उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे, जिनमें कडाणा बांध पर 110 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट और प्रधानमंत्री आवास योजना के घरों का लोकार्पण शामिल है। गुजरात प्रवास के दौरान प्रधानमंत्री नवसारी में भाजपा के नए AI सक्षम हाईटेक कार्यालय का भी उद्घाटन करेंगे। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: प्रधानमंत्री इसके बाद मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का उद्घाटन करेंगे। इसमें डिजिटल भुगतान, वित्तीय समावेशन और नई तकनीकों के माध्यम से वित्तीय क्षेत्र को और मजबूत बनाने पर विचार विमर्श होगा। रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र बलों के लिए 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक के रक्षा खरीद प्रस्तावों को स्वीकृति दे दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मंजूरी कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई परिषद की बैठक में दी गई।
3: परिषद की बैठक में सेना के लिए रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु टोही वाहन, हाई मोबिलिटी वाहन, स्वचालित माइन लेयर, एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर, ट्रॉल टैंक और सर्वत्र ब्रिज सिस्टम की खरीद को मंजूरी दी गई। नौसेना के लिए अरुद्रा रडार की भी खरीद तथा मरीन गैस टर्बाइन के डिजाइन और विकास के बाद उनकी खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। वायुसेना की युद्धक क्षमता बढ़ाने के लिए लड़ाकू विमानों, परिवहन विमानों और हेलीकॉप्टर से जुड़े कई प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई। इसके अलावा ग्राउंड बेस्ड मल्टीपर्पज जैमर और डिफेंस फोर्सेस सिक्योर एक्सेस कार्ड प्रणाली की खरीद को मंजूरी दी गई है। रिशु के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री जेवियर बेटल ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान वैश्विक व्यवस्था के अनुसार इस निकाय में सुधार आवश्यक है। एक साक्षात्कार में श्री बेटल ने कहा कि आकार और वैश्विक महत्व के कारण विस्तारित सुरक्षा परिषद में भारत की जगह आवश्यक है। एक रिपोर्ट।
4: श्री बेटल ने कहा कि परिषद का विस्तार उन प्रमुख देशों को शामिल करने के लिए किया जा सकता है जिनकी वर्तमान में कोई स्थायी भूमिका नहीं है। उन्होंने भारत और ब्राजील का उदाहरण दिया। श्री बेटल ने मौजूदा वीटो प्रणाली की आलोचना करते हुए इसे द्वितीय विश्व युद्ध का अवशेष बताया और तर्क दिया कि किसी भी एक देश को व्यापक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा समर्थित निर्णयों को रोकने की शक्ति

0: होनी चाहिए। उन्होंने प्रस्ताव दिया कि सुरक्षा परिषद में दो तिहाई बहुमत वीटो को रद्द करने में सक्षम होना चाहिए। श्री ब्रिटन ने सुरक्षा परिषद में अधिक प्रतिनिधि और लोकतांत्रिक निर्णय लेने की प्रक्रिया की मांग की। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजुश्किन ने भारत को एक महत्वपूर्ण राजनयिक केंद्र बताया है। नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए रवाना होने से पहले उन्होंने आशा व्यक्त की कि यह समूह द्विपक्षीय व्यापार और रणनीतिक सहयोग प्रगाढ़ करने के लिए मजबूत मंच प्रदान करेगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बागई ने कहा कि ईरान ने भारत के साथ अपने दीर्घकालिक संबंधों के महत्व पर बल दिया है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन EIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
4: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत 6G नेटवर्क के विकास की वैश्विक पहल में अमेरिका और 24 अन्य देशों के साथ शामिल हो गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 6G पहल का उद्देश्य नेटवर्क की सुरक्षा मजबूत करना, प्रतिस्पर्धा और नई तकनीक को बढ़ावा देना है। एक रिपोर्ट।
5: अमरीकी वाणिज्य विभाग ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि भारत ने अमेरिका और 24 अन्य देशों के साथ मिलकर ये सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि अगली पीढ़ी के नेटवर्क साझा सुरक्षा हितों को प्रतिबिंबित करें, प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करें और नवाचार को बढ़ावा दें। ये घोषणा केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद की G20 नवाचार मंत्री स्तरीय सम्मेलन के दौरान अमरीकी वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लटनिक से मुलाकात के बाद हुई। दोनों नेताओं ने 6G प्रौद्योगिकी के भविष्य और अगली पीढ़ी के दूर संचार नेटवर्क के विकास में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्व पर चर्चा की। बैठक के दौरान भारत और अमेरिका ने सेमीकंडक्टर, AI और डेटा केंद्रों में सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। राज्य मंत्री प्रसाद ने ISM 2.0 में अधिक अमरीकी निवेश की संभावना को प्रोत्साहित किया। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: दिल्ली के सत्य निकेतन में इमारत ढहने के मामले में पुलिस ने संपत्ति मालिक परिवार के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार लोगों में हरिराम, पत्नी उर्मिला और बेटा महेश शामिल हैं। और ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
6: मीडिया से बातचीत में पुलिस उपायुक्त अभिमन्यु पोसवाल ने बताया कि संपत्ति महिला के नाम पर थी और बिल्डिंग का बिजली कनेक्शन उनके पति के नाम पर था। वहीं बेटा बिल्डिंग का प्रबंधन संभालता था। दंपति को 14 दिन की न्यायिक हिरासत और बेटे को 2 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया है। हादसे में अब तक 7 लोगों की मौत हुई है। कुल 12 लोगों को एम्स दिल्ली लाया गया था। एम्स के अनुसार 3 लोग गंभीर हालत में हैं जबकि 2 की हालत स्थिर हो गई है, जिनमें से 1 को अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है। इसके अलावा दिल्ली सरकार ने दिल्ली नगर निगम के 5 अधिकारियों को लंबित किया है। इनमें उपायुक्त, अधीक्षण अभियंता, कार्यकारी अभियंता, सहायक अभियंता और कनिष्ठ अभियंता शामिल हैं। दिलनशी आरज़ू, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने हापुड़ बाईपास तक 105 मीटर चौड़ी सड़क बनाने का प्रस्ताव रखा है। इससे ग्रेटर नोएडा में माल और यात्री यातायात अलग होगा और गंगा एक्सप्रेसवे से बेहतर संपर्क स्थापित हो सकेगा। इस प्रस्ताव पर कल लखनऊ में औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता की अध्यक्षता में हुई बैठक में ये निर्णय लिया गया। प्राधिकरण ने बताया कि सड़क से नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गंगा एक्सप्रेसवे के बीच की दूरी घटकर लगभग 30 से 45 मिनट रह जाएगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव राज्य में निवेश आकर्षित करने के उद्देश्य से अपने दुबई यात्रा के

0: तीसरे दिन आज दुबई में कई महत्वपूर्ण बैठकें करेंगे। वे संयुक्त अरब अमीरात के प्रमुख निवेशकों और उद्योगपतियों के साथ व्यक्तिगत बैठक करेंगे। मुख्यमंत्री भोपाल में आयोजित होने वाले वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2027 में निवेशकों को आमंत्रित करेंगे। उत्तर प्रदेश में वर्षा और बांधों से छोड़े गए पानी के कारण 25 जिलों में बाढ़ के हालात हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वर्षा को देखते हुए बरेली में अगले दो दिन के लिए सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं और सरकारी अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं।
1: राहत आयुक्त कार्यालय के मुताबिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत दलों की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्तर पर नाव और मोटर बोट तैनात की गई है। बाढ़ के बाद संक्रमण और जल जनित बीमारियों की आशंका को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग को भी पूरी तरह सक्रिय रखा गया है। उधर बदायूं और बलिया में गंगा, शाहजहांपुर में राम गंगा, बाराबंकी, अयोध्या और बलिया के तुर्तीपार में घाघरा और लखीमपुर खीरी में शारदा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में राज्य के पूर्वी जनपदों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: मौसम विभाग ने अगले दो दिनों में भारत के पूर्वोत्तर हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार आज बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में इसी तरह का मौसम रहने की संभावना है। वहीं अगले दो दिनों में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम और तेलंगाना में गरज चमक के साथ तेज वर्षा होने की संभावना है। अहमदाबाद में विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला में आज भारत 4 स्वर्ण पदक मुकाबलों में अपनी चुनौती रखेगा। भारतीय महिला पैरा रिकर्व टीम फाइनल में चीन से खेलेगी। भारतीय पुरुष पैरा रिकर्व टीम स्लोवाकिया और पैरा कंपाउंड पुरुष टीम फाइनल में इराक से खेलेगी। वहीं मिक्स टीम W1 फाइनल में चेक गणराज का मुकाबला करेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
3: धन्यवाद मुकेश। रक्षा खरीद परिषद की 1,10,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्ताव की मंजूरी की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। जनसत्ता की सुर्खी है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई DAC की बैठक, 1,00,000 करोड़ के रक्षा प्रस्ताव को मंजूरी। दैनिक ट्रिब्यून का शीर्षक है, तीनों सेनाओं की बढ़ेगी ताकत, मिलेंगे नए रडार, हेलीकॉप्टर, टॉल टैंक, विशेष वाहन और जैमर। राजस्थान पत्रिका ने पहली बार शीर्षक दिया है, पीएम मोदी के कार्यक्रम की ऑनलाइन बुकिंग 1 घंटे में फुल, 42,000 वेटिंग, सारी व्यवस्था डिजिटल। प्रधानमंत्री मोदी आज वडोदरा में नमो फॉर विकसित भारत कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। हिंदुस्तान के अनुसार हत्यारे पीजी का मालिक गिरफ्तार, निगम उपायुक्त समेत 5 अधिकारी निलंबित, असुरक्षित इमारतें खाली कराई गई। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, हाईकोर्ट के निर्देश, जांच हो, अफसर की जिम्मेदारी से नहीं बच सकते, MCB अफसरों से होगी पूछताछ। अमर उजाला ने उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन का गुवाहाटी विश्वविद्यालय में बयान देते हुए लिखा है, विश्वविद्यालयों में ज्यादातर स्वर्ण पदक विजेता महिलाएं, यह मूक क्रांति है। पंजाब केसरी ने गृह मंत्री अमित शाह का बयान देते हुए लिखा है, वैश्विक उथल पुथल के बावजूद आर्थिक वृद्धि कायम, भारत अन्य देशों से जुड़ा रहा, 15 अगस्त 2047 तक भारत दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र होगा। हिंदुस्तान ने ऐलान शीर्षक से लिखा है, होर्मुज में नया मार्ग बनाएगा ईरान, पोतों के लिए कॉरिडोर के नक्शे जारी होंगे। अमर उजाला की सुर्खी है, हिमाचल समेत 15 से ज्यादा राज्यों में भारी बारिश और आंधी तूफान का अलर्ट, बिहार में बाढ़ का कहर, 13 जिलों के 29 लाख से अधिक लोग प्रभावित, कई नदियों का जलस्तर बढ़ा।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का उद्घाटन करेंगे। रक्षा खरीद परिषद ने 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक के खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी। लग्जमबर्ग ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए भारत के दावे का समर्थन किया। भारत अगली पीढ़ी के 6G नेटवर्क के विकास के लिए अमरीका और 24 अन्य देशों के समूह में शामिल। दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी के सत्य निकेतन में ढही इमारत के मालिक सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया। और भारत आज अहमदाबाद में विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला में 4 फाइनल मुकाबले खेलेगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं कलीम अहमद। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज गुजरात में वडोदरा से 35,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का इफ्तिताह भी करेंगे। दिफाई सामान की सरकारी खरीद से मुतालिक कौंसिल ने दिफाई अफवाज के लिए 1,10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत की तजवीजों को मंजूरी दे दी है। लग्जमबर्ग ने अक्वामे मुत्तहिदा सलामती कौंसिल में मुस्तकिल रुकनियत की भारत की कोशिश की हिमायत की है। भारत नए सिलसिले के 6G नेटवर्क के फरोग में अमरीका और 24 दीगर मुल्कों के साथ शामिल हो गया है। दिल्ली पुलिस ने कौमी राजधानी के शक्तिनिकेतन इलाके में ढह जाने वाली इमारत के मालिक समेत 3 अफराद को गिरफ्तार किया है। और आज अहमदाबाद में आलमी तीरंदाजी पैरा सीरीज में भारतीय खिलाड़ी 4 फाइनल मुकाबलों में हिस्सा लेंगे। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज गुजरात और महाराष्ट्र के दौरे पर जा रहे हैं। गुजरात में वज़ीर-ए-आज़म वडोदरा से 35,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखेंगे, इफ्तिताह करेंगे और मुल्क के नाम वक्फ करेंगे। जनाब मोदी बारबरदारी के लिए मखसूस मगरबी कॉरिडोर के 3 अहम सेक्शन भी मुल्क के नाम मुअन्नवन करेंगे। इस तरह ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाएगा। इधर मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने अहमदाबाद हवाई अड्डे पर नामनिगारों से बात करते हुए कहा कि ये बड़ा प्रोजेक्ट अब पूरी तरह मुकम्मल हो गया है और इसे वज़ीर-ए-आज़म बाज़ाब्ता तौर पर मुल्क के नाम वक्फ करेंगे।
1: डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ईस्ट और वेस्ट, ये दोनों देश के लिए बहुत बड़ी एक बैकबोन की तरह है ट्रांसपोर्टेशन में। वो प्रोजेक्ट अब कंप्लीट हुआ पूरी तरह से, उसको माननीय प्रधानमंत्री जी राष्ट्र के प्रति समर्पित करेंगे। ये परियोजना ऐसी है जिसमें कई वर्ष लगे। 2014 में प्रधानमंत्री ने उस काम को हाथ में लिया, जितनी भी उसमें प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व किया।
0: मजीद तफसील हमारे नामनिगार से।
2: वज़ीर-ए-आज़म के दौरे के दौरान 326 किलोमीटर पर मुश्तमिल बारबरदारी के मखसूस मगरबी कॉरिडोर के 3 सेक्शन को मुल्क के नाम वक्फ किया जाना बड़ी अहमियत का हामिल होगा। इसकी तामीर पर 20,700 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म न्यू सानंद, न्यू मकरपुरा, न्यू उम्बरगांव और न्यू JNPT से माल गाड़ियों के साथ साथ टांडा रोड और वडोदरा के दरमियान एक नई मुसाफिर ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे, जो अलीराजपुर के दूरदराज के कबाइली इलाकों को रेलवे के कौमी निजाम से जोड़ेगी। इसके अलावा जनाब मोदी गुजरात और मध्य प्रदेश में कनेक्टिविटी को मजबूत बनाने की खातिर 9,700 करोड़ रुपए मालियत के 3 रेलवे प्रोजेक्ट और तकरीबन 1,780 करोड़ रुपए मालियत के 3 कौमी शाहरा प्रोजेक्टों का संग बुनियाद भी रखेंगे। वो कदाना डैम पर 110 मेगावाट के शमसी प्लांट और PMAY हाउसिंग यूनिट समेत 2,600 करोड़ रुपए मालियत के गुजरात हुकूमत के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज भी करेंगे। बाद में वज़ीर-ए-आज़म BJP के AI से आरास्ता और हाईटेक दफ्तर के इफ्तिताह के लिए नवसरी भी जाएंगे। अपर्णा खून की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए कौनैन हैदर।
0: महाराष्ट्र में वज़ीर-ए-आज़म मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का इफ्तिताह करेंगे और वहां मौजूद लोगों से खिताब करेंगे। इस कॉन्फ्रेंस का मौजू है इम्कानात से असरात तक जामे फाइनेंस के लिए एजेंटिक AI क्वांटम भरोसेमंद बाहम मुंसलिक आलमी निज़ाम। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में होने वाले तबादले ख्याल में इस बात पर तवज्जो मरकूज की जाएगी कि किस तरह AI, क्वांटम टेक्नोलॉजी और दीगर अहम नीज उभरती हुई टेक्नोलॉजियां आलमी सतह पर शहरियों, कारोबारी इदारों और मईशतों के लिए भरोसेमंद, जामे और ठोस नतायज पैदा कर सकती हैं। साल 2020 से ग्लोबल फिनटेक फेस्ट एक लीडरशिप प्लेटफॉर्म के तौर पर उभरा है, जिसमें पॉलिसी साज, इंजबाती इदारे, मरकजी बैंक, माली इदारे, फिनटेक टेक्नोलॉजी कंपनियां, सरमायाकार, तालीमी माहिरीन और दीगर आलमी मुतालिका इदारे फाइनेंस के मुस्तकबिल और इसे संवारने के बारे में तबादला ख्याल करते हैं। ये 7वां फिनटेक फेस्ट मुंबई में इस महीने की 11 तारीख तक जारी रहेगा। दिफाई सामान की सरकारी खरीद से मुतालिक कौंसिल ने दिफाई अफवाज के लिए 1,10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत की तजवीजों को मंजूरी दे दी है। हमारे नामानी

0: सरकार ने बताया है कि वजीर दिफा राजनाथ सिंह की सदारत में काउंसिल की मीटिंग के दौरान ये मंजूरी दी गई। पेश है एक रिपोर्ट।
1: इन तजवीजों में भारतीय फौज के लिए केमिकल, बायोलॉजिकल और रेडियोलॉजिकल नीज न्यूक्लियर टोह लेने वाली गाड़ियों, हाई मोबिलिटी गाड़ियों, जदीद तर्ज के हल्के हेलीकॉप्टरों, ट्रॉल टैंक्स और सर्वत्र ब्रिज निजाम की सरकारी खरीद की तजवीजें शामिल हैं। भारतीय बहरिया के लिए अरुद्र रडार की सरकारी खरीद और मैरीन गैस टर्बाइंस के डिजाइन और तैयारी नीस इसकी सरकारी खरीद के लिए तजवीज को भी मंजूरी दी गई है। अरुद्र रडार बहरिया के मुख्तलिफ एयर स्टेशनों पर नस्ब मौजूदा एयर रूट निगरानी रडार की जगह लेगा। इस तरह गैर मुल्की इदारों पर इन्हिसार कम हो सके। इधर भारतीय फजाइया के लिए मुकाबला करने की सलाहियत बढ़ाने के खातिर मुख्तलिफ तजवीजों को भी मंजूरी दी गई है। कसीर मकसदी जैमर की सरकारी खरीद और दिफाई अफवाज का महफूज रसाई का कार्ड निजाम नस्ब करने की भी मंजूरी दी गई है। दिफा की वजारत ने कहा है कि इनमें से 98% दिफाई सामान की सरकारी खरीद भारतीय सनतों से की जाएगी। दिल्ली से सकलेन अख्तर की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान।
0: लग्जमबर्ग के नायब वजीर आजम और वजीर खारजा जेवियर बेटेल ने अक्वामी मुत्तहदा सलामती काउंसिल में मुस्तकिल रुकनियत के लिए भारत की कोशिश की ये कहते हुए हिमायत की है कि आलमी इदारे में इस्लाहात की जानी चाहिए ताकि मौजूदा आलमी निजाम के हकायक की अक्कासी हो सके। एक खबरसा एजेंसी के साथ इंटरव्यू में जनाब बेटेल ने कहा कि भारत के वसी व अरीज होने और इसकी आलमी अहमियत के मद्देनजर तौसी शुदा सलामती काउंसिल में इसका शामिल किया जाना जरूरी है। उन्होंने भारत और ब्राजील का हवाला देते हुए कहा कि यूएन सलामती काउंसिल में उन बड़े मुल्कों को शामिल करके तौसी की जा सकती है जिनका सरदस्त कोई मुस्तकिल रोल नहीं है। जनाब बेटेल ने मौजूदा वीटो निजाम पर नुक्ताचीनी भी की और इसे दूसरी आलमी जंग के बाकियात से ताबीर किया। उन्होंने कहा कि किसी एक मुल्क को उन फैसलों को रोकने का इख्तियार नहीं होना चाहिए जिनकी हिमायत वसीतर बैन अल-अक़वामी बरादरी ने की हो। लग्जमबर्ग के नायब वज़ीर आज़म भारत के 3 दिन के सरकारी दौरे पर आए हुए हैं। भारत नए सिलसिले के 6G नेटवर्क के फरोग के मकसद से अमरीका और 24 दीगर मुल्कों के साथ बैन अल-अक़वामी पहल में शामिल हो गया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर अमेरिका के कॉमर्स के महकमे ने कहा है कि इस कोशिश का मकसद इस बात को यकीनी बनाना है कि नए सिलसिले के नेटवर्क से मुश्तरका सिक्योरिटी मफादात की अक्कासी हो, मुसाबकत मुस्तहकम हो और इख्तरा को बढ़ावा मिले। अमेरिका के मियामी में G20 के इख्तराई वजीरों की कॉन्फ्रेंस के मौके पर अमेरिका के कॉमर्स के वजीर हॉवर्ड लुटनिक के साथ कॉमर्स और सनतों के मरकजी वजीर ममलिकत जितिन प्रसाद की मुलाकात के बाद ये ऐलान सामने आया है। दोनों रहनुमाओं ने 6G तकनीक के मुस्तकबिल और नए सिलसिले का टेलीमवासिलाती नेटवर्क तैयार करने में बैन अल-अक़वामी इश्तराक की अहमियत पर तबादला ख्याल किया। ईरान ने ब्रिक्स सरबराह कॉन्फ्रेंस के लिए सदर मसूद पेजिशकियान के नई दिल्ली के दौरे से कबल एक अहम सिफारती मरकज के तौर पर भारत के रोल को उजागर किया है और ये उम्मीद जाहिर की है कि ये ग्रुप दो तरफा तजारती और क्लीदी इश्तराक को मजीद मुस्तहकम बनाने का एक मजबूत प्लेटफॉर्म फराहम करेगा। एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने इस बात को उजागर किया कि ईरान भारत के साथ तवील अरसे से कायम अपने ताल्लुकात को किस कदर अहमियत देता है। ब्रिक्स सरबराह कॉन्फ्रेंस में सदर पेजिशकियान की शिरकत के ताल्लुक से जनाब बकाई ने यह एतमाद जाहिर किया कि कसीर रुखी सफारतकारी से दो तरफा ताल्लुकात में और तेजी के साथ पेशरफ्त होगी। ब्रिक्स सरबराह कॉन्फ्रेंस इस महीने की 12 और 13 तारीख को नई दिल्ली में होने वाली है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस ने नई दिल्ली के सत्य निकेतन में इमारत ढह जाने के मामले में 3 अफराद को गिरफ्तार किया है और अपनी तहकीकात तेज कर दी हैं। इस वाकये में 7 अफराद की मौत हुई है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: दिल्ली पुलिस ने इस वाकये के सिलसिले में इमारत के मुबैना मालकिन और उसके शौहर और बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। ये वाकया इस महीने की 6 तारीख को पेश आया था। मुबैना मालकिन और उसके शौहर को 14 दिन के लिए अदालती तहवील में भेज दिया गया है, जबकि बेटे को 2 दिन के लिए पुलिस तहवील में दिया गया है। इस वाकये में हलाक होने वालों की तादाद 7 हो गई है। मजमू तौर पर 12 जख्मियों को दिल्ली के एम्स अस्पताल लाया गया।

0: वजह से उत्तर प्रदेश के 25 अजला में सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हो गई है। रियासत के कई अजला में गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान औसत से शदीद बारिश रिकॉर्ड की गई है। बरेली, एटा, शाहजहांपुर, बहराइच और लखीमपुर खीरी गुज़िश्ता 24 घंटे में बारिश के लिहाज से मुल्क के 5 सबसे ज्यादा बारिश वाले अजला में शामिल हैं। शदीद बारिश के पेश नजर बरेली में अगले 2 दिन के लिए तमाम स्कूल बंद कर दिए गए हैं और सरकारी अहलकारों की छुट्टियां मंसूख कर दी गई हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
1: रियासत के रिलीफ कमिश्नर के दफ्तर के मुताबिक सैलाब से मुतासर इलाकों में इमदादी टीमों की रसाई को यकीनी बनाने के लिए कश्तियों और मोटर बोट्स को लगाया गया है। सैलाब के बाद इन्फेक्शन और पानी से होने वाली बीमारियों के खदशे के पेश नजर महकमे सेहत से पूरी तरह मुस्तैदी बरतने को कहा गया है। इधर बदायूं और बलिया में गंगा, शाहजहांपुर में रामगंगा, बाराबंकी और अयोध्या में घाघरा, जबकि लखीमपुर खीरी में शारदा दरिया खतरे के निशान से ऊपर बह रहे हैं। पीलीभीत में पिछले 2 दिन से लगातार बारिश होने और बांध से पानी छोड़े जाने की वजह से शारदा और देवहा दरिया तुरयानी पर हैं। सैलाब के इम्कान के पेश नजर इंतजामिया ने अलर्ट जारी किया है। लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान।
0: भारतीय मौसमियात महकमे ने अगले 2 दिन के दौरान मुल्क के शुमाल मशरकी हिस्सों में तेज बारिश होने की पेशगोई की है। मौसमियात महकमे के मुताबिक बिहार, मशरकी मध्य प्रदेश, मशरकी उत्तर प्रदेश, ओडिशा और मगरबी बंगाल में भी इसी तरह का मौसम रहने का इम्कान है। इधर अंडमान निकोबार जजायर, मगरबी बंगाल के जैली हिमालयी खत्ते, सिक्किम और तेलंगाना में अगले 2 दिन के दौरान गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश होने की पेशगोई की गई है। आज अहमदाबाद में आलमी तीरंदाजी पैरा सीरीज में भारतीय खिलाड़ी 4 फाइनल मुकाबलों में हिस्सा लेंगे। पैरा रिकर्व खवातीन के टीम गोल्ड फाइनल में भारत की भावना और पूजा का मुकाबला चीन की खिलाड़ियों से होगा। इधर मर्दों के पैरा रिकर्व टीम गोल्ड फाइनल में भारत के हरविंदर सिंह और विजय सुंडी स्लोवाकिया के खिलाड़ियों से मुकाबला करेंगे। इसके अलावा भारत मर्दों के पैरा कंपाउंडर टीम फाइनल में भी सोने का तमगा जीतने की कोशिश करेगा, जहां श्याम सुंदर स्वामी और तुमन कुमार का मुकाबला इराक के खिलाड़ियों से होगा। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं कौनैन हैदर।
2: शुक्रिया कलीम। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात की शेयर सुर्खियां एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन ने गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा। इस खबर को रोजनामा प्रताप ने अपने पहले सफे पर अहमियत के साथ शाये किया है। गोवा के पनाजी में मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के जेर सदारत मुनक़दा मगरबी जोनल काउंसिल की 28वीं मीटिंग में वजीर दाखिला अमित शाह के इस बयान को अखबारात ने नुमाया किया है कि तमाम जोनल काउंसिलें अब रियासतों के दरमियान तनाज़ात सुलझाने के प्लेटफॉर्म से आगे बढ़कर अवामी फलाही स्कीमों की निगरानी का मौसर जरिया बन गई हैं। अखबारात ने दिफाई खरीद की काउंसिल की तरफ से 1,10,000 करोड़ रुपए के दिफाई सौदों को मंजूरी दिए जाने की खबर को भी अहमियत के साथ शाये किया है। रोजनामा प्रताप ने कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के कारोबारी एतमाद के सर्वे से मुतालिक खबर को शाये करते हुए सुर्खी लगाई है, मजबूत तलब और माशी आदाद शुमार से कारोबारी एतमाद कई सहमाही की बुलंद तरीन सतह पर।
0: खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज गुजरात में वडोदरा से 35,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज करेंगे। वजीर आजम मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का इफ्तिताह भी करेंगे। दिफाई सामान की सरकारी खरीद से मुतालिक काउंसिल ने दिफाई अफवाज के लिए 1,10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत की तजवीजों को मंजूरी दे दी है। लग्जमबर्ग ने अक्वामी मुत्तहिदा सलामती काउंसिल में मुस्तकिल रुकनियत की भारत की कोशिश की हिमायत की है। भारत नए सिलसिले के 6G नेटवर्क के फरोग में अमरीका और 24 दीगर मुल्कों के साथ शामिल हो गया है। दिल्ली पुलिस ने कौमी राजधानी के सत्यनिकेतन इलाके में ढह जाने वाली इमारत के मालिक समेत 3 अफराद को गिरफ्तार किया है। और आज अहमदाबाद में आलमी तीरंदाजी पैरा सीरीज में भारतीय खिलाड़ी 4 फाइनल मुकाबलों में हिस्सा लेंगे। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।
3: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है।
4: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
5: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।

0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: मेहमान आएंगे, हो सकता है इंडिया मैच जीतेगा, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि अनुमान सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन एचआईवी का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
3: एचआईवी को लेकर अनुमान ना लगाएं, सेल्फ रिस्क असेसमेंट करें। सेल्फ रिस्क असेसमेंट के बाद अगर जरूरत हो तो पास के आईसीटीसी केंद्र पर एचआईवी टेस्ट कराएं। आई स्कैन, अनुमान छोड़िए, स्कैन कीजिए। अधिक जानकारी के लिए breakfreeindia.org पर लॉगिन करें या 1097 पर कॉल करें।
4: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं, प्रस्तुत है कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज। आप सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं, मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त नीलम सिंह। श्रोताओं, आज है 8 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। शिक्षा वह दीपक है जो एक व्यक्ति को ही नहीं पूरे परिवार और समाज को रोशन करती है। साक्षरता का अर्थ सिर्फ किताब पढ़ लेना नहीं, जब कोई व्यक्ति अपना नाम लिख पाता है, जब कोई किसी दस्तावेज की को समझ पाता है, जब वो अपने बच्चे की पढ़ाई में मदद कर पाता है, अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों को समझता है, तभी साक्षरता अपने वास्तविक अर्थ को प्राप्त करती है। श्रोताओं, प्रयागराज की धरती हमेशा से ज्ञान, साहित्य और शिक्षा की परंपरा से समृद्ध रही है। यहां से उठी ज्ञान की रोशनी देश दुनिया तक पहुंची है। जब बात हो अक्षरों से जिंदगी को रोशन करने की, तो क्यों ना एक ऐसे गीत की पंक्तियों के साथ आगे बढ़ें जो हमें अपने सपने देखने और उन्हें पूरा करने की प्रेरणा दे।

अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाने का उद्देश्य है व्यक्तिगत, सामुदायिक और सामाजिक स्तर पर साक्षरता की आवश्यकता के बारे में लोगों को जागरूक करना, ताकि समाज में साक्षरता के महत्व को एक मौलिक अधिकार के महत्व को एक मौलिक अधिकार के रूप में उजागर किया जा सके। यूनेस्को ने 17 नवंबर 1965 को अपने 14वें आम सम्मेलन में 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में घोषित किया और इसे पहली बार 1967 में मनाया गया। एक अधिक साक्षर, न्यायपूर्ण और टिकाऊ समाज के निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए। ज्ञान की रोशनी से बढ़कर इस दुनिया में कोई रोशनी नहीं है। सिर्फ अपना जीवन नहीं बदलता इस शिक्षा से, बल्कि पूरे परिवार और समाज का भविष्य बदल जाता है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस एक ऐसा दिन है जो हमें याद दिलाता है कि शिक्षा किसी विशेष वर्ग का अधिकार नहीं, हर इंसान का अधिकार है। सही और गलत में फर्क करना, अपने अधिकारों को जानना, अपने कर्तव्यों को पहचानना और आत्मनिर्भर होकर जीवन जीना।

साक्षरता दिवस पर हम एक संकल्प लेंगे, ज्ञान का दीपक केवल अपने घर तक सीमित नहीं रखेंगे बल्कि उसकी रोशनी हर उस व्यक्ति तक पहुंचाएंगे जिसके जीवन में शिक्षा का उजाला अभी बाकी है। हम खुद पढ़ेंगे, दूसरों को पढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे, किताबों से दोस्ती करेंगे, किताबों से दोस्ती करके और भी दोस्ती करने के लिए बताएंगे लोगों से कम एक व्यक्ति को साक्षर बनने के लिए प्रेरित करेंगे, क्योंकि ज्ञान बांटने से कम नहीं होता और बढ़ता है। इसी संकल्प और इसी विश्वास के साथ लेते हैं हम विदा। पढ़िए, पढ़ाइए और ज्ञान की रोशनी फैलाइए। सुनते रहिए कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज, प्रस्तुति थी अभय कांत तिवारी की। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगू।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424।
1: ओ 8700।

0: 4242 लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001 4242 पर।
1: बदलो बदलो आदत बदलो।
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

0: उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की अनुमन्य सुविधाओं हेतु कृषि विभाग से संपर्क करें। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम। अगला गीत सुनिए यारियां फिल्म से, आवाज साफकत अमानत अली की और बोल संगीत आरको मुखर्जी का।

यार ये फिल्म के इस खूबसूरत गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।

0: Akashvani at 90.
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। अगला कार्यक्रम बस कुछ ही पलों में।

जिले की

0: हलचल आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए बरेली और आजमगढ़ जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं बरेली जिले की हलचल। आलेख और स्वर है नाजिया अंजुम का।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के युवा संवाद कार्यक्रम के तहत किए गए उद्बोधन का सीधा प्रसारण बरेली स्थित रोहिलखंड विश्वविद्यालय में किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने भी कार्यक्रम में शिरकत कर युवाओं का उत्साहवर्धन किया। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को खेलों के प्रति जागरूक करना और नए भारत के संकल्प से जोड़ना रहा। प्रधानमंत्री के संबोधन के दौरान युवाओं में खासा उत्साह देखने को मिला। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने कहा, 2047 के विकसित भारत में युवा ही अहम भूमिका निभाएंगे। उन्होंने कहा कि 2014 के बाद से खेलों के स्तर में जिस तरह से सुधार आया है वो किसी से छुपा नहीं है। वहीं खिलाड़ियों का भी ये कहना है कि बीते 12 वर्षों में खेल सुविधाओं और खिलाड़ियों को मिलने वाले सहयोग में बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कहा,
2: विकसित भारत का संकल्प जो 2047 का है, ये युवाओं के कंधे पर ज्यादा है। युवाओं की बड़ी भूमिका रहने वाली है। आने वाले समय में पूरे देश के साथ साथ बरेली भी खेलों में और आगे बढ़े।
1: गत दिनों बरेली में नकटिया नदी के पुनर्जीवन को लेकर कैंटोनमेंट बोर्ड ने अभियान शुरू किया। अभियान की शुरुआत वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार ने की। उन्होंने कहा कि नदी को साफ करने के साथ ही इसके आसपास के क्षेत्र को भी विकसित किया जाएगा, ताकि नकटिया नदी को उसके पुराने स्वरूप में वापस लाया जा सके। इस अभियान का मकसद न सिर्फ नदी को प्रदूषण से मुक्त करना है, बल्कि जल संरक्षण और पर्यावरण को बेहतर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाना है। वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए उत्तर प्रदेश में बड़ी मुहिम चलाकर 40 करोड़ पेड़ एक ही दिन में लगाए गए हैं, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में किया था। वन मंत्री ने कहा कि नदियों का संरक्षण सरकार की प्राथमिकता है, जिसके तहत नकटिया नदी को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया जा रहा है। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब की आमद की खुशी में बरेली जिले में ईद मिलाद नबी का त्यौहार अकीदत और उत्साह के साथ मनाया गया। इस मौके पर शहर में 2 दिनों तक जुलूस ए मोहम्मदी का आयोजन किया गया। एक दिन पुराना शहर और दूसरे दिन नए शहर से निकले जुलूस में बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत की। जुलूस में शामिल लोगों ने पैगंबर मोहम्मद साहब की शिक्षाओं और उनके बताए रास्ते पर चलने का संदेश दिया। जगह जगह जुलूस का स्वागत किया गया। विभिन्न स्थानों पर लोगों ने जुलूस में शामिल लोगों के लिए पानी, शरबत एवं अन्य व्यवस्थाएं की। ईद मिलाद नबी के अवसर पर शहर के अलग अलग इलाकों में सजावट भी की गई। मस्जिदों और प्रमुख स्थानों को रोशनी से सजाया गया। जुलूस के दौरान बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी को देखते हुए प्रशासन और पुलिस की ओर से सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए। प्रमुख मार्गों पर पुलिस बल तैनात रहा और यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए रूट डाइवर्जन समेत अन्य व्यवस्थाएं की गईं। 2 दिनों तक चले आयोजन के दौरान आपसी भाईचारा और सौहार्द की तस्वीर भी देखने को मिली। कई जगह हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जुलूस का स्वागत किया और एक दूसरे को त्योहार की शुभकामनाएं दी। इससे शहर की गंगा जमनी तहजीब और सामाजिक सौहार्द का संदेश सामने आया। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के चेयरमैन डॉक्टर आशीष कुमार गोयल गत दिनों बुधवार बरेली पहुंचे। कलेक्ट्रेट सभागार में उन्होंने बरेली प्रथम जोन, द्वितीय जोन की विद्युत आपूर्ति व बिल वसूली की समीक्षा बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि उपभोक्ता संतुष्टि और निर्बाध बिजली आपूर्ति विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली ट्रिपिंग, फॉल्ट और ट्रांसफार्मर खराब होने की शिकायतों का तत्काल समाधान करने को कहा। समीक्षा बैठक में चेयरमैन ने कहा कि बिजली आपूर्ति की विश्वसनीयता बढ़ाने के साथ साथ उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं मिलनी चाहिए। शहरी क्षेत्रों में लाइन लॉस और राजस्व वसूली की स्थिति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को उपभोक्ताओं से मिलने वाले फीडबैक पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होंने बिलिंग व्यवस्था में सुधार पर भी जोर दिया। फोटो बिलिंग प्रोब और फोटो बिलिंग प्रतिशत बढ़ाने के साथ स्मार्ट मीटर वाले क्षेत्रों में पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। उपभोक्ता की बिल संबंधी समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए 1912 पोर्टल को प्रभावी बनाने और बिल सुधार कैंप लगाकर मौके पर ही समस्याओं का निस्तारण करने के निर्देश दिए।
0: बरेली जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं आजमगढ़ जिले की हलचल। आलेख और स्वर है नरेंद्र प्रताप का।
3: आजमगढ़ जिले में 80वां आजादी का पर्व 15 अगस्त को धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर जिले भर में सरकारी इमारतों को सजाया गया और झंडारोहण किया गया। स्वतंत्रता दिवस पूरे जनपद में हर्षोल्लास व धूमधाम के साथ मनाया गया। हरियोध कला केंद्र में कारागार मंत्री दारा सिंह चौहान द्वारा ध्वजारोहण पश्चात उनकी अध्यक्षता में सम्मान समारोह एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया।

0: जिलाधिकारी रविंद्र कुमार द्वारा कलेक्ट्रेट परिसर पर ध्वजारोहण किया गया। तत्पश्चात संगोष्ठी के माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम की समर वेदी में प्राणों की आहुति देने वाले अमर सेनानियों जननायकों को नमन करते हुए देशभक्ति पर उनके आदर्शों व मूल्यों को रेखांकित किया गया। महिला स्वावलंबन, आर्थिक सशक्तिकरण एवं उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए आजमगढ़ जिले में महिला स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से व्यापक स्तर पर कार्य किया जा रहा है। सोशल मोबिलाइजेशन अभियान में 6,000 समूहों का गठन कर आजमगढ़ प्रदेश में तीसरे स्थान पर आ गया है। परिवार सन्त्रीकरण एवं सोशल मोबिलाइजेशन अभियान को मिशन मोड में संचालित किया गया। अभियान के पहले अप्रैल 2026 तक जहां मात्र 350 समूह में लगभग 6,000 महिलाएं जुड़ी थी, तो वहीं डीएम के प्रभावी व सतत निर्देशन में मात्र 3 महीने में मई जून जुलाई 2026 यह संख्या बढ़कर 6,000 समूह में 1,00,000 महिलाओं तक पहुंच गया। अर्थात सोशल मोबिलाइजेशन अभियान के अंतर्गत लगभग 5,650 समूह तथा 94,000 महिला सदस्य बढ़ी। जिले में अगस्त महीने के अंतिम दिनों में हुई वर्षा से किसानों के चेहरे खिल गए। जिले में धान की फसल को पानी की आवश्यकता थी, जो वर्षा के पानी से पूरी हो गई। आजमगढ़ जिले में पर ड्रॉप मोर माइक्रोक्रॉप इरिगेशन योजना 2026-27 के अंतर्गत एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम कृषि विज्ञान केंद्र कोटवा आजमगढ़ में आयोजित किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में 100 कृषकों ने प्रतिभाग किया। कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों द्वारा योजना अंतर्गत कृषि फसलों के प्रयोग हेतु ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति का महत्व, प्रमुख घटक एवं उपयुक्त सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली की स्थापना के बाद हाई वैल्यू फसलों के चयन, सूक्ष्म सिंचाई पद्धति के माध्यम से फसलों में फर्टिगेशन की विधि तथा विभिन्न उपयुक्त उपकरणों के समावेश के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। इसके साथ ही आधुनिक कृषि तकनीकी एवं जल संरक्षण के महत्व पर विस्तार से जानकारी प्रदान की गई। आजमगढ़ जिले में मौसमी इन्फ्लुएंजा H1N1 स्वाइन फ्लू के 4 पॉजिटिव मामलों की पुष्टि के बाद स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह सतर्क है। जिला सर्विलांस अधिकारी को लखनऊ एवं वाराणसी स्थित चिकित्सा संस्थानों से प्राप्त रिपोर्टों पर जनपद स्तर पर सत्यापन कर लिया गया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आर्यन वर्मा ने बताया कि सत्यापित मामलों में लगभग 1 वर्षीय बालिका, 36 वर्षीय महिला, 45 वर्षीय पुरुष तथा 64 वर्षीय पुरुष शामिल हैं। इनमें 2 मामले शहरी क्षेत्र तथा 2 मामले ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित हैं। सभी संबंधित प्रकरणों में जिला सर्विलांस टीम द्वारा आवश्यक निगरानी एवं स्वास्थ्य संबंधी कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि जनपद में मेडिकल कॉलेज, मंडली जिला चिकित्सालय तथा तरवा, लालगंज एवं अतरौलिया स्थित 100 शैया चिकित्सालयों में H1N1 के दृष्टिगत वार्ड एवं बेड की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। अस्पतालों में जांच, उपचार, आवश्यक दवाओं की उपलब्धता तथा जरूरत पड़ने पर उच्च चिकित्सा संस्थानों में रेफर करने की व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने जनपदवासियों से अपील की है कि H1N1 को लेकर घबराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सावधानी बेहद जरूरी है। भीड़भाड़ वाले स्थानों, बाजारों, सार्वजनिक स्थलों एवं अन्य भीड़भाड़ वाले इलाकों में मास्क का प्रयोग अवश्य करें। खांसते एवं छींकते समय मुंह और नाक ढकें तथा हाथों की स्वच्छता पर विशेष ध्यान रखें। फ्लू जैसे लक्षण होने पर भीड़भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बचें। बच्चों, गर्भवती माताओं और बुजुर्गों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। बुखार, खांसी, गले में खराश, नाक बहना अथवा सांस लेने में परेशानी, मांसपेशियों में दर्द जैसे लक्षण दिखाई देने पर स्वयं दवा लेने के बजाय तत्काल नजदीकी स्वास्थ्य केंद्रों अथवा चिकित्सकों से परामर्श लें। आजमगढ़ जिले में रक्षाबंधन के पावन पर्व पर माताओं, बहनों और बेटियों को दिए गए निःशुल्क बस यात्रा के उपहार पर आजमगढ़ मंडल के व्यापक प्रसार देखने को मिला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की घोषणा के अनुरूप उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम एवं सिटी बस सेवा की बसों में 27, 28 एवं 29 अगस्त 2026 तक 3 दिनों के लिए महिलाओं को 1 सहयात्री सहित निःशुल्क यात्रा की सुविधा प्रदान की गई। आजमगढ़ मंडल के सभी 7 डिपों बलिया, बेलथरा, मऊ, द्वारीघाट, आजमगढ़, अम्बेडकर नगर एवं सागंज के अंतर्गत बड़ी संख्या में महिलाओं एवं उनके सहयात्रियों को इस सुविधा का लाभ उठाया। 3 दिनों में लगभग 2.5 लाख महिलाओं एवं सहयात्रियों ने 3 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की निःशुल्क बस यात्रा की।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
2: जिले की हलचल में आज आपने सुनी बरेली और आजमगढ़ जिलों की हलचल।
3: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है।

0: सुबह सवेरे आध्यात्मिक चेतना का कीजिए विकास आराधना के साथ।
1: विचारों की तरंग और भावनाओं की उमंग, नमस्कार प्रयागराज के संग।

0: एक ही कलाकार में फिल्मी सितारों का सफरनामा। जोड़िए दिल से दिल के तार हेलो फरमाइश के साथ।
1: गृह लक्ष्मी के साथ होंगी

0: लोक रंग लोक उमंग लेकर आता है पनघट।
1: युवाओं की सोच को आवाज देता कार्यक्रम युवावाणी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: और पंचायत घर में होंगी खेत खलिहान और चौपाल की बातें।

0: संस्कृत हिंदी और उर्दू कार्यक्रमों का संगम सिर्फ आकाशवाणी पर। तू शायर है,
1: मैं तेरी शायरी। समाज का प्रतिबिंब और जन जन की आवाज आईना के साथ।
2: तू आशिक है, मैं तेरी आशिकी।
0: सिल्वर स्क्रीन से खुलेगा सिनेमा की सुनहरी यादों का एल्बम।

0: गीत जो कह जाते हैं कहानी, कार्यक्रम बोलते नगमे की जबानी।
1: पहली बार हुआ तुम इतने दिन थी कहाँ, मैं ढूंढता ही रहा
0: कहाँ।
1: कभी लिंकिंग रोड, कभी वार्डन रोड, कभी कैडल रोड, कभी पेडल।
2: लिफाफों में बंद एहसासों के रंग, चिट्ठी आई है के संग।
1: पहली बार हुआ।
0: सुबह से रात तक आपकी आवाज आपके साथ।
2: सुनते रहिए आकाशवाणी प्रयागराज, धड़कन हर दिल की।

0: अभी लखनऊ केंद्र है। प्रस्तुत है उर्दू कार्यक्रम।
1: समीन आज के उर्दू प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। रामपुर रेडियो

0: किसी भी मुल्क की तिजारती पैदावार और तरक्की का इन्हेसार तालीम पर होता है। कुछ ऐसी ही बात कहते हैं आमिर जावेद।
1: तालीम और ख्वांदगी इंसान की जिंदगी में वो रोशनी पैदा करती है जिसके सहारे वो न सिर्फ अपने लिए बेहतर रास्ते तलाश करता है बल्कि अपने आसपास की दुनिया को भी बेहतर बनाने की कोशिश करता है। एक पढ़ा लिखा और बाशऊर इंसान अपने हुकूक को पहचानता है, अपने फराइज को समझता है और अपनी जिम्मेदारियों को महसूस करता है। आज की दुनिया में इल्म की अहमियत सिर्फ किताब पढ़ लेने या अपने नाम लिख लेने तक महदूद नहीं रही। आज इल्म इंसान को दुनिया के बदलते हुए हालात को समझने, मुश्किलात का सामना करने और बेहतर फैसला लेने के काबिल बनाता है। जब एक इंसान तालीम हासिल करता है तो उसके अंदर सिर्फ मालूमात का इजाफा नहीं होता बल्कि उसकी सोच में भी वो वसत पैदा होती है। वो अपने साथ साथ दूसरों के बारे में सोचना सीखता है। उसे एहसास होता है कि उसकी जिंदगी और उसकी तरक्की इस दुनिया से अलग नहीं है बल्कि वो अपने मुआशरे, अपने माहौल और अपने मुस्तकबिल से गहराई से जुड़ा हुआ है। आज इंसान तरक्की की नई नई मंजिलें तय कर रहा है। साइंस, टेक्नोलॉजी और तालीम के जरिए दुनिया तेजी से आगे बढ़ रही है, लेकिन इस तरक्की के साथ ये भी जरूरी है कि हम अपनी धरती की हिफाजत को न भूलें। हमारी धरती, हमारा पानी, हमारी हवा और हमारा माहौल हमारी जिंदगी का हिस्सा हैं। अगर हम एक बेहतर मुस्तकबिल चाहते हैं तो हमें अपने आज के तौर तरीकों को भी बेहतर बनाना होगा और यह शऊर तालीम से ही पैदा होता है। एक बाशऊर और तालीम याफ्ता इंसान जानता है कि कुदरत की नेमतों को जाया करना, अपने माहौल को आलूदा करना और आने वाली नस्लों के हिस्सों की दुनिया को नुकसान पहुंचाना किसी भी मायने में तरक्की नहीं है। असल तरक्की तो वो है जिसमें इंसान भी बेहतर जिंदगी गुजारे, मुआशरा भी आगे बढ़े और हमारी धरती भी महफूज रहे। इल्म इंसान को अपने पैरों पर खड़ा होने का हौसला देता है, लेकिन एक इंसान की खुशहाली सिर्फ उसकी अपनी खुशहाली नहीं होती। जब घर के लोग तालीम याफ्ता होते हैं तो पूरा खानदान आगे बढ़ता है। जब खानदान आगे बढ़ते हैं तो मुआशरा मजबूत होता है और जब मुआशरा मजबूत होता है तो मुल्क तरक्की के रास्ते चुनता है। इसीलिए तालीम को सिर्फ एक शख्स की जरूरत नहीं समझना चाहिए, यह पूरी इंसानियत की जरूरत है। हमारा फर्ज है कि हम तालीम को हर इंसान तक पहुंचाने की कोशिश करें।
2: मशहूर दानिश्वर नेपोलियन ने कहा था, तुम मुझे पढ़ी लिखी माँ दो, मैं तुम्हें एक बेहतरीन कौम दूंगा। जब एक लड़की पढ़ती है तो सिर्फ एक फर्द नहीं बल्कि आने वाली नस्लें संवरती हैं। इस मौजू पर अपने ख्यालात के साथ नौजवान तालिब इल्म खतीजा नास।
3: हम खुशकिस्मत हैं कि हमें किताबें पढ़ने और नई चीजें सीखने का मौका मिल रहा है। हमें अपनी तालीम की कदर करनी चाहिए और इल्म को सिर्फ इम्तिहान में अच्छे नंबर हासिल करने तक महदूद नहीं रखना चाहिए बल्कि उसे अपनी अमली जिंदगी में भी इस्तेमाल करना चाहिए। आज के इस मौके पर मैं खास तौर पर ख्वातीन की तालीम के बारे में भी बात करना चाहूंगी। एक तालीम याफ्ता औरत सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं संवारती बल्कि वह एक पूरे खानदान और आने वाली नस्लों की तरबियत करती है। इसलिए हर बेटी को तालीम का हक मिलना चाहिए, उसे पढ़ने, सीखने और अपने ख्वाब पूरे करने के मौके मिलने चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि लड़की की तालीम सिर्फ उसकी अपनी जात के लिए है, नहीं, क्योंकि एक तालीम याफ्ता बेटी मुस्तकबिल की एक बाशऊर माँ, जिम्मेदार शहरी और मुआशरे की मजबूत बुनियाद बन सकती है। याद रखें, एक फर्द की तालीम एक शख्स की तालीम होती है, लेकिन एक औरत को तालीम देना एक पूरी नस्ल को तालीम देना है।
0: हर मजहब में तालीम और तदरीस पर जोर दिया गया है।

0: हर साल 8 सितंबर को दुनिया भर में इस अज्म के साथ मनाया जाता है ये दिन कि तालीम और ख्वानदगी महज कोई डिग्री या सर्टिफिकेट हासिल करने का नाम नहीं, बल्कि ये हर इंसान का बुनियादी पैदाइशी और जमहूरी हक भी है, जिसे हासिल करना हर एक के लिए जरूरी है। खुद भी पढ़ो बनने के लिए आमिलो कामिल, अनपढ़ जो कोई मिल जाए तो उसको भी पढ़ा दो।
1: मेरा नाम इमरान अली है। मैंने अपनी शुरुआती तालीम मुकम्मल करने के बाद MSc एग्रीकल्चर यानी कृषि विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन की तालीम हासिल की। अपनी तालीम के दौरान मैंने ये महसूस किया कि जिस तरह एक बीज को अच्छी मिट्टी, पानी और देखभाल मिले तो वो एक मजबूत पौधा बनता है। हमारे बच्चे हमारे समाज का मुस्तकबिल हैं। वालिदैन से मेरी गुजारिश है कि बच्चों की तालीम पर खास तवज्जो दें, उन्हें स्कूल भेजें, उनकी पढ़ाई के बारे में पूछें और उनके साथ रोज कुछ वक्त जरूर गुजारें। हमारी बेटियों को भी बेटों की तरह तालीम हासिल करने का पूरा हक मिलना चाहिए। जो महिलाएं किसी वजह से अपनी तालीम मुकम्मल नहीं कर पा सकीं, उन्हें मायूस होने की जरूरत नहीं है। इल्म हासिल करने की कोई उम्र नहीं होती, वो आज भी पढ़ना लिखना सीख सकती हैं।
2: ख्वानदगी का मतलब दरअसल शऊर की बेदारी, सही और गलत में फर्क, अपने हुकूक का इदराक और माशरे में एक बवाकार जिंदगी गुजारने की सलाहियत का नाम है।
0: इल्म इंसान को अंदरूनी बसीरत बख्शता है, उसके अंदर तनकीदी सोच पैदा करता है। एक नाख्वानदा माशरा गुर्बत, बीमारी, जिहालत और नाइंसाफी की जंजीरों से जकड़ा रहता है। ऐसे ही ख्यालात एक ऐसी सोशल वर्कर और समाजी और तालीमी अदारों से जुड़ी हुई एक खातून डॉक्टर रक्षंदा साजिश से।
3: अल्लाह ताला के तमाम मखलूकात में बोलने, सोचने, समझने और अपने ख्यालात का इजहार करने की सलाहियत सिर्फ इंसान ही को अता की गई है और इस कायनात में ये वाहिद मखलूक है जिसको अल्लाह ताला ने गौर व फिक्र करने की सलाहियत से नवाजा है। इल्म दो तरह से हासिल होता है, एक जो हम देखकर, महसूस करके और किताबों वगैरह से हासिल करते हैं, ये एक्वायर्ड नॉलेज कहलाती है, और दूसरा इल्म जो मखसूस लोगों पर वारिद होता है, इसको हम इनलाइटनमेंट कहते हैं। जैसे गौतम बुद्ध को ज्ञान मिला और ऐसी ही बेशुमार मिसालें हमें मिलती हैं। आज के दौर में हर किसी के हाथ में मोबाइल है, इन्फॉर्मेशन की भरमार है। एक नाख्वानदा इंसान भी बहुत सारी मालूमात रखता है। ये AI का जमाना है, झूठ को सच और सच को झूठ बनाने में वक्त नहीं लगता। इसलिए जरूरी है कि हमारी नस्लें किताबों से जुड़ें। जमाने कदीम से हमारे आबाओ अजदाद ने इल्म का तहफ्फुज़ किया, जिसके नतीजे में आज भी हमारे वेद मौजूद हैं। जब हमारी नस्लें तालीम याफ्ता होंगी, वो अपने बुजुर्गों के इल्म को महफूज करेंगी। ख्वानदगी के मायने लिखना, पढ़ना, जानना, लेकिन आज के दौर का अलमिया ये है कि लोग सिर्फ टेक्नोलॉजी पर इन्हिसार कर बैठे हैं। आज सोशल मीडिया का जमाना है, इसलिए माशरे में कितने इंतशार सा फैल गया है। इन तमाम मसाइल पर गौर व फिक्र की जरूरत है। आज़ादी के बाद हमारे मुल्क में ख्वानदगी यानी लिटरेसी रेट तो बहुत आगे बढ़ा है, लेकिन आज के दौर में टेक्नोलॉजिकल लिटरेसी की भी शदीद ज़रूरत है ताकि माशरे को इंतशार से बचाया जा सके।

0: जहां तालीम होती है वहां अंधविश्वास और नफरत पनपती नहीं है, वहां रखी जाती है भाईचारे और इंसानियत की बुनियाद। रजा डिग्री कॉलेज रामपुर के डॉक्टर अब्दुल लतीफ के शब्दों में,
1: इल्म वो दौलत है जिसे जितना बांटा जाए उतना ही बढ़ती जाती है। एक पढ़ा लिखा इंसान न केवल अपनी जिंदगी को बेहतर बनाता है बल्कि अपने खानदान, समाज और मुल्क की तरक्की में भी अहम किरदार अदा करता है। एक पढ़ा लिखा किसान नई तकनीक और सरकारी योजनाओं की जानकारी हासिल कर सकता है। एक पढ़ा लिखा नागरिक अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों को बेहतर ढंग से समझ सकता है। आज साक्षरता का दायरा भी पहले से कहीं ज्यादा बसी हो गया है। अब केवल किताब पढ़ लेना ही काफी नहीं है, आज के दौर में हमें डिजिटल साक्षरता, वित्तीय साक्षरता और मीडिया साक्षरता की भी जरूरत है। हमें अपने आसपास ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए जो पढ़ना लिखना सीखना चाहते हैं, खासतौर पर महिलाओं, ग्रामीण क्षेत्रों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तक तालीम की रोशनी पहुंचाना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। हम साक्षरता को महज एक दिन का कार्यक्रम ना बनाकर इसे अपनी जिंदगी का मिशन बनाएं। इल्म की रोशनी हर घर तक पहुंचे, हर हाथ में कलम हो, हर जहन में शऊर हो और हमारा मुल्क तरक्की और खुशहाली की नई मंजिलें तय करे।
2: ये सिर्फ हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है बल्कि हमारा भी फर्ज है कि हम अपने आसपास के माहौल को देखें। अगर हम किसी एक इंसान को भी पढ़ना लिखना सिखा सकें तो ये मुल्क और इंसानियत के लिए सबसे बड़ी खिदमत होगी।
0: आज हम सब मिलकर ये अहद करें कि हर एक पढ़ाए एक।

0: अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज के कलाकार हैं SK घोष। इनके स्वर में सुनिए ये भजन।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में एसके गाए, एसके घोष के गाए इस भजन के साथ ही ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचार।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई गलियारे के 3 महत्वपूर्ण खंड राष्ट्र को समर्पित किए जाएंगे। अहमदाबाद में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह परियोजना पूरी तरह से तैयार हो चुकी है।
1: डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ईस्ट और वेस्ट, ये दोनों देश के लिए बहुत बड़ी एक बैकबोन की तरह है ट्रांसपोर्टेशन में। वो प्रोजेक्ट अब कंप्लीट हुआ पूरी तरह से, उसको माननीय प्रधानमंत्री जी राष्ट्र के प्रति समर्पित करेंगे। ये परियोजना ऐसी है जिसमें कई वर्ष लगे, 2014 में प्रधानमंत्री ने उस काम को हाथ में लिया, जितनी भी उसमें प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व किया।
0: श्री मोदी कई रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य सरकार की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की भी शुरुआत करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का उद्घाटन करेंगे।

0: इसमें डिजिटल भुगतान, वित्तीय समावेशन और नई तकनीकों के माध्यम से वित्तीय क्षेत्र को और मजबूत बनाने पर विचार विमर्श होगा। रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र बलों के लिए 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई परिषद की बैठक में दी गई। बैठक में सेना के लिए रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु टोही वाहन, हाई मोबिलिटी वाहन, स्वचालित माइन लेयर, एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर, टॉल टैंक और सर्वत्र ब्रिज सिस्टम की खरीद को भी मंजूरी दी गई। लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री ज़ेवियर बेटल ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान वैश्विक व्यवस्था के अनुसार इस निकाय में सुधार आवश्यक है। एक साक्षात्कार में श्री बेटल ने कहा कि आकार और वैश्विक महत्व के कारण विस्तारित सुरक्षा परिषद में भारत की जगह आवश्यक है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन ने भारत को एक महत्वपूर्ण राजनयिक केंद्र बताया है। नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए रवाना होने से पहले उन्होंने आशा व्यक्त की है कि ये समूह द्विपक्षीय व्यापार को और रणनीतिक सहयोग प्रगाढ़ करने के लिए एक मजबूत मंच प्रदान करेगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघेई ने कहा कि ईरान ने भारत के साथ अपने दीर्घकालिक संबंधों के महत्व पर बल दिया। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने सऊदी अरब में भारतीय समुदाय से बातचीत की। श्री सिंह ने व्यापार, निवेश, ऊर्जा और संस्कृति के क्षेत्र में भारत और सऊदी अरब के संबंधों को मजबूत करने में भारतीय समुदाय के अमूल्य योगदान की सराहना की। श्री सिंह ने उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 के विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने में योगदान देने के लिए भी प्रोत्साहित किया। 6G नेटवर्क के विकास की वैश्विक पहल में भारत, अमेरिका और 24 अन्य देशों के साथ शामिल हो गया है। इस पहल का उद्देश्य 6G नेटवर्क की सुरक्षा मजबूत करना, प्रतिस्पर्धा बढ़ाना और नई तकनीक को बढ़ावा देना है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव राज्य में निवेश आकर्षित करने के उद्देश्य से दुबई यात्रा के तीसरे दिन आज दुबई में कई महत्वपूर्ण बैठकें करेंगे। डॉ. यादव संयुक्त अरब अमीरात के प्रमुख निवेशकों और उद्योगपतियों के साथ व्यक्तिगत बैठकें भी करेंगे। मुख्यमंत्री भोपाल में आयोजित होने वाले वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2027 में निवेशकों को आमंत्रित करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि साक्षरता ज्ञान, अवसर और बेहतर भविष्य का मार्ग खोलती है। उन्होंने लोगों से शिक्षा को बढ़ावा देने और यह सुनिश्चित करने की अपील की है कि कोई भी सीखने से वंचित ना रहे। श्री जोशी ने कहा कि शिक्षित और सशक्त नागरिक ही विकसित भारत की नींव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विभिन्न स्रोतों से ज्ञान हासिल करने के महत्व पर बल दिया। संस्कृत श्लोक साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जिस तरह मधुमक्खी कई फूलों से मधु एकत्र करती है, उसी तरह बुद्धिमान व्यक्ति को हर क्षेत्र से उपयोगी ज्ञान ग्रहण करना चाहिए। और खेलों में अहमदाबाद में विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला में आज भारत 4 स्वर्ण पदक मुकाबलों में अपनी चुनौती रखेगा। भारतीय महिला पैरा रिकर्व टीम फाइनल में चीन से खेलेंगी। भारतीय पुरुष पैरा रिकर्व टीम स्लोवाकिया से और पैरा कंपाउंड पुरुष टीम इराक से खेलेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

अगला गीत रांझना फिल्म से श्रेया घोषाल की आवाज़, बोल है इरशाद कामिल के और संगीत है ए आर रहमान का।

फिल्म डंकी से अरिजीत सिंह की आवाज, बोल है इरशाद कामिल के, संगीत है प्रीतम का।

अरिजीत सिंह के गाए इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए लोक माधुरी कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में कलाकार हैं पंचम लाल यादव और साथी प्रतिमा मिश्रा, विष्णु राजा। सबसे पहले सुनिए पंचम लाल यादव और साथी के स्वर में ये देवी गीत।

लोकमाद्री कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पंचम लाल यादव और साथी के गाए लोकगीत। लीजिए सुनिए प्रतिमा मिश्रा के गाए लोकगीत। सबसे पहले सुनिए इनके स्वर में ये देवी गीत।

सुन रहे थे पंचमलाल यादव और साथी के गाए लोकगीत। लीजिए सुनिए प्रतिमा मिश्रा के गाए लोकगीत। सबसे पहले सुनिए इनके स्वर में ये देवी गीत।

0: लोकमाधुरी कार्यक्रम में आप सुन रहे थे प्रतिमा मिश्रा के गाए लोकगीत। लीजिए सुनिए विष्णु राजा के स्वर में ये देवी गीत।
1: निमिया के दाढ़ी मैया

विष्णु राजा के गाए झूमर के साथ ही लोकमाधुरी कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। अगला कार्यक्रम एक ही कलाकार, बस कुछ ही पलों बाद।

आज मैं उस महान शख्सियत के बारे में बोलना चाहती हूँ जिनकी आवाज़ में कभी शरारत सुनाई दी, कभी प्रेम, कभी दर्द और कभी जिंदगी का उत्सव। ये नाम है आशा भोसले। आशा भोसले का जन्म 8 सितंबर 1933 को महाराष्ट्र के सांगली में हुआ था। वो महान शास्त्रीय गायक और रंगमंच कलाकार पंडित दीनानाथ मंगेशकर की बेटी और स्वर कोकिला लता मंगेशकर की छोटी बहन है। लेकिन आशा जी की सबसे बड़ी पहचान किसी रिश्ते से नहीं बल्कि अपनी अद्भुत प्रतिभा और अपनी अलग आवाज़ से बनी।

उनका संगीत सफ़र आसान नहीं था। बहुत कम उम्र में उन्होंने गायन शुरू किया और शुरुआती दौर में उन्हें वो सम्मान और बड़े अवसर नहीं मिले जिनकी वो हकदार थीं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने आवाज़ को किसी एक शैली में सीमित नहीं किया। फिल्मी गीतों से लेकर गज़ल, शास्त्रीय संगीत, पॉप और लोक संगीत तक उन्होंने हर क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई।

फिर वो दौर आया जब आशा भोसले की आवाज़ ने हिंदी सिनेमा में एक नई ऊर्जा भर दी। ये दम मरुदम, ये जो गीत आपने सुना, प्रिया तू अब तो आजा, चुरा लिया है तुमने, जैसे गीतों ने उन्हें लोकप्रियता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। वहीं इन आँखों की मस्ती की जैसे गज़ल ने साबित किया,

इन आँखों की मस्ती की जैसी गज़ल ने ये साबित कर दिया कि उनकी आवाज़ सिर्फ चंचलता ही नहीं बल्कि गहराई और नज़ाकत भी अपने भीतर रखती है। उनके योगदान के लिए अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। उन्हें 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 7 फिल्मफेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। वर्ष 2008 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया।

लेकिन आशा जी की कहानी केवल पुरस्कारों की कहानी नहीं है, वो उस इंसान की कहानी है जिसने परिस्थितियों को अपनी पहचान बनने नहीं दिया बल्कि अपनी मेहनत से अपनी पहचान खुद बनाई। उनकी ज़िंदगी हमें खूबसूरत संदेश देती है। सफलता की सबसे बड़ी खूबसूरत बात यह है कि वह उम्र नहीं देखती, वह केवल जुनून और मेहनत देखती है। आशा जी भी अपनी आवाज़ से उन्होंने कभी लोगों को हंसाया, कभी रुलाया और कभी कुछ बिन कहे ही कह जाती हैं। कुछ आवाज़ें कानों तक पहुंचती हैं लेकिन कुछ आवाज़ें सीधे दिल में उतर जाती हैं, और आशा भोसले की आवाज़ उन्हीं आवाज़ों में से एक है।

आवाज़ जो हर रंग में ढल गई। संगीत वो भाषा है जिसे समझने के लिए शब्दों की ज़रूरत नहीं होती।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही कलाकार। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत।

एक ऐसा एहसास जो दिल की हर धड़कन में बस जाता है, जब इश्क की बात हो तो संगीत खुद ब खुद होठों पर आ जाता है। इस एहसास को अपनी आवाज़ से सजाया है विशाल मिश्रा ने, और इसके बोल लिखे हैं सईद कादरी ने। मन को छू लेने वाला संगीत दिया है मिथुन ने। तो आइए सुनते हैं फिल्म गदर 2 का ये प्यार भरा नगमा।

श्रोताओं, अब बारी है एक ऐसे गीत की जिसने अपने भावपूर्ण बोल और दिल को छू लेने वाली धुन से हर श्रोता के दिल में खास जगह बना ली है। फिल्म सैयारा का ये लोकप्रिय गीत बर

जिसने अपनी सादगी और गहराई के लिए खूब सराहना पाई। इस गीत को अपनी भावपूर्ण आवाज दी है जुबिन नौटियाल ने, इसके बोल लिखे हैं ऋषभ कांत ने और इन्होंने ही इसका मधुर संगीत सजाया। तो आइए इश्क के इसी खूबसूरत एहसास में डूबते हैं और सुनते हैं फिल्म सैयारा का ये दिल छू लेने वाला नगमा।

श्रोताओं, अब पेश है साल 2005 की सुपरहिट फिल्म आशिक बनाया आपने का वो यादगार गीत, जिसने अपनी मधुर धुन और दिलकश अंदाज से संगीत प्रेमियों के दिलों में एक अलग ही जगह बना ली। इस गीत को अपनी खास आवाजों से सजाया है हिमेश रेशमिया और श्रेया घोषाल ने। इसके बोल हैं समीर के और इसका संगीत दिया है हिमेश रेशमिया ने। तो आइए

जिसने अपनी मधुर धुन और दिलकश अंदाज से संगीत प्रेमियों के दिलों में एक अलग ही जगह बना ली। इस गीत को अपनी खास आवाजों से सजाया है हिमेश रेशमिया और श्रेया घोषाल ने। इसके बोल हैं समीर के और इसका संगीत दिया है हिमेश रेशमिया ने। तो आइए सुनते हैं इमरान हाशमी और तनुश्री दत्ता पर फिल्माया गया ये सदाबहार गीत।

श्रोताओं, आशिकी टू का वो सदाबहार गीत जिसने प्यार की नई परिभाषा लिख दी, तुम ही हो आज भी हर संगीत प्रेमी की ये पसंदीदा धुनों में से एक है। इस गीत को अपनी भावपूर्ण आवाज से अमर बनाया है अरिजीत सिंह ने। गीत की खूबसूरत बोलों को मिथुन ने अपने संगीत के साथ पिरोया है। तो आइए इश्क और एहसास की इस खूबसूरत दुनिया में खो जाते हैं और सुनते हैं फिल्म आशिकी 2 का ये प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, जिसमें टू का ये बेहद खूबसूरत और भावनाओं से भरा गीत ये कसूर मेरा है। इस गीत में प्यार, भरोसे और दिल की गहराइयों को बेहद खूबसूरती से महसूस किया जा सकता है। इस गीत को अपनी मधुर और दर्द भरे आवाज दी है सोनू कक्कड़ ने और इसके खूबसूरत बोल लिखे हैं मिथुन ने। तो श्रोताओं, आइए सुनते हैं ये दिल को छू लेने वाला प्यारा सा गीत।

फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप सुन रहे थे अपनी दोस्त और होस्ट मंदाकिनी तिवारी के साथ। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा हमें आपके मैसेजेस और व्हाट्सएप मैसेजेस के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। और इसके लिए हमारा चाहिए व्हाट्सएप नंबर 8004926250।

0: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिन्हें हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे। वे वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। वे पश्चिमी क्षेत्र के लिए विशेष माल ढुलाई गलियारे WDFC के 3 महत्वपूर्ण खंड राष्ट्र को समर्पित करेंगे। अहमदाबाद में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये परियोजना पूरी तरह तैयार हो चुकी है।
2: डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ईस्ट और वेस्ट, ये दोनों देश के लिए बहुत बड़ी एक बैकबोन की तरह है ट्रांसपोर्टेशन में। वो प्रोजेक्ट अब कंप्लीट हुआ पूरी तरह से, उसको माननीय प्रधानमंत्री जी राष्ट्र के प्रति समर्पित करेंगे। ये परियोजना ऐसी है जिसमें कई वर्ष लगे। 2014 में प्रधानमंत्री ने उस काम को हाथ में लिया, जितनी भी उसमें प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व किया।
1: श्री मोदी कई रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य सरकार की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की शुरुआत भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का उद्घाटन करेंगे। इसमें डिजिटल भुगतान, वित्तीय समावेशन और नई तकनीकों के माध्यम से वित्तीय क्षेत्र को और मजबूत बनाने पर विचार विमर्श होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से 3 दिवसीय दौरे पर श्रीलंका जा रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि दीर्घकालिक साझेदारी और गहरे ऐतिहासिक तथा दशकों से चले आ रहे मैत्रीपूर्ण संबंधों के कारण श्रीलंका भारत की पड़ोसी पहले नीति और महासागर संबंधी पहलुओं के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण साझेदारों में से एक है। रक्षा मंत्री श्रीलंका में रहने वाले भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी बातचीत करेंगे। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने सऊदी अरब में

भारतीय समुदाय से बातचीत की। श्री सिंह ने व्यापार, निवेश, ऊर्जा और संस्कृति के क्षेत्र में भारत और सऊदी अरब के संबंधों को मजबूत करने में भारतीय समुदाय के अमूल्य योगदान की सराहना की। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन ने भारत को एक महत्वपूर्ण राजनयिक केंद्र बताया है। नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए रवाना होने से पहले उन्होंने आशा व्यक्त की कि यह समूह द्विपक्षीय व्यापार और रणनीतिक सहयोग प्रगाढ़ करने के लिए एक मजबूत मंच प्रदान करेगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघेई ने कहा कि ईरान ने भारत के साथ अपने दीर्घकालिक संबंधों के महत्व पर बल दिया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और डॉ. जितेंद्र सिंह आज मध्य प्रदेश के विदिशा में अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज में कैंसर के मरीजों की देखभाल के लिए कीमोथेरेपी डे केयर यूनिट का उद्घाटन करेंगे। ये नई इकाई कैंसर के मरीजों को बेहतर और सुव्यवस्थित ढंग से कीमोथेरेपी सेवाएं उपलब्ध कराएगी। आज अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है। 1967 में पहली बार इस दिवस का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य व्यक्ति, समुदाय और समाज के लिए साक्षरता का महत्व उजागर करना है। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने लोगों से शिक्षा को बढ़ावा देने और ये सुनिश्चित करने की अपील की कि कोई भी सीखने से वंचित न रहे। श्री जोशी ने कहा कि शिक्षित और सशक्त नागरिक ही विकसित भारत की मजबूत नींव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज भारत रत्न डॉ. भूपेन हजारिका की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि डॉ. हजारिका की आवाज ने पूर्वोत्तर की भावना को पूरे देश तक पहुंचाया। सोशल मीडिया पोस्ट में गृहमंत्री ने कहा कि भूपेन हजारिका के संगीत ने असमिया संस्कृति को उसकी संपूर्ण विविधता के साथ विश्व मंच पर पहुंचाया है। भारतीय जूनियर हॉकी टीम ने चीन में एशिया कप के पूल मैच में आज दक्षिण कोरिया को 7-3 से हराया। कप्तान अनमोल एक्का ने 2 गोल किए। भारत के अब 3 मैचों से 7 अंक हो गए हैं। कल भारत अंतिम पूल मैच में चीनी ताइपे से मुकाबला करेगा। ये मैच जीतने पर भारत सेमीफाइनल में जगह पक्की कर लेगा। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज लगभग आधे प्रतिशत की गिरावट आई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 427 अंक गिरकर 75,705 पर और निफ्टी 104 अंक गिरकर 23,675 पर पहुंच गया। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन में भारत के पूर्वोत्तर हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार आज बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में भी इसी तरह का मौसम रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

खेलों में रुचि रखने वाले श्रोताओं के लिए कार्यक्रम होगा खेल दर्पण रात 10 बजे, जिसे हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे। 6:50 पर हम आपको सुनवाएंगे प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी, जिसे हम अपने लखनऊ केंद्र से ही रिले करेंगे।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रमों में दोपहर 12:15 पर प्रेम जैन का गिटार वादन और रात 10:30 प्रेम कुमार मलिक का धमार गायन होगा। 12:30 पर श्रोताओं की फोन कॉल्स पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा हेलो फरमाइश। 1:15 पनघट कार्यक्रम में ग्रामीण अंचल की महिलाएं सुनेंगी रंजना त्रिपाठी के स्वर में लोकगीत और कंचन श्रीवास्तव की शुभी मालवी से बातचीत सुनवाएंगी महिलाएं सशक्त कैसे बने। 2:30 NCERT की ओर से प्रायोजित कार्यक्रम होगा। 5:00 धरती के गीत कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे छेदीलाल और साथी के स्वर में लोकगीत।

5:15 बजे यूजन अपना कार्यक्रम सुनेंगे युववाणी। 6:30 बजे पंचायत घर कार्यक्रम में ग्रामीण भाई सुनेंगे बाबूलाल दिवाकर के स्वर में लोकगीत के अलावा अवधेश चंद की वार्ता डेयरी उद्योग में जैव प्रौद्योगिकी। विद्यानंद त्रिपाठी से रामायण पाठ होगा। 7:31 पर संस्कृत कार्यक्रम में डॉक्टर नीलेश मिश्र की वार्ता होगी भारतीय संस्कृतो नारीणाम स्थानम।

7:45 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में कलाकार होंगे सुमधुर भाषिनी तिवारी। इनके स्वर में हम आपको भजन और गीत सुनवाएंगे। 8:30 बजे सबरस कार्यक्रम होगा और 9:30 पर गजलों पर आधारित कार्यक्रम होगा कहकशां।

अभी आप सुन रहे थे आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। शिक्षा मनुष्य में आत्मविश्वास जगाती है। खुद शिक्षित बनिए और दूसरों को साक्षर बनाइए।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। आइए सुनते हैं शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं प्रेम जैन का गिटार वादन राग मधुमात सारंग। इनके साथ तबला संगत की है श्री अनूप बनर्जी ने।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे प्रेम जैन का गिटार वादन राग मधुमात सारंग। इनके साथ तबले पर संगत की थी श्री अनूप बनर्जी ने। इसके साथ ही शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। आइए सुनते हैं श्रोताओं के फोन कॉल्स पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम हेलो फरमाइश। प्रस्तुति है मधु कुमार की।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम, अपना नाम बताइए।
1: सोनू जायसवाल था फिर प्रतापगढ़ से बोल
0: जी
1: रहा।
0: सोनू जी, कौन सा गीत सुनेंगे?
1: राज का
0: गाने के बोल बताएंगे?
1: कोई सा भी।
0: कोई भी गीत राज फिल्म का सोनू जी ने सुनना चाहा है तो चलिए सोनू जी, हम आपको राज फिल्म का सुनवाते हैं ये गाना।

0: लीजिए।
1: संगम नगरी प्रयागराज डीबी क्लब बंदुकरा से पवन निषाद बोल रहे हैं। नमस्कार।
0: नमस्कार पवन जी, कौन सा गीत सुनेंगे?
1: पड़ोसन फिल्म का।
0: जी जी, गीत के बोल बताइए।
1: चतुर नार बड़ी होशियार।
0: अच्छा जी, महमूद और किशोर कुमार सुनील दत्त के ऊपर फिल्म आई गई, ये फिल्म थी।
1: दोस्तों को नाम लेना
0: चाहिए। जी जी जी,
1: हमारे भाई साहब जो सागर प्रसाद प्रजापति थे
0: जी,
1: राजेंद्र प्रसाद जी हैं प्रतापगढ़ से, हमारे पड़ोसन है महेंद्र महेंद्र साहू केवलिया से, प्रेमचंद यादव हैं, विकास ड्राइवर, प्रभाकर तिवारी।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम, अपना नाम बता दीजिए।
1: नमस्कार मैम।
0: नमस्कार जी,
1: विकास बोल रहे हैं दादनपुर प्रयागराज से, ट्रक ड्राइवर
0: जी। दादनपुर प्रयागराज से विकास जी हमारे साथ हैं, तो विकास जी कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: फिल्म का नाम है सलामी
0: जी,
1: और गाने के बोल हैं, जब हाले दिल मिलने आते पर देख मेरा दीवानापन ये तो पड़ जाते।
0: तो भाई सलामी फिल्म

0: करते हैं।
1: फिल्म का नाम है सलामी
0: जी,
1: और गाने के बोल हैं जब हाले दिल मिलने आते पर देख मेरा दीवानापन ये खून में पड़ जाता।
0: तो भाई सलामी फिल्म के इस गीत की फरमाइश दादनपुर प्रयागराज से विकास जी ने की है, तो विकास जी अपने मित्रों के नाम लेना चाहते हैं तो ले लीजिए।
1: बिल्कुल मैडम जी, हमारे एक श्रोता हैं प्रेमचंद यादव जी हैं जो हंडिया प्रयागराज के रहने वाले हैं
0: जी जी,
1: और एक है राजेंद्र जो प्रतापगढ़ कुंडा के रहने वाले हैं। ये सभी बहुत ही अच्छे श्रोता हैं और ये गाना हमारे सारे श्रोताओं के लिए रहेगा।
0: तो चलिए सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम, अपना नाम बता दीजिए।
1: मेरा नाम नितेश आर्या, प्रयाग से बात कर रहा हूँ।
0: जी नितेश जी, बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: फिल्म का नाम है दिल लगी, फिल्म का टाइटल।
0: अच्छा, दिल लगी फिल्म का गीत सुनना चाहते हैं नितेश जी। तो नितेश जी नाम लेने हैं आपने अपने मित्रों के?
1: जी हमारे विकास के हैं।
0: अच्छा जी,
1: और सभी श्रोताओं को विजिट किया जाएगा।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम, अपना नाम बता दीजिए।
1: गुतने कुंडा प्रतापगढ़ गांव, मेरा राजेंद्र कुमार कहलाता हूँ। पसंदीदा फोन इन कार्यक्रम शब्द निभाता हूँ। फरमाइश के द्वारा सुनने वाले श्रोताओं को केंद्र से मन पसंदीदा
0: गीत सुनवाता हूँ। तो राजेंद्र जी, कौन सा गीत सुनवाना है?
1: फिल्म का नाम है प्यार का मौसम।
0: जी, कौन सा गाना है?
1: निसुल्ताना रे
0: प्यार का मौसम आया। तो चलिए भाई, इतना बेहतरीन गाना आपने चुना है, तुम नाम लेने अपने मित्रों के।
1: जी, श्रोता मित्र हैं हमारे जो ये शारदा प्रसाद प्रजापति और विकास ट्रक ड्राइवर नितेश आर्या और प्रभाकर तिवारी जी हैं।
0: जी,
1: राकेश हैं।
0: तो आपको सुनवाने जा रहे हैं प्यार का मौसम फिल्म का ये गाना।

0: अभी आप सुन रहे थे श्रोताओं के फोन स्कॉर्स पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम हेलो फरमाइश, प्रस्तुति थी मधु कुमार की। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्स और एफएम 100.3 मेगा हर्स पर। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार, जिन्हें हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया। उन्होंने पश्चिमी क्षेत्र के लिए विशेष माल ढुलाई गलियारे WGFC के 3 महत्वपूर्ण खंड राष्ट्र को समर्पित किए। प्रधानमंत्री इस समय जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
2: 50,000 आधुनिक कोच तो किए ही, करीब 2.5 लाख वैगन, मालगाड़ी के लिए जो वैगन होते हैं, भारतीय रेल में जोड़े गए हैं। 2.5 लाख। साथियों, अब भारत चीप से लेकर शिप तक निर्माण की एक नई गाथा लिख रहा है। यानी पुर्जे भी हमारे और प्रोडक्ट भी हमारा। आत्मनिर्भरता की पूरी चेन भारत में ही बनेगी। और ये हम सोलर पावर के मामले में देख रहे हैं, जैसे कड़ाना डैम पर जो फ्लोटिंग सोलर प्लांट प्रोजेक्ट है। कुछ साल पहले तक देश में सोलर प्रोजेक्ट लगाने बहुत महंगे पड़ते थे, क्योंकि पीवी मॉड्यूल से लेकर हर प्रकार का हार्डवेयर इंपोर्ट करना पड़ता था। लेकिन बीते वर्षों में हमने भारत में ही पीवी मॉड्यूल बनाने शुरू किए।
1: प्रधानमंत्री आज मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का उद्घाटन करेंगे। इसमें डिजिटल भुगतान, वित्तीय समावेशन और नई तकनीकों के माध्यम से वित्तीय क्षेत्र को और मजबूत बनाने पर विचार विमर्श होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से 3 दिवसीय दौरे पर श्रीलंका जा रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि दीर्घकालिक साझेदारी और गहरे ऐतिहासिक तथा दशकों से चले आ रहे मैत्रीपूर्ण संबंधों के कारण श्रीलंका भारत की पड़ोसी पहले नेते और महासागर संबंधी पहलुओं के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण साझेदारों में से एक है। रक्षा मंत्री श्रीलंका में रहने वाले भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी बातचीत करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सत्य निकेतन में भवन ढहने की घटना में घायल हुए लोगों से मिलने के लिए आज अखिल भारतीय आयुर्वेद

0: विज्ञान संस्थान का दौरा किया। पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार प्रभावित छात्रों और मजदूरों के परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि इस घटना में 7 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 12 घायलों को इलाज के लिए अस्पताल लाया गया है। दिल्ली यातायात पुलिस ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ डोसू चुनाव के सिलसिले में आज छात्र संवाद कार्यक्रम और चुनाव प्रचार को देखते हुए यातायात परामर्श जारी किया है। शाम 4 बजे तक नॉर्थ कैंपस के आसपास के इलाकों में यातायात प्रभावित रह सकता है। बिहार में गंगा, गंडक, कोसी और सोन समेत विभिन्न नदियों के जलस्तर में कमी आने से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को राहत मिली है। हालांकि कुछ इलाकों में जलस्तर बढ़ने से बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। आज अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है। 1967 में पहली बार इस दिवस का आयोजन किया गया था। इसका उद्देश्य व्यक्ति, समुदाय और समाज के लिए साक्षरता का महत्व उजागर करना है। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने लोगों से शिक्षा को बढ़ावा देने और ये सुनिश्चित करने की अपील की कि कोई भी सीखने से वंचित न रहे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज भारत रत्न डॉ. भूपेन हजारिका की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक आज दोपहर के कारोबार में गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे। सेंसेक्स 456 अंक गिरकर 75,676 पर और निफ्टी 117 अंक की गिरावट के साथ 23,662 पर था। भारतीय जूनियर हॉकी टीम ने चीन में एशिया कप के पूल मैच में आज दक्षिण कोरिया को 7-3 से हराया। कप्तान अनमोल एक्का ने 2 गोल किए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi inaugurated and laid the foundation stones for various development initiatives worth over 35,000 crore rupees in Vadodara. The Prime Minister dedicated to the nation 3 key sections of the Western Dedicated Freight Corridor, marking the full completion and operationalization of the freight corridor network. The Prime Minister also flagged off freight train services from New Sanand, New Makarpura, New Umargaon and New JNPT, along with a new passenger train service between Tanda Road and Vadodara, connecting remote tribal regions of Alirajpur to the national rail grid. Addressing the huge gathering, the Prime Minister highlighted the rapid transformation of India's transport and logistics sector, calling the completion of over 2,800 kilometers of dedicated freight corridors a historic achievement for 21st century India and a testament to the nation's changing work culture. We now go over live to the Prime Minister's address.
2: And with this feeling, I have declared Lal Kile se bhi yuva shakti ke liye do badi ghoshnaye ki hai. Pehli ghoshna desh ki paramparik zarurat se judi hai. आप सब जानते हैं कि हमारे यहां लाखों नौजवान ऐसे हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। हर साल हमारे मिडिल क्लास परिवारों की कमाई का एक बड़ा हिस्सा इन बच्चों की कोचिंग पर खर्च हो जाता है। हमारी कोशिश है कि गरीब और मिडिल क्लास के इस बच्चे की परिवारों के पैसों की बचत हो और इसलिए अब सरकार स्टूडेंट्स को ऑनलाइन फ्री कोचिंग व्यवस्था देने की दिशा में आगे बढ़ रही है।
1: Later in the evening, the Prime Minister will inaugurate and address the Global FinTech Fest GFF 2026 in Mumbai in Maharashtra this evening. The theme of GFF 2026, one of the world's largest and most influential annual fintech conferences, is Potential to Impact, Agentic AI, Tokenization, Quantum Trusted Connected Global Systems for Inclusive Finance. The GFF 2026 seeks to build on India's leadership in digital payments and financial inclusion and move from potential to impact. Delhi Chief Minister Rekha Gupta today revisited the All India Institute of Medical Sciences, Delhi.

0: इलाकाई खबरों के साथ मैं आमिर हुसैन सिद्दीकी। वज़ीर-आला योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में दो रोज़ा यूपी टैक्स 2026 प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। तकरीब के दौरान वज़ीर-आला ने एक नुमाइश का इफ्तिताह किया और सरमायाकारी के दस्तावेज़ और चेक तकसीम किए। टेक्सटाइल और मलबूसात के शोबों में सरकर्दा सनतकारों से बात करते हुए वज़ीर-आला ने कहा कि रियासत की टेक्सटाइल शनाख्त कोई हालिया वाक़या नहीं है बल्कि हज़ारों साल पुरानी मीरास है। उन्होंने कहा कि रियासत के पास हुनर, इंसानी वसायल, मुल्क की सबसे बड़ी मंडी और सबसे नौजवान अफरादी क़ुव्वत है। वज़ीर-आला ने कहा कि गुज़िश्ता 9 सालों के दौरान रियासती हुकूमत ने विरसे को जदीद टेक्नोलॉजी, सरमायाकारी, इख्तिराअत और आलमी मंडी के साथ जोड़कर सनअती तरक्की की एक नई कहानी लिखी है।
1: पिछले 9 वर्ष में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी समृद्ध विरासत को आधुनिक टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन और ग्लोबल मार्केट के साथ जोड़कर एक नई इंडस्ट्रियल स्टोरी लिखने की व्यवस्था भी यूपी के अंदर हम लोगों ने तैयार की है।
0: बैनुल अक्वामी यौम ख्वांदगी के मौके पर वज़ीर तालीम प्रहलाद जोशी ने कहा कि ख्वांदगी इल्म, मौके और बेहतर मुस्तकबिल के दरवाजे खोलती है। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो तालीम को फ़रोग दें और इस बात को यकीनी बनाएं कि कोई भी सीखने से महरूम ना रहे। वज़ीर-आला योगी आदित्यनाथ ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में रियासत को आलमी यौम ख्वांदगी पर मुबारकबाद देते हुए लिखा कि ख्वांदगी सिर्फ हरूफ के इल्म तक महदूद नहीं है बल्कि बाख्तियार बनाने, बावक़ार ज़िंदगी और नए मौक़े के दरवाज़े भी खोलती है। वज़ीर-आला योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या का दौरा करेंगे जहां वो आंगनवाड़ी वर्करों और मुआविनीन के लिए रियासती सतह की एजाजी तकरीब में शिरकत करेंगे। अयोध्या डिवीज़न से तकरीबन 12,000 से 15,000 आंगनवाड़ी कारकुनान इस प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। ज़िला मजिस्ट्रेट शशांक त्रिपाठी ने बताया कि महकमे के वज़रा और अवामी नुमाइंदे भी इस तकरीब में शिरकत करेंगे। राशन की तकसीम की निगरानी करने वाले सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की खवातीन भी शिरकत करेंगी। बारिश और डैमों से पानी छोड़े जाने की वजह से रियासत के 25 अजला सैलाब की जद में हैं। वज़ीर-आला योगी आदित्यनाथ सैलाब से मुतासर इलाकों की सूरत हाल का मुसलसल जायज़ा ले रहे हैं। सैलाब से मुतासर इलाकों में इमदादी और बचाव काम जारी है। एक रिपोर्ट।
2: राहत आयुक्त कार्यालय के मुताबिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत दलों की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्तर पर

0: नाव और मोटर बोट तैनात की गई है। बाढ़ के बाद संक्रमण और जल जनित बीमारियों की आशंका को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग को भी पूरी तरह सक्रिय रखा गया है। उधर बदायूं और बलिया में गंगा, शाहजहांपुर में रामगंगा, बाराबंकी, अयोध्या और बलिया के तुर्तीपार में घाघरा और लखीमपुर खीरी में शारदा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। पीलीभीत में पिछले दो दिनों से लगातार हो रही बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने से शारदा और देवहा नदियां उफान पर हैं। बाढ़ की आशंका के मद्देनजर प्रशासन की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। पूरनपुर, सदर, कलीनगर और बीसलपुर तहसील क्षेत्र के करीब 3 दर्जन गांवों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। ट्रांस शारदा क्षेत्र में फसलें और संपर्क मार्ग डूबे हुए हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: इस दरमियान महकमे मौसमियात ने आज रियासत के मशरकी इजला में शदीद बारिश की वार्निंग जारी की है। लोकसभा में हिजब मुखालिफ के लीडर और कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी आज अपने पार्लियामानी हलके रायबरेली के 2 रोज़ा दौरे पर पहुंच रहे हैं। वो आज प्रभु टाउन में सर्राफा ताजिरों के साथ मीटिंग करेंगे और मुख्तलिफ तंजीमों के वफूद से भी मुलाकात करेंगे। कल जनाब गांधी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन और मॉनिटरिंग कमेटी की मीटिंग में शिरकत करेंगे। बागपत में ईस्टर्न पेरिफ्रल एक्सप्रेसवे पर कल हुए सड़क हादसे में मरने वालों की तादाद बढ़कर 13 हो गई है। एक और अकीदतमंद ने कल दिल्ली के एक अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। हादसे में जख्मी 19 अफराद अस्पताल में जेर इलाज हैं। ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने ग्रेटर नोएडा में माल बरदार और मुसाफिरों की आमदोरफ्त को अलग करने और गंगा एक्सप्रेसवे के साथ राबते को बेहतर बनाने के लिए हापुड़ बाईपास तक 105 मीटर चौड़ी सड़क की तामीर की तजवीज़ पेश की है। कल लखनऊ में सनअती तरक्की के वजीर नंद गोपाल गुप्ता की सदारत में हुई मीटिंग में इस तजवीज़ पर गौर किया गया। इसके साथ ही आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नशर किया जाएगा।
2: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। आइए सुनते हैं ग्रामीण बहनों का कार्यक्रम पनघट।

0: का चुनरी दिया दाहो ओ नंद दी के भैया।
1: अरे अरे अरे कमला बहिनी कस कितनी नीक नीक चुनरी गौनई तू गावत या और बड़ा नीक लागत है मुला। सबसे पहले अपने बहनी अरेन से राम राम कर ली जाए।
0: अरे हाँ बहिनी बिल्कुल, हम तो गाँव में भूल ही गए रहे। राम राम बहिनी अरे,
1: राम राम बहिनी अरे।
0: और का बताई, उनसे कह रहे कि चुनरी ले आए दा हमार। हाँ, जो ना है
1: अच्छा
0: चुनरी फट गया है।
1: हाँ,
0: लहंगा के चुनरिया ले आए दा, ना ही मानत रहे। तो हम कहे का था वो आज पनघटेन से कह दे मान ले सुनाई। तो
1: बिल्कुल अगर भैया कहूँ से सुनत हुई तो जरूर तो का चुनरी के साथे साथे सारा मेकअप के सिटो आए जी बहनी कुल।
0: ना आए बहनी, हमका बहुत ज्यादा कुछ ना चाहिए। हम तो बहनी छोटी छोटी चीजन में ही खुश है।
1: बिल्कुल काहे कि देखा अपने आस पास ही खुशियां ढूंढने के चाहिए, कोनो बड़े अवसर के इंतजार नहीं करे के चाहिए।
0: और नहीं तो का, अब जीवन है अब छोटे छोटे पल से जुड़ के बना।
1: बिल्कुल
0: अभी हम हंसत है, अब थोड़ी देर में रोवे लागा, कौन बात कैसे हो जाए। और अगले पल के भरोसा भी नहीं बाबा।
1: हाँ,
0: कि ऊपर वाला जाना था खाली कि का होए वाला है। तो यही छोटे छोटे पल के जिया भी जीवन है।
1: तू इतना बढ़िया खुशी के जो जिए के रास्ता बतावती है तो हमका लगता है कि कुछ बात बत कही
0: यही विषय पे कही लेनी चाहिए कि छोटी छोटी खुशियों से ही बना था परिवार।
1: बिल्कुल
0: हम तो कही थे बहनी परिवार का पूरा जीवन ही छोटी छोटी खुशियों से मिलके बना था, है कि नहीं।
1: बिल्कुल
0: एक खुशहाल परिवार कभो बड़ी सफलताओं के श्रेय नहीं होते।
1: बिल्कुल
0: जब आदमी परिवार के मतलब का होता।
1: हाँ बहनी,
0: कि चार घर चार मिला जो ना है।

0: एक पति पत्नी आए, दोनों जने दूसरे दूसरे घरे से आए,
1: हाँ.
0: एक छत के नीचे बहन लड़का बच्चा बहन सब मिलके अपन परिवार
2: जैसे जैसे गदेलन के शादी भाई बहनी भैया के
0: और परिवार बढ़त जाता. यह रिश्ते नाते जुड़ा थी, यही तरीका समाज बना था. तो कहा थी कि परिवार जो ना है राष्ट्र के सबसे छोटी इकाई होता.
1: हाँ.
0: परिवार से जब कई परिवार मिला थी तो समाज बना था, और कई समाज मिला थी तो राष्ट्र बना था. तो यही से कहा छोटी छोटी चीजों के जोड़ के इंसान जिया था. परिवार में हम बच्चन के छोटी छोटी खुशियों के छोटे छोटे बदेलन आए खेलता है कूदता है उनका देख के कितना खुश हुई थी. अरे देखा कैसे बोला है, अरे देखा ये बोले सी. पहला कदम जब लड़का रखा था घरे में तो कितना नीक लागत.
2: बिल्कुल, कि जब जन्म होते बच्चे से तनो थोड़ा थोड़ा खुशहाली जब आदमी के जब महसूस होने लगा थे, गदेला बड़ा ही लगा थे. फिर उनके जब बड़वार होते, शादी विवाह होते, उनसे रिश्तेदारी काफी जुड़े लगा थे. बोला जब हम कौन ऐसे परिवार जैसे बढ़ जाते हैं, चार भाई ना है, कुल बहुवन भी आए गई, मुला मतभेद होए लगा थे धीरे धीरे, तो ऐसे ना करे के चाहिए. आपस में विचार करे के चाहिए, अपने भावनाओं को रखे के चाहिए. एक ऐसा अवसर निकाले, एक ऐसा दिन निकाले जिसमें सभी भैया बहनी आपस में बैठे और एक दूसरे के जो जो उनके जरूरत की चीज़ें आए या उनके जो उन्हें पसंद आए ऊपर एक चर्चा करें, उनका वो विषय पे कोई ज्ञान की बातें दें या उनके जो ने परेशानियों का दूर करे की चाहिए.
0: बिल्कुल सही बात कहो बहनी. और छोटी छोटी खुशियों से मतलब ही नहीं ना, मतलब कहा थे कि अरे हम तो बहुत में नहीं होती का कि अपन काम करता है एक जो ना है उनके दिनचर्या बनी है वही दिनचर्या में लगा है.
2: बिल्कुल बिल्कुल.
0: ओकरे अलावा लड़का जो ना है मान ला इनाम जीत के आवता है या कहीदा कि पहला शब्द बोलता है छोट बच्चा या मान ला कोनो उपलब्धि है या पत्नी कबो अच्छा खाना बनावतिया है या मातारी कोनो ऐसी चीज कह देती है जिसे बहुत खुशी मिले अच्छा लगे. तो ये छोटी छोटी चीजन का भूल जाता, ओका एक आम जीवन के तरीका ले लगा था.
2: बिल्कुल बिल्कुल.
0: और ओका लागत था कि कुछ बहुत बड़ा होई तो हम सब खुशी मना,
2: बड़ा उत्सव कर,
0: बड़ा उत्सव कर.
2: बिल्कुल बिल्कुल.
0: और वो बड़ा उत्सव के समय एक तरह से बीचत जाता, बीत जाता, कहो नहीं होता,
2: केवल जीवन जियत रहा था.
0: हाँ, एक मशीन के तरीका मने जीवन का जियत.
2: बिल्कुल बिल्कुल.
0: बोला लेकिन देखा ये छोटी छोटी खुशियन जो होती, सुबह सुबह सोए के उठा, चिड़ियन के चहचहाट के साथे जो ना है चाय पिया, तो ये सब जो छोटी छोटी चीजें नहीं है. एका अगर हम जब जिए लागत थी और जब हमें एमा खुश होए लगी थी तो हमका जीवन के असली आनंद मिले लगा.
2: बिल्कुल.
0: हम अपने लोगन से मिली था, बैठी था, बात करी था, कुछ नहीं तो अपने काम धंधा से आए अम्मा बाबू से पूछे कि बतावा तुम्हारा दिन कैसा रहा है ना, आज का की हूँ, लड़कन बच्चन से पूछे कितना खुश हो के सब बतावा थी.
2: बिल्कुल.
0: है कि नहीं. तो ई सब ई होती छोटी छोटी खुशियन कि हम हर चीज में हमका हर अपने परिवार के सबके हर चीज में जो ना रुचि हो.
2: हाँ.
0: हम सबका जानी, सब जने एक दूसरे का जानी.
2: बिल्कुल.
0: कि हमका उनका का पसंद है, हमका का पसंद है, हमका कैसे रहे उठे बैठे के है ना, और सबके ख्याल रखत भय एक दूसरे के साथे साथे आगे बढ़े.
2: सही कहो बहनी. और सच बात है कमला बहनी, जैसे तू कहो कि सबके विचार सोचे के चाहिए, तो देखा सबसे बड़ी बात यह है कि हमका जब अपने विचार जब अपने सोच सकारात्मक रखा बहनी तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन पे बिल्कुल असर दे थे. तो अगर सोच हमारा अच्छी रही तो हम अपने आसपास के लोगों के भी उनके विचार के भी बदल सकते हैं.
0: बिल्कुल बहनी. और देखा ऐसे का होता कि जैसे आजकल देखा तो लोगों के मानसिक समस्या बहुत होती है.
2: हाँ बहनी बिल्कुल
0: है ना. तो जब हम एक दूसरे पे नजर रखा, जब हमका एक दूसरे के चीज पता नहीं तो ऐसे मौका भी ना आई कि केहू अकेला पड़ी परिवार में रहत भय या उके दिमाग पे कोनो तरीका के भार पड़ी और या सोच में पड़ी.
2: हाँ.
0: आपन बात आदमी एक दूसरे से कह सकी, आपन बात समझा सकी, ओका उतना कहा थी जो उनकी एक जगह मिली परिवार में कि सब जने ओका सुनिए, चाहे छुटवार हो चाहे बड़वार.
2: हाँ.
0: है ना. और खास तौर से बुढ़ौती मनाई और जो ना है नान के गदेला.
2: हाँ. इनके विषय कहे कि इनके जो हृदय होते एकदम कोमल होते है. वो तो सोचे थे कि कोनो ऐसी बात ना हो उनके साथे कि वो अपने दिल पे ले.
0: बिल्कुल बहनी. तो ये सब चीज पे अगर ध्यान दी जाए तो इस तरीका के समस्या से भी निजात पाया जा सका था.
2: बिल्कुल.
0: और हम सब हमेशा खुश रह सकी थी.
2: बिल्कुल.
0: बाकी दुख जो ना है ना, कहा थी कि सुख दुख जीवन के हिस्सा है.
2: बिल्कुल बहनी.
0: इनसे मनई दूर नहीं भाग सकते. जैसे कोनो समस्या आवे.
2: हाँ.
0: तो एक मनई होता वो सोचा था कि समस्या है बहुत. हाँ, बड़ी. हाँ. समस्या है का कैसे हल करे. एक मनई होता वो सोचा था कि ये समस्या है एक.

0: हल कैसे किया जाए था, सबसे पहले ओके दिमाग जाए कि एक समस्या के हल का है,
1: उनके परेशानी कैसे दूर की जा सके, एक ही बदे वो अपने जो मन में जो उन्हें विचार चलाता है अच्छे बुरे के, वो पहले सोचा थे कि उनका कौन चीज से हम कौन सहायता करी कि उनके जो परेशानी है दूर कर से।
0: बिल्कुल बहनी, तो यही तरीका से एक दूसरे के सोच के, एक दूसरे के समझ के, एक दूसरे से प्रेम परस्पर से और आगे बढ़त रहे मन ही,
1: बिल्कुल
0: तो जीवन खुशी से बीत जाता।
1: बिल्कुल बहनी,
0: और थोड़ा खुशी और हो जाए अगर तू एक बढ़िया से गाने सुनाए देती।
1: चला रंजना त्रिपाठी बहनी से पूर्वी सुन ली जाए मटकी।

0: देखा बहनी
1: कितनी बढ़िया गौनी थी, सुनत सुनत बहनी हुई मेहराए जाए मन।
0: बिल्कुल।
1: अच्छा गीत गौनई के बिना जो ना है,
0: हाँ
1: देखा हर चीज सुन लागत है,
0: बिल्कुल
1: है ना। हमरे किया तो संस्कार में भी है कि
0: बिल्कुल
1: हर चीज में गीत गौनई होते। और देखा बहनी गीत गौनई ऐसी चीज यह है
0: हाँ?
1: कि हर क्षेत्र में होता,
0: हाँ बहनी
1: है ना। और आजकल देखा, खैर गीत को नहीं बात हम सब बाद में कह ले, चाहे जितनी बात करा गीत संगीत पे कम ही है,
0: बिल्कुल
1: है ना। तो देखा अपन घटे पे एक ठीक बातचीत यह है,
0: हाँ
1: शुभि मालविया से कंचन श्रीवास्तव के, महिलाएं सशक्त कैसे बने। तो बहनी अरे चला सुन लीन जाए।
0: और हमार बहनी अरे भी सुने।
2: बहनी एक कहावत कहा गया बटे कि मन के हारे हार मन के जीते जीत। मूला देखा जाता है कि आज समाज में हमार बहनी अरे बहुत आगे निकल चुकी हैं। पढ़ के लिख के डॉक्टर इंजीनियर पायलट शिक्षिका आदि पद पे निहित यहाँ। मूल कहो कहो सा देखा जाए तो बहुत से ऐसे भी क्षेत्र गांव में हैं कि जहाँ बहनी हरे के मन में ये भावना बा कि बेटी यहाँ इनका काल कभी पढ़ाई लिखाई के ये घर में रहें, तो वहाँ पर देखा बहनी वो पढ़ी लिखी नहीं है तो अशिक्षित रह जाते हैं, तो उनके अंदर सशक्तिकरण नहीं आ पावत बटे, सशक्त नहीं बन पावत यहाँ। तो आज देखा यही पे हमारे पनौती में एक बातचीत है कि महिलाएँ सशक्त कैसे बने। और बहनी आया सुभि मालविया, तो सबसे पहले बहनी आपका हमारे पनौती में बहुत बहुत स्वागत है। बहनी हम जानना चाहें भाई आपसे कि महिला सशक्तिकरण का है, एक बारे में आप बताएं।
3: महिला सशक्तिकरण में महिलाओं को शक्तिशाली बनाना होता है, जिससे वे अपने जीवन से जुड़े हर महत्वपूर्ण फैसलों को स्वयं लेने में सक्षम बन सके, वे परिवार और समाज में अच्छे से रह सके। यह वह तरीका होता है जिसके द्वारा महिलाएं भी पुरुषों की भांति अपनी हर इच्छाओं आकांक्षाओं को पूरा कर सकें, वे समाज में एक सम्मानजनक स्थिति में रह सकें।
2: सुभि बहनी आप बिल्कुल सही कहती हैं, जो बहनी हरे हैं उनके अंदर ये इच्छा होती है कि स्वतंत्र रूप से हम रह सकी, अपने हर एक काम काज करी, हर जगह आ जा सकी और अपने मन के मुताबिक कोनो भी काम कर सकी, और साथ साथ यहू बटे अपने अधिकार के बारे में भी वो जान सकें, यही हो तो सशक्तिकरण मैंने सशक्त महिला।
3: हाँ आप सही कह रही हैं, भारत जो हमारा पुरुष प्रधान देश है, यहाँ प्राचीन काल में तो महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, लेकिन मध्य काल से आते आते आज के समय में महिलाओं की स्थिति काफी गिरावट है। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ महत्वपूर्ण पद चाहे वो राजनीतिक हो या सामाजिक, उसमें महिलाओं को उच्च पद पर नियुक्त किया गया है, लेकिन उनकी संख्या आज भी पुरुषों की अपेक्षा काफी कम है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो महिलाओं की स्थिति और भी निम्नतर है, उन्हें पढ़ने और रोजगार के लिए घर से बाहर निकलने की इजाजत भी नहीं मिलती है।
2: बनी यह देखा जाता है कि यह समाज में जो हमारा ग्रामीण क्षेत्र बैठे हुआ के बनी बिल्कुल आप सही कह दिया, क्योंकि घर के अंदर रखा हुआ कि बाल बच्चा की देख रेख कर सकें, घर के काम काज करें, खेती बाड़ी काम करें। मूला आज देखा जाता है कि देखा जो तरह तरह की जो बाधाएँ रहीं ओकरे पीछे भी बहुत कारण बटे, जैसे कि अज्ञानता या अशिक्षा।
3: बहुत सारी बाधाएं हैं, जैसे सामाजिक मानदंड, कार्य क्षेत्र में होने वाला शोषण, लैंगिक मतभेद, भुगतान में असंतुलन, बाल विवाह और महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराध।
2: जी बिल्कुल आप सही
3: देखा गया है कि बहुत सारे पुरुष अपने महिलाओं के साथ कई सारे शारीरिक शोषण भी करते आते हैं।
2: जी बिल्कुल देखा बहनी, तो जो ना आप कहते हैं कि कहीं कहीं सा है कि जहाँ पर बहनी रे असक्षम हैं या अशिक्षित हैं, कहे कि आज के समय देखा बदला है पहले से, अब लोग पढ़ लें लिख लें अपने अच्छे बुरे के बारे में उनका जानकारी बटे, और देखा समाज में सरकार द्वारा भी बहुत सारी उनके सशक्त करे खाती योजनाएँ भी चली हैं, तो उनके बारे में भी कुछ आप बताएं।
3: हमारे समाज में लड़कियों को एक पराया धन समझकर उनका जल्द से जल्द विवाह कर दिया जाता था, जिससे कि कारण वे अपने कर्तव्य से विमुक्त हो जाएं। सरकार द्वारा बहुत सारे ऐसे प्रभावी फैसले किए गए हैं जिसमें बाल विवाह को रोका गया है, लेकिन यूनेस्को द्वारा 2018 की रिपोर्ट के आधार

0: पर देखा गया है कि प्रतिवर्ष लगभग 15 लाख बालिकाएं अब 18 वर्ष की कम उम्र में ही विवाह कर दी जाती हैं, जिसके कारण वे शारीरिक और मानसिक रूप से सक्षम नहीं हो पाती हैं।
1: देखा बहनी, पहले चीज़ रहा कि बहनी हरे कह रहे हैं कि घर में गांव में अगर लड़कियां रहत रहनी तो लोग कहें कि पढ़ाई लिखाई का कर भी इनके शादी ब्याह कर दी जाए, इनकी जिम्मेदारी पूरा हो जाए और तब बाल विवाह की प्रथा रही है। मोर बहनी देखा, अब समय तो काफ़ी बदल चुका बाटे। अब लोग हर एक माँ बाप चाहता है बेटी पढ़ावें लिखावें शिक्षित करें, और यहू कहा गया कि शादी जिन उम्र आबत है कि 18 साल से 21 साल तक, मानी अब तो हम देखते हैं कि खूब पढ़त यहाँ लिखत हैं तब शादी ब्याह होता है। मूल यहू देखा जाता है कि जो लड़की लड़का में भेद भी रहा, भेद की जो भावना रही कि ये बेटा है ये बेटी हैं, अब तो हर माँ बाप चाहता है कि हमारा लड़की पढ़े हमारा लड़का पढ़े आगे समाज में आवे, तो एकरे बारे में आप क्या कहा चाहते हैं?
0: हाँ, अभी सोच बदली है लेकिन उतनी अभी भी नहीं बदल पाई है। आज भी आंकड़ों के आधार पर देखा जा रहा है कि पुरुषों की जहाँ शिक्षा दर 80.8% है, वहाँ महिलाओं की अभी मात्र 64% है। अभी बहुत बड़ा पैमाना है जो आज भी अशिक्षित है। गांव में कुछ महिलाएं स्कूल तो जाती हैं बालिकाएं, लेकिन अब पारिवारिक जिम्मेदारी के कारण मात्र वो 10वीं कक्षा तक भी शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाती हैं और परिवार की जिम्मेदारी उन्हें संभालनी पड़ रही है। बड़ा है लेकिन अब इतना नहीं बढ़ा कि हम गर्व से कह सकें कि महिलाएं सशक्त हो गई हैं।
1: अब देखा भी नहीं ओके बढ़ावे खातिर तो हमें सब आप आगे हुए ना कि हर अगर माँ चाहिए तो बेटी पढ़ी लिखी हो, सशक्त हुई मजबूत हुई। तो बहनी हैं आप शिक्षिका हैं तो आपके पास जो बहनी हरी आवत हुई तमाम तरह समस्या भी आवत हुई कि भैया हमारे मेरे पास पढ़ाई लिखाई के पैसा नहीं बाटे, माँ बिटिया या घर में काम धाम करी, हर तरह की समस्या आप जो कुछ भी आप तो राय सलाह देत हुई ना कि हाँ पढ़ावें लिखावें इनका अच्छे से आगे बढ़ावें ताकि आइए अपने घर के लिए परिवार के लिए समाज के लिए कुछ कर सकें, कुछ तो आप भी बतावत हुई है ना?
0: हाँ बिल्कुल, उनको ये बताना बहुत जरूरी है कि एक समाज के लिए अगर महिला आगे नहीं बढ़ी या बालिका आगे नहीं बढ़ी तो वो समाज को आगे बढ़ा ही नहीं सकती हैं। सबसे आजकल एक बड़ी समस्या जो समाज में है वो कन्या भ्रूण हत्या है
1: जी।
0: लिंग के आधार पर बालिका भ्रूण का पता होने पर गर्भपात कर देना, हमारे देश में हरियाणा और जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों में तो ये अनुपात बहुत ज्यादा है, जिसके कारण से आज वर्ष 2011 की रिपोर्ट के आधार पर देखा गया है कि जहां पुरुष हमारे समाज में 1000 हैं वहां लड़कियों की प्रतिशत केवल 940 ही है।
1: बनी आप ही बता मैं जो सरकार द्वारा निकला कदम उनके बाटे वो का है आगे एक बारे में बताओ यार।
0: सरकार ने बहुत सारी योजनाएं महिलाओं के लिए चलाई हैं, चाहे वो कृषि हो, रोजगार हो, शिक्षा हो या स्वास्थ्य से संबंधित। मुख्य योजनाओं में जैसे मनरेगा है, सर्व शिक्षा अभियान है, जननी योजना है जिसमें मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए चलाई गई योजना है। इसके अलावा महिला और बाल विकास कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा भी कई सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला हेल्पलाइन, ये बहुत ही ज्यादा आज के समय में उपयोगी है। इस योजना के अंतर्गत 24 घंटे किसी भी इमरजेंसी होने के महिलाएं 181 नंबर डायल करने पर अपनी शिकायत दर्ज कर सकती हैं। ये भारत की हर राज्य में चलाई जा रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में भी बच्चियों को बचाना और उनको पढ़ाने के लिए राज्य सरकार केंद्र सरकार द्वारा उनको आर्थिक सहायता दी जा रही है जिससे कि उच्च से उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें
1: जी।
0: क्योंकि आज हमने देखा है हमारे समाज में ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जिनको योजनाएं तो बहुत हैं पर उसकी जानकारी ना होने की वजह से वे आगे बढ़ ही नहीं पा रही हैं। तो ये योजनाएं जो भी भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं उनको इसमें बताया जाता है।
1: सुभी बहनी बिल्कुल आप सही कहते हैं। देखा बहनी सरकार के जो भी योजना बांटे चाहे वो लड़की हो जैसे आप बताए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेके बहनी आज हर घर घर में हमारे जो बहनी हरे हैं अपने आप में सक्षम होए खातिर देखा तरह तरह के उनके जो भी लघु कुटीर उद्योग बांटे तरह तरह रोजगार है उसे जुड़ के भी देखा अपने स्थिति के मजबूत करती हैं और समाज में आगे बढ़ती हैं। तो यही तरह से बनी हम तो कहा कि अगर हर बहनी के मन के अंदर ये भावना हुई कि हम सशक्त हुई हम हर चीज़ अपने मुट्ठी के अंदर रखी कि हम कुछ भी कह सकी थी तो बनी ये चीज़ असंभव नहीं बांटे कि हम आगे नहीं बढ़ सकी थी। तो जो सरकार की योजना बाटे एक ही लाभ लेवे के चाहिए। तो
0: बिल्कुल सही।
1: और आप ये बताएं कि सशक्त कैसे बने और तरह से बनी है, जैसे कि आज देखा यहाँ कि अपने देश के कितनी सारी महिलाएं हैं, जैसे कल्पना चावला वगैरह थी, बनी आपके हिमा दास हैं और

0: मेरी काम बहनी हरी कहाँ से कहाँ तक पहुँच चुकी हैं, यहूँ तो एक बहनी हरी हैं कि उन्होंने अपने समाज में अपने देश के लिए कितना कुछ कर दिया, कितना नाम उनके होता है। तो मैंने यहूँ तो हम लोग को सीख लेवे के चाहिए समाज के लिए।
1: सबसे पहले सशक्त बनाने के लिए महिलाओं को खुद अपने में सशक्त होना पड़ेगा,
0: जी बिल्कुल,
1: खुद अपने में आत्मविश्वास रखना पड़ेगा, क्योंकि कोई दूसरा किसी का आत्मविश्वास केवल प्रेरणा दे सकता है। तो पहले महिलाओं को महिलाओं का साथ देना चाहिए और महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास करना चाहिए, क्योंकि एक महिला ही है जो अगर
0: जी
1: आगे बढ़ती है तो बच्चों को, परिवार को, देश को, सबको आगे बढ़ाती है। तो महिला सशक्तिकरण तो बहुत ही जरूरी है।
0: देखा बहनी, हम तो यही कहते कि अपने जन बहनी हरे हैं, चाहे गांव के हों चाहे शहर के हों, हर एक माँ के चाहिए कि अपने बेटी के या बेटा के सबके पढ़ावें लिखावें, ताकि उस अपने आप में सक्षम होएं और हर एक फैसला करें कि उनके अंदर ताकत होए। तो बहनी हमारे पनौती में आप आएं, भवनिक जानकारी दें, एक बदे आपके बहुत बहुत धन्यवाद।
2: कमला बहनी, देखा कितनी नीक बातचीत हुई सुभी मालविया से, कंचन श्रीवास्तव बहनी के।
3: देखा कितनी सही बात बताई नहीं कि अब हमका सरकार भी इतनी फायदा देती है, हमके इतनी योजना देती है,
2: बिल्कुल,
3: कि हम अपने आप को मजबूत बनाई। देखा शिक्षा से लेके हर तरीका, हर जगह पे बहनी हरन की कितनी जो ना है योजनाएं है, कितना प्रोत्साहन मिलता है।
2: बिल्कुल, काहे कि देखा तो, बहनी जरूरी ना है कि वो शिक्षित हो या ना हो, जरूरी है कि वो अपने मन से कितना तैयार है।
3: देखा अपने जो आत्मविश्वास का है उसका बनाए के रखे।
2: बिल्कुल,
3: आप मान ला थोड़ा कम भी पढ़े लिखे हैं तो कोई ना कोई हुनर सब बहनी हरन में होता।
2: बिल्कुल,
3: और बहनी आज के जो समय है आप अपने कोनो भी हुनर से चार पैसा कमाए सके थी। और देखा आपन कमाई, देखा सशक्त हो यही से जरूरी नहीं बा कि घर खर्चा चलावे मदद करा, जो आपन कमाई अपने हाथ में आवत ना बहनी, एक अलग तरीका के आत्मविश्वास हमारे बहनी
2: बढ़ जाते
3: अंदर आ जाता।
2: बिल्कुल,
3: वो जीवन के नई दृष्टि से देखा थी, वो शिक्षा के महत्व समझा थी, वो कमाई के महत्व समझा थी और परिवार के और आगे बढ़ावे का सोचा थी।
2: और सबसे बड़ी बात बहनी, अपने वो अपने ऊपर जो है ना एक गर्व महसूस कर रहे थे।
3: बिल्कुल,
2: कोई के आश्रित ना है बहनी।
3: बिल्कुल सही बात यह है, और ये एक बहुत बड़ी शक्ति है बहनी हरन के बदले और बहुत बड़ी जरूरत भी है।
2: हाँ बहनी,
3: तो हम तो कहा हर बहनी के अपने जीवन में चाहे कम चाहे ज्यादा थोड़ा बहुत आपन कमाई के एक स्रोत हो के चाहिए
2: और अपने कला के पूरा निखारे कोशिश करें।
3: बिल्कुल, और ओकरे साथे ई अपने अंदर आत्मविश्वास होए के चाहिए कि आपन सारा काम चाहे घर के होए चाहे बाहर के होए कोनो दफ्तर के होए ओकरे बदे हमका केहू के ऊपर निर्भर नहीं रहे के है। इहो एक प्रकार के सशक्तिकरण है कि हम इतनी मजबूत है कि हम अपने आप के बदे अकेले खड़ी रह सकी थी, हमका केहू और के जरूरत जीवन में
2: नहीं
3: बा। मतलब ही नहीं बा कि तू अपने परिवार के छोड़ दा, अपने घरे के छोड़ दा,
2: नहीं बहनी सब कुछ ले तो भय।
3: हाँ, एक है मतलब ये है कि हम मजबूत है, हमका केहू जबरदस्ती दबाए नहीं सकत, हमसे केहू कोनो काम जबरदस्ती
2: नहीं
3: करवाए सकत।
2: बिल्कुल,
3: है ना। तो बहनी हरे सशक्त बने, आगे बढ़े और हमहू सबे तनी कार्यक्रम में आगे बढ़ी और एक ठी नीक के गौ नहीं सुन लीन जाए।
2: चला सुन लीन जाए और बहनी हरे भी सुने
3: फिल्म गंगा जमुना से
2: नैन लड़ जाई है
3: मोहम्मद रफीक जी के आवाज में।
4: लागा गोरी गुजरिया से

0: देखा बहनी
1: हाँ
0: कितनी बढ़िया गौनई रही है,
1: नैन लड़ जाइए
0: तो मनोवामा कसक होई
1: बे ए
0: हाँ।
1: बहनी, हम तो कुल हमार पैरे थिरकाई लगा रहा है
0: तो का देखत रहे बैठे बैठे झूमत रहू
1: बहनी तू तो
0: ऐसा ना
1: हाँ
0: गनो ऐसा है कि मनई जो ना है
1: नाचे पे मजबूर हो जाए।
0: मजबूर हो जा
1: बिल्कुल
0: था।
1: देखा पहले के जो गीत गौ नहीं रही मुला वो कुल इतना जो है तो मन के भावत रहा है, हर एक शब्द में एक अपनापन रहत रहा है।
0: एकदम बहनी। और पहले का हमेशा से गीत गौनी देखा
1: अपने
0: लोकगीत
1: जगह
0: संगीत
1: बनाए बाटे।
0: हाँ गीत गौनी के अलगे जगह है मनई के जीवन में।
1: बिल्कुल एक
0: और
1: कहावत ने बने कि अगर अपने मन के खुश करेगा है तो संगीत के एक अच्छा माध्यम कौन है और कौन नहीं है
0: अरे आए बहनी कैसे नहीं ना, अगर मन के खुश करे के है तो बढ़िया खाना भी एक अच्छा माध्यम है।
1: यो सही कहो बहनी, का है कि हर चीजें पेटे से होके
0: हाँ तो
1: होते
0: अब समय है बहनी हरन से बात करे के काहे पे।
1: रसोई घर से।
0: हाँ तो रसोई घर से आज सोचे थे बहनी हरन के कुछ चटपटा सा
1: हाँ
0: मुला कुछ ऐसी चीज बताई जाए जो थोड़ा सा जो ना है बच्चन के बारे, जैसे कहा हम सभी तो हमेशा कही थी ब्रेड ना खिया हुआ ही ना खिया हुआ, मतलब थोड़ा से कभो कभो चीट कहा थी ना, लेकर कहा थी
1: हाँ
0: कि थोड़ा से जो ना है छोड़ दे के चाहिए, तो
1: हाँ
0: ओके ऐसी चीज़ तो आज बताओ थी बहनी हरन के पनीर भुर्जी सैंडविच है ना। तो एकरे बड़े बहनी हरे सबसे पहले सामग्री सुन ले, हम 100 ग्राम पनीर के हिसाब से सामग्री बतावत है,
1: ठीक है बहनी,
0: हमार बहनी हरे जैसे पनीर बढ़ावे ओकरे हिसाब से सामग्री
1: आवश्यकता
0: बढ़ाए ले।
1: अनुसार
0: हाँ
1: जितना बनावे के हो
0: बढ़ाए
1: उनका।
0: ले तो 100 ग्राम पनीर ले ले
1: हाँ
0: है
1: बहनी।
0: ना, ओमा एक टमाटर एक प्याज हरी मिर्ची और नमक जो ना है अपने स्वाद के अनुसार डालें है ना, जैसे अगर तीत खात हो तो मिर्चा ज़्यादा कहीं दुई
1: हाँ
0: डाल सकत
1: स्वाद
0: है।
1: अनुसार।
0: हाँ जैस हो उसके अलावा आधा चम्मच धनिया पाउडर चाहिए, थोड़ा से जो ना है सब्जी मसाला और थोड़ा से पाव भाजी मसाला
1: अच्छा बहनी।
0: चौथाई चम्मच और आधा चम्मच चाट मसाला ठीक, और आधा चम्मच चाहिए बेसन, तेल अपने स्वाद के अनुसार कम डावे हुए कम डावे बहुत मिला कम डावत थी घी।

0: तेल जेमा बनावा के ओका लें। हम बहनी एमा थोड़ा से ज़्यादा घी डाल के घी में बनाई थी, कहे से कि घी में जब पनीर बनाई जाता तो ओके स्वाद एकदम अलग हो जाता। तो पहले का करें, विधि यह है कि पहले कढ़ाई चढ़ावें, ओमा घी डाल दें, है ना।
1: हाँ भाई,
0: घी डाले के बाद उमें हल्का से जो है मैं प्याज और मरचा महीन महीन जो काटे रहें डाल के भून लें। प्याज जब हल्का से जैसे कहा
1: था ना कि के
0: हो नहीं लाल नहीं जैसे गुलाबी हो लगे,
1: अच्छा भाई,
0: हाँ, तो वही समय पे उमा बेसन डाल दें,
1: अच्छा,
0: ताकि बेसन भी वो प्याज के साथ ही घी में भुनाई जाए।
1: तो बहनी मतलब मतलब सूखा डाल दें,
0: हाँ सूखा बेसन,
1: अच्छा बहनी,
0: इसे का हुई थोड़ा सा सोंधा पना हुआ,
1: हाँ,
0: हाँ। उकरे बाद बहनी उमा सारे मसाले डाल दें, जो धनिया पाउडर पाव भाजी मसाला,
1: अच्छा
0: सब्जी मसाला चाट मसाला,
1: हाँ,
0: जो ना
1: जो
0: है
1: मसाला
0: डाल,
1: हाँ,
0: सब डाल दें। और फिर उमा डावें टमाटर महीन महीन काट,
1: अच्छा,
0: और टमाटर के साथ ही डावें आधा कटोरी या आधा कप पानी, है ना, और उसका नमक डाल के धीमी आंच पे ढांक दें।
1: अच्छा,
0: और फिर जब पक जाए टमाटर तो उसका अच्छे से भूंज लें जब तक घी ना छोड़ दे। जब घी छोड़ दे तब तक भूने के बाद जो पनीर यह है
1: हाँ बहनी,
0: उसका पनीर का उमा जो ना है जैसे महीन मीस के
1: कहे
0: डाल
1: मतलब
0: दें,
1: बहनी दर्रा थोड़ा सा कह ली,
0: ददरा का हाथ जैसे मीसा जाता
1: हाँ हाँ
0: वैसे मीस के डाल दें, है ना, या तो कद्दूकस कह लें,
1: हाँ
0: कद्दूकस भी कह सकती। ओका डाल के थोड़ी देर भून लें, पकाए लें, तो ऊपर से धनिया पत्ती मिला लें, अगर नमक तनी के चखे के हो तो चख लें, अगर
1: हाँ
0: कम लागत हो तो नमक और मिला लें। ओकरे बाद ब्रेड लें, है ना,
1: हाँ
0: हम तो बहनी बनाई था तो हरी चटनी और मीठी चटनी दोनों लगा के बनाई थी। बहनी अरे चाहें तो ब्रेड पे चटनी लगावें, न चाहें तो न लगावें। ब्रेड लें, ओकरे में जो ना है दुठी ब्रेड लें, किनारा काट दें, और ऊपर जो ना है जो भुर्जी बनाए हैं ओका लगाए के दोनों तरफ से बढ़िया से घी या मक्खन से सेक लें,
1: सेक लें,
0: और ओका लड़कन के खिलावें, बड़वारन के खियावें, और चाहे जेका दें अपने मन से खाएं हरी चटनी मीठी चटनी से, बहुत निक लागत था। और ये एक ऐसी सैंडविच है कि
1: हाँ
0: गर्म ठंडा दोनों तरीका से अच्छी लागत थी खाए में।
1: बिल्कुल। देखा
0: और देखा
1: बहनी
0: बतावत बतावत मुँह में पानी
1: सच बात है बहनी, देखा कुल गदेला जैसे तू बताओ, अगर हमारे सबके गदेला पाए जाए तो बहनी रोज की मांगे लगे, तो ई ऐसा चीज है जो गदेला के बहुते पसंद है।
0: बिल्कुल सही बात यह है
1: हाँ
0: भाई।
1: बाबू सब बड़कन भी खाए थे, ऐसी बात ना ही बाटे।
0: और देखा खाए के साथे साथे अब एक ठे बढ़िया से गाना भी अगर चलत रहा है
1: हाँ बहनी
0: तो फिर खाए के आनंद भी बहनी
1: बिल्कुल
0: दुगना हो
1: सही
0: ही
1: करो।
0: जाता।
1: जाना तो मैंने एकदम जैसे हमारे गदेलवा बात कर रहे थे कि अम्मा तू जैसे खाना दियो तो टीवी खोल दियो।
0: तो हम बहनी अरे सुनी थी बढ़िया से गाना पनीर
1: हाँ
0: भुर्जी सैंडविच के साथे फिल्म रिश्ते नाते से लता मंगेशकर जी के आवाज में।
1: चला सुन मिल जाए।

0: देखा बहनी कितनी बढ़िया गाँव नहीं रही
1: खनक गयो हाय बेरी
0: कंगना।
1: कंगना। देखा
0: देखा
1: बहनी, हम सभी तो कुल कंगना चूड़ी से ही जुड़े नहीं, और गीत गुनाए भी हम सभी के कितना
0: हमारे
1: मन मोह
0: श्रृंगार से
1: लेते
0: जुड़ी
1: हैं।
0: है।
1: बिल्कुल
0: और देखा श्रृंगार के बने कितना अधूरापन लागत है ना,
1: बिल्कुल
0: है
1: बहनी।
0: ना। हर गीत संगीत में श्रृंगार है, कहूँ बिंदिया है, कहूँ चूड़िया है, कहूँ कंगना है, और कहूँ बहनी हरिन के चिट्ठिया है,
1: बिल्कुल
0: कहे से कि वो हमार श्रृंगार है।
1: श्रृंगार
0: तो
1: है।
0: चला यही संदेश सुन लीजिए।
2: पनघट जहाँ बातन में होत है अपनेपन का मिठास, माटी की खुशबू और दिल से दिल का जुड़ाव, जहाँ मिलके हम हंसी थे बोली थे और आपन सुख दुख बांटी थे, ये हम सब का आपस में जोड़े का एक अदृश्य डोर है। बहनी हरिन, हमें बहुत खुशी हुए अगर आपो पनघट का हिस्सा बनी है।
3: तो हमका जरूर बतावें कि आप सबके हमारे कार्यक्रम कैसन लागत है, कौन बात आपका ज्यादा पसंद आवत थी और इमा आप नवा का जोड़े चाहत थी। आपन प्यारी प्यारी प्रतिक्रिया और सुझाव हमका ईमेल संदेश और व्हाट्सएप के जरिए भेजें।
4: हमारा ईमेल एड्रेस है
0: pangatprogram@therateofgmail.com। स्पेलिंग है PANGHATPROGRAMEET@gmail.com। pangatprogram@therateofgmail.com। एमा कौनो प्रकार के कोई स्पेस ना हुई, सारे अक्षर छोटी ABCD या स्मॉल लेटर में हुई हैं।
4: हमारा व्हाट्सएप नंबर है 800-4926-2550। तो सखियन देर कोने बात के, तुरंत उठावें अपन मोबाइल और भेज दें अपने मन के बात, या तो लिख के या अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके। आपके संदेश के हम सब के
5: बेसब्री से इंतजार।

0: गुंजा बहनी
1: हाँ बेटी
0: देखा बहनी अरन से बात करे से जीव तो कभो ना ही भरते। बोला देखा अब घड़ी इशारा करती है और विदा ले के समय होत बा,
1: हाँ बेटी
0: तो बहनी अरन से विदा लीन जाए।
1: राम
0: राम
1: राम
0: राम बहनी
1: बहनी
0: अरे।

0: para archery series leg 3 in Ahmedabad today. Harvinder Singh and Vijay Sundi clinched their third consecutive World Para Archery Series title, defeating Slovakia 6-2 in the para recurve men's doubles final. The duo had earlier won gold at the Bangkok and Nove Mesto stages, defeating Chinese Taipei and Ukraine respectively. In the para women's recurve doubles, Pooja Jatian and Bhavna Chaudhary settled for silver after losing 6-0 to China in the final. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi lays foundation stone, inaugurates and dedicates to the nation development projects worth 35,000 crore rupees in Gujarat. Prime Minister Modi to inaugurate and address the Global FinTech Fest DFF 2026 in Mumbai this evening. Bombay High Court refuses to quash summons issued to Congress MP Rahul Gandhi in 2019 defamation case over his remarks against Prime Minister Narendra Modi. IMD forecasts heavy rainfall over Bihar, eastern Uttar Pradesh, Odisha, West Bengal and northeastern parts of the country today. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में 35,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण किया। कहा, भारत उन्नत रेलगाड़ियों और मेट्रो कोच के निर्माण का वैश्विक केंद्र बनकर उभरा है। प्रधानमंत्री आज शाम मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का उद्घाटन करेंगे। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की टिप्पणी को लेकर उनके खिलाफ वर्ष 2019 में दायर मानहानि मामले में जारी सम्मन को रद्द करने से इनकार किया। बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में आज मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान। और अहमदाबाद में भारत ने विश्व पैरा तीरंदाजी श्रृंखला में 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने पश्चिमी क्षेत्र के लिए विशेष माल ढुलाई गलियारे WFDC के 3 प्रमुख खंडों को राष्ट्र को समर्पित किया। इसके साथ ही माल ढुलाई गलियारे के संचालन का मार्ग प्रशस्त हो गया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने भारत के परिवहन और लॉजिस्टिक क्षेत्र में तेजी से बदलाव का उल्लेख किया।
2: इस वर्ष लाल किले से मैंने विकसित भारत के लिए संकल्प की सप्तधारा का आह्वान किया है। इस सप्तधारा में एक धारा गति शक्ति की भी है। आज 2,800 किलोमीटर से अधिक का डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट पूरा हो गया। ये 21वीं सदी के भारत के लिए बहुत ऐतिहासिक कार्य संपन्न हुआ है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि इस परियोजना की परिकल्पना वर्ष 2006 में की गई थी, लेकिन इस दिशा में आगे प्रगति नहीं हुई। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में इस पर तेजी से हुए काम ने देश के लॉजिस्टिक तंत्र को पूरी तरह बदल दिया है, जो तेजी से विकसित होते भारत की जीवन रेखा है।
2: आज ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर देश के व्यापार कारोबार का मुख्य आधार बन रहा है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर तेजी से विकसित होते भारत की जीवन रेखा है। इसने भारत के ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर का कायाकल्प कर दिया है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरा है और अब अपने उन्नत रेलगाड़ी और मेट्रो कोच का निर्माण कर रहा है। चिप से शिप तक स्थानीय उत्पादों के दृष्टिकोण का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि देश के अंदर संपूर्ण और आत्मनिर्भर आपूर्ति श्रृंखला तैयार की जा रही है।
2: साथियों, अब भारत चिप से लेकर शिप तक निर्माण की एक नई गाथा लिख रहा है। यानी पुर्जे भी हमारे और प्रोडक्ट भी हमारा। आत्मनिर्भरता की एक पूरी चेन भारत में ही बनेगी।
1: इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने न्यू सानंद, न्यू मकरपुरा, न्यू उमरगांव और न्यू JNPT से मालगाड़ी सेवाओं को भी झंडी दिखाकर रवाना किया।

0: इसके अलावा उन्होंने टांडा रोड और वडोदरा के बीच नई यात्री रेल सेवा को भी झंडी दिखाई। ये सेवा अलीराजपुर के दूरदराज के आदिवासी क्षेत्रों को राष्ट्रीय रेल नेटवर्क से जोड़ेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने 9,700 करोड़ रुपए से अधिक की 3 रेल विस्तार परियोजनाओं और लगभग 1,780 करोड़ रुपए की 3 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। इसका उद्देश्य गुजरात और मध्य प्रदेश के बीच कनेक्टिविटी को मजबूत करना है। उन्होंने गुजरात सरकार की 2,600 करोड़ रुपए की विभिन्न नागरिक सुविधाओं और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नवसारी भी जाएंगे, जहां वे भारतीय जनता पार्टी के नए एआई सक्षम और अत्याधुनिक कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का उद्घाटन करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे।
1: ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का 7वां संस्करण आज से मुंबई में आयोजित किया जा रहा है। जीएफएफ वर्ष 2020 से ही नीति निर्माताओं, नियामकों, केंद्रीय बैंकों, वित्तीय संस्थानों, फिनटेक और प्रौद्योगिकी कंपनियों, निवेशकों, शिक्षाविदों और अन्य वैश्विक हितधारकों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मंच के रूप में उभरा है। जीएफएफ 2026 का विषय है प्रभाव डालने की क्षमता, एजेंटिक एआई, टोकनाइजेशन, क्वांटम, समावेशी वित्त के लिए विश्वसनीय जुड़ी हुई वैश्विक प्रणालियां। जीएफएफ ने इस वर्ष एजेंटिक एआई, प्रोग्रामेबल फाइनेंस, क्वांटम टेक्नोलॉजी जैसे विषयों पर चर्चा आयोजित की गई है। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी के एक लेख को आज साझा किया। सोशल मीडिया पर पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि मातृ वंदना योजना के 10 वर्ष और पोषण माह पर आधारित ये लेख आंगनवाड़ी व्यवस्था को जन आंदोलन बनाने के संदेश को दर्शाता है। महिला और बाल विकास मंत्री ने अपने लेख में कहा कि आंगनवाड़ी समाज से अलग कोई व्यवस्था नहीं है, बल्कि ये हमारे आसपास के समुदाय का अभिन्न हिस्सा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से 3 दिवसीय दौरे पर श्रीलंका जा रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि दीर्घकालिक साझेदारी और गहरे ऐतिहासिक तथा दशकों से चले आ रहे मैत्रीपूर्ण संबंधों के कारण श्रीलंका भारत की पड़ोसी पहले नीति और महासागर संबंधी पहलों के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण साझेदारों में से एक है। रक्षा मंत्री श्रीलंका में रहने वाले भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी बातचीत करेंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
2: अपडेट रहे, आगे रहे। एक्सपर @AIRNewsHindi और इंस्टाग्राम पर AIR News Alerts को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने आज कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ उनकी टिप्पणियों को लेकर वर्ष 2019 के मानहानि मामले में जारी सम्मन को रद्द करने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति एनआर बोरकर की एकलपीठ ने श्री गांधी की याचिका को खारिज किया। याचिका में उन्होंने मैजिस्ट्रेट अदालत के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसके अंतर्गत उनके खिलाफ कार्यवाही शुरू की गई थी। हालांकि उच्च न्यायालय ने मैजिस्ट्रेट के समक्ष सुनवाई को 6 सप्ताह के लिए स्थगित करने के अपने 2021 के निर्देश को बरकरार रखा। ये मामला रफाल सौदे पर राहुल गांधी की वर्ष 2018 की टिप्पणियों को लेकर दायर मानहानि की शिकायत से जुड़ा है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतर्गत सभी कॉलेजों में छात्रावास की सुविधा की मांग वाली जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से आज इनकार कर दिया। न्यायालय ने कहा है कि इस याचिका को सुनवाई के लिए कल स्वतः सूचीबद्ध किया जाए। दिल्ली विश्वविद्यालय के साउथ कैंपस के पास सत्य निकेतन में पीजी इमारत ढहने के बाद यह याचिका दायर की गई। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सत्य निकेतन में भवन ढहने की घटना में घायल हुए लोगों से मिलने के लिए आज अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का दौरा किया। संवाददाताओं से मुख्यमंत्री ने कहा कि इस घटना में 7 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 12 घायलों को इलाज के लिए अस्पताल लाया गया है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि उन्होंने घायल छात्रों के अभिभावकों से भी मुलाकात की और उन्हें आश्वासन दिया कि उन्हें सर्वोत्तम चिकित्सा देखभाल प्रदान की जाएगी।
3: सारी स्थिति को देखते हुए हमने पेरेंट्स को भी इंश्योर किया है कि उनका इलाज पूरी तरीके से अच्छा हो और सरकार उसमें उनकी पूरी मदद करेगी, हर तरह की सहायता करेगी और जो बच्चे का या लेबर का जो परिवार है।

0: को हम हर तरह की आर्थिक मदद भी करेंगे और सभी पेरेंट्स से हम टच में हैं, किसी भी तरह की कोई जरूरत की घड़ी में सरकार उनके साथ खड़ी।
1: भारतीय जनता पार्टी ने नशीले पदार्थों की समस्या से निपटने में कोई ठोस कदम न उठाने के लिए आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की आलोचना की है। नई दिल्ली में भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आरोप लगाया कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के सामने ड्रग माफिया का पूरा तंत्र फल फूल रहा है और फिर भी इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। श्री भाटिया ने संगरूर जिले की घटना का जिक्र किया जिसमें एक निवासी ने राज्य के मंत्री हरपाल सिंह चीमा से नशीले पदार्थों के दुरुपयोग के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया था, लेकिन आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं ने उसे कथित रूप से धमकाया और मंत्री से माफी मांगने को कहा था। इसके बाद उस निवासी ने आत्महत्या कर ली थी। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नई दिल्ली में मणिपुर के संगीतकार चोंगथाम विक्रम सिंह के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंधिया ने कहा कि पूर्वोत्तर के प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा और गरिमा सर्वोपरि है। उन्होंने दिल्ली पुलिस से त्वरित कार्रवाई और गहन जांच सुनिश्चित करने का आग्रह किया ताकि दोषियों को कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। दक्षिण पूर्वी दिल्ली के पुलिस उपायुक्त विनीत कुमार ने बताया कि इस मामले में कुल 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और एक नाबालिग को हिरासत में लिया गया है।
2: श्री विक्रम सिंह जी मूल रूप से मणिपुर के निवासी है। वो अपनी गली में एकत्रित कुछ लड़कों के साथ उनकी कहा सुनी हुई शोर शराबे के ऊपर, उसके बाद वो कहा सुनी के बाद उन दोनों पक्षों में हाथापाई हुई जिसमें इनको कुछ चोटें आई। इनकी फैमिली द्वारा इनको हॉस्पिटल ले जाया गया जहां पर ड्यूरिंग ट्रीटमेंट सुबह 7 बजे के करीब इनकी डेथ हो गई। पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट करते हुए अभी तक हमने इसमें टोटल 7 लोग अरेस्ट करे है और एक माइनर को अप्रिहेंड किया।
1: तमिलनाडु विधानसभा में वाणिज्य कर और पंजीकरण मंत्री डी लोकेश तमिल सेल्वन ने तमिलनाडु वस्तु एवं सेवा अधिनियम में और संशोधन करने वाला एक विधेयक प्रस्तुत किया। इस विधेयक का उद्देश्य केंद्रीय अधिनियम के साथ एक रूपता बनाए रखने के लिए अधिनियम में संशोधन करना है। तमिलनाडु विधानसभा ने आज केंद्र सरकार से समुदायों और उनकी सामाजिक स्थिति की जानकारी के लिए जाति आधारित जनगणना को स्पष्ट रूप से शामिल करने का आग्रह किया। सदन में प्रस्ताव पर बोलते हुए सदस्यों ने सुझाव दिया कि जस्टिस पार्टी का जनगणना मॉडल एक व्यापक मॉडल है। दिल्ली यातायात पुलिस ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ डूसू चुनाव के सिलसिले में आज छात्र संवाद कार्यक्रम और चुनाव प्रचार को देखते हुए यातायात परामर्श जारी किया है। शाम 4 बजे तक नॉर्थ कैंपस के आसपास के इलाकों में यातायात प्रभावित रह सकता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और YouTube पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
1: ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने आज बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने कहा कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम और तेलंगाना में कल तक बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ तूफान आने की संभावना है। बिहार में गंगा, गंडक, कोसी और सोन समेत विभिन्न नदियों के जलस्तर में कमी आने से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को राहत मिली है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि हालांकि कुछ इलाकों में जलस्तर बढ़ने से बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है।
4: गंगा, गंडक, कोसी, सोन समेत विभिन्न नदियों के जलस्तर में कमी से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को थोड़ी राहत मिली है। गंगा नदी के जलस्तर में बक्सर, भोजपुर और पटना में विभिन्न स्थानों पर 12 से 25 सेंटीमीटर तक की कमी दर्ज की गई है। हालांकि डाउनस्ट्रीम में मुंगेर और भागलपुर के विभिन्न इलाकों में जलस्तर में बढ़ोतरी जारी है। प्रदेश के 13 जिलों में 27 लाख से अधिक की आबादी बाढ़ की विकट स्थिति का सामना कर रही है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने वैशाली और सारण जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने विभिन्न सामुदायिक रसोई केंद्रों और राहत शिविरों में जाकर लोगों का हालचाल जाना। मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत के काम और तेज करने के निर्देश दिए हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से निधिश्री।
1: अहमदाबाद में विश्व पैरा तीरंदाजी 2026 में भारत ने आज 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता है। हरविंदर सिंह और विजय सुंडी ने पैरा रिकर्व पुरुष डबल्स के फाइनल में स्लोवाकिया को 6-2 से हराकर लगातार तीसरी बार खिताब अपने नाम किया। पैरा महिला रिकर्व

0: स्पर्धा में पूजा जत्यान और भावना चौधरी को चीन के हाथों 6-0 से हार के बाद रजत पदक से संतोष करना पड़ा। भारतीय जूनियर हॉकी टीम ने चीन में एशिया कप के पूल मैच में आज दक्षिण कोरिया को 7-3 से हराया। कप्तान अनमोल इक्का ने 2 गोल किए। भारत के अब 3 मैचों से 7 अंक हो गए हैं। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक आज दोपहर के कारोबार में गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे। सेंसेक्स 548 अंक गिरकर 75,585 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में 35,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री आज शाम मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का उद्घाटन करेंगे। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की टिप्पणी को लेकर उनके खिलाफ 2019 में दायर मानहानि मामले में जारी सम्मन को रद्द करने से इनकार किया। और अहमदाबाद में भारत ने विश्व पैरा तीरंदाजी श्रृंखला में 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं एनसीईआरटी की ओर से प्रायोजित कार्यक्रम।

0: CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार और स्वागत है आज के कार्यक्रम में। जीवन में सुख कितना मिला ये मत गिनिए, बल्कि ये देखिए कि आपके कारण कितने दिलों में मुस्कान आई, यही सच्ची कमाई है। श्रोताओं, ये सुविचार भेजा था आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह चंघेल, मूरज चंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष चंघेल और नंदिनी चंघेल जी ने। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। मोताला महाराष्ट्र से रतनमाला सुरलकर, विजय सुरलकर जी लिखते हैं, ज्ञान शिक्षा और मनोरंजन से भरपूर उमंग कार्यक्रम सुनना अब हमारी आदत बन चुका है। प्रत्येक प्रस्तुति कुछ नया सीखने का अवसर देती है और सामान्य ज्ञान में निरंतर वृद्धि करती है। उपयोगी जानकारी, रोचक विषयों और उत्कृष्ट प्रस्तुति के कारण ये कार्यक्रम श्रोताओं के लिए सचमुच प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक है। विमलेश जी, अजीत जी और उमंग की पूरी टीम को इस सराहनीय प्रयास के लिए हार्दिक बधाई। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है राजा जी नगर बेंगलोर से NR प्रसाद और अखिला प्रसाद, संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव और वारिस अली खान, खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा, तहसील ठियोग जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान जी, आप सबके सुंदर संदेशों के लिए हमेशा की तरह धन्यवाद। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं ये भी जानिए श्रृंखला में हर दम हम आपके लिए लेकर आते हैं रोचक जानकारियां, विचार विमर्श और प्रेरक प्रसंग। इस सप्ताह हम फिर से आपके लिए लेकर आ रहे हैं कई प्रेरक प्रसंग। आज हम अपने उमंग कार्यक्रम के प्रिय श्रोताओं के लिए एक ऐसी महिला की कहानी लेकर आए हैं जिसने अपने जीवन की सबसे बड़ी दुर्घटना को अपनी सबसे बड़ी शक्ति में बदल दिया। इस कहानी का संदर्भ NCERT की कक्षा 6 की समाज का अध्ययन की पाठ्यपुस्तक के अध्याय 3 में संदर्भित है। जरा अंदाजा लगाइए श्रोताओं, मैं किसकी बात कर रही हूँ? जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अरुणिमा सिन्हा की, भारत की उस साहसी महिला की जिसने अपना एक पैर खोने के बाद भी दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया। आइए जानते हैं कौन है अरुणिमा सिन्हा, आखिर उनके साथ हुआ क्या था। अरुणिमा सिन्हा राष्ट्रीय स्तर की वॉलीबॉल की खिलाड़ी थीं। उनका जीवन खेल, सपनों और आगे बढ़ने की उम्मीदों से भरा था, लेकिन वर्ष 2011 में एक ऐसी घटना हुई जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। 11 अप्रैल 2011 की बात है।

0: CISF की परीक्षा देने के लिए ट्रेन से लखनऊ से दिल्ली जा रही थीं। कुछ बदमाशों ने उनके साथ लूटपाट करने की कोशिश की। जब उन्होंने विरोध किया तो उन्हें इसी दौरान चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया। वे रेलवे ट्रैक पर गिर गईं और दुर्भाग्य से दूसरी पटरी पर आ रही ट्रेन की चपेट में आ गईं। उन्हें गंभीर चोटें आईं और उनका एक पैर काटना पड़ा। उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया, लेकिन अस्पताल में पड़े पड़े उन्होंने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। उन्होंने निर्णय लिया कि वे अपने जीवन को यूं ही समाप्त नहीं होने देंगी। अरुणिमा के सामने कठिनाइयां कम नहीं थीं। उन्हें कृत्रिम पैर लगाना था, उन्हें फिर से चलने का अभ्यास करना था। धीरे धीरे वे चलना सीख गईं और उनका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। शरीर में दर्द था, लेकिन उन्होंने एक ऐसा निर्णय लिया जो ऐसी परिस्थिति में एक आम इंसान नहीं ले सकता। उन्होंने पर्वतारोहण सीखने का निर्णय लिया। शायद वे दुनिया के सामने ये साबित करना चाहती थीं कि दुर्घटना ने उनका शरीर बदला है, लेकिन उनके मनोबल को नहीं। फिर क्या था श्रोताओं, उन्होंने प्रसिद्ध पर्वतारोही बछेंद्री पाल से संपर्क किया और प्रशिक्षण शुरू किया। कल्पना कीजिए, एक ऐसा व्यक्ति जो अभी अभी फिर से चलना सीख रहा था, वो पहाड़ पर चढ़ने की तैयारी कर रहा है। प्रशिक्षण आसान नहीं था। कृत्रिम पैर के साथ चलना, चढ़ना, गिरना और फिर उठना, हर कदम एक चुनौती था। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और आखिरकार आ ही गया वो दिन। उन्होंने 21 मई 2013 को माउंट एवरेस्ट के शिखर पर तिरंगा लहराकर इतिहास रच दिया और माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली भारत की पहली दिव्यांग महिला बनने का असाधारण गौरव प्राप्त किया, और वो भी एक पैर खोने के मात्र 2 साल बाद। श्रोताओं, हम तो कहना चाहेंगे कि वहां पहुंचकर उन्होंने केवल एवरेस्ट पर विजय नहीं पाई थी, उन्होंने दुनिया को ये संदेश दिया था, मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसके शरीर से बढ़कर उसके संकल्प में होती है। विद्यार्थी मित्रों से कहना चाहूंगी, बहुत कुछ कठिन लग सकता है, लेकिन एक बार संकल्प करके तो देखिए। इसलिए तो कहा गया है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। श्रोता मित्रों, अरुणिमा सिन्हा की कहानी हमें ये नहीं सिखाती कि जीवन में कठिनाइयां नहीं आएंगी। ये कहानी हमें सिखाती है कि कठिनाई आने के बाद भी जीवन आगे बढ़ सकता है। श्रोताओं, ये थी हमारी आज की प्रेरक कहानी। आशा है आपको जरूर पसंद आई होगी। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। प्रश्न है, महान पर्वतारोही अरुणिमा सिन्हा ने माउंट एवरेस्ट पर विजय कब प्राप्त की? प्रश्न एक बार फिर से सुन लेते हैं। महान पर्वतारोही अरुणिमा सिन्हा ने माउंट एवरेस्ट पर विजय कब प्राप्त की? 8800440559 पर अपने उत्तर हमें भेज सकते हैं। आप हमारे ईमेल का पता भी नोट कर लीजिए। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। ताज़ी जानकारी के लिए आप इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIT NCERT को लगातार फॉलो करें। NCERT की पाठ्यपुस्तकों को डाउनलोड करने के लिए किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF, और NCERT की पाठ्यपुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनने या शैक्षिक कार्यक्रमों को सुनने के लिए आप NCERT ऑफिशियल यूट्यूब को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है छुपन छुपाई। कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक के एक पाठ पर आधारित ये कार्यक्रम मनोरंजक ढंग से इस पारंपरिक खेल के बारे में बताता है।
1: चलो चलो चलो चलो छुपन छुपाई खेलते हैं।
2: छुपन छुपाई, छुपन छुपाई, बड़ा मजा आएगा, बड़ा मजा आएगा।
3: एक दिन सब छुपन छुपाई खेल रहे थे।
4: जीत,
5: हर बार मैं ही डाइन देता हूँ। अच्छा चलो ठीक है, मैं दे देता हूँ।
2: बड़ा मजा आएगा, बड़ा मजा आएगा।
3: उस दिन जीत की बारी थी। जीत 100 तक गिनकर सबको ढूंढने निकला।
5: 1, 2, 3 सब छुप गए ना। 98, 99, 100 लगता है सब छुप गए। चलो अब मैं ढूंढता हूँ सबको। अरे इधर तो

0: दरवाजे के पीछे देखता हूँ, यहाँ पक्का कोई ना कोई छुपा होगा।
1: मोहित दरवाजे के पीछे मिल गया।
2: मोहित, अरे नहीं, हर बार मैं ही सबसे पहले पकड़ा जाता हूँ।
1: जीत सबको कमरे में ढूंढने लगा।
0: अब मैं कमरे में देखता हूँ, लगता है अलमारी के पीछे कोई छुपा है।
1: बबली अलमारी के पीछे मिल गई।
0: बबली, तुम अलमारी के पीछे हो?
2: धप्पा!
0: मोहित और बबली दोनों आउट हो गए।
1: मारिया पलंग के नीचे मिल गई।
0: मारिया, तुम पलंग के नीचे हो?
3: नहीं, मैं पलंग के नीचे नहीं हूँ।
4: अंदर छुपा।
0: मारिया,
2: धप्पा!
3: अरे नहीं।
1: उसके बाद जीत आंगन की तरफ गया। सिमरन दादी के पीछे मिल गई।
5: दादी, दादी,
3: दादी, हिलना मत, हिलना मत, जीत आया है, वो मेरे धप्पा बोल देगा।
0: लगता है सिमरन दादी के पीछे छुपी हुई है, अभी जाके देखता हूँ। और ये गया, ये
2: सिमरन धप्पा,
3: फिर पकड़ लिया।
0: अब बची है नाजिया, कहाँ हो सकती है?
1: जीत नाजिया को आंगन में ढूंढने लगा। जीत ने नाजिया को चादर के पीछे ढूंढा।

0: यहाँ तो नहीं है, पेड़ के पीछे देखता हूँ, इधर भी नहीं है। अरे नाजिया कहाँ छुपी हो?
1: जीत नाजिया को ढूंढने के लिए बाहर आया। वो पेड़ के नीचे खड़ा होकर सोचने लगा।
0: अरे नाजिया कहाँ छुपी हो?
1: नाजिया ने ऊपर से कूदकर उसे धप्पा दिया।
2: जी धप्पा!
0: ओहो, अरे नहीं, मेरी फिर से बारी आ गई।
1: जीत दोबारा गिनती गिनने चल दिया।
0: एक दो तीन।
3: छुपन छुपाई है ना मजेदार खेल? तो बच्चों अब सोचो और जरा बताओ कि छुपन छुपाई खेलते समय तुम अपने घर में कहां कहां छिप सकते हो, और यदि खेलते खेलते चोट लग जाए तो तुम क्या करोगे। और हाँ, ये भी मालूम करो कि कौन कौन से खेल हैं जो घरों में खेले जाते हैं और कौन कौन से खेल हैं जो बाहर खेले जाते हैं।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम छुपन छुपाई। छुपन छुपाई के बाद अब सुनते हैं कार्यक्रम छुपी प्रतिभा। इस कार्यक्रम के द्वारा बताया गया है कि हर बच्चा अनोखा है और उसमें बहुत सी प्रतिभाएं छुपी होती हैं। जरूरत है उन प्रतिभाओं को पहचानने और उन्हें प्रोत्साहित करने की।
5: साथियों, पिछले कार्यक्रम में हमने ऐसे बच्चों के बारे में जानकारी दी थी जो शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं। हमने खासकर उन बच्चों के विषय में चर्चा की थी जिनकी भिन्नता छोटी उम्र में ही नजर आ जाती है, पर उनमें से अधिकांश देखने में और बच्चों के समान ही लगते हैं और उनकी पहचान करने में कठिनाई होती है। आज हम चर्चा करेंगे कि इन बच्चों को पढ़ाई, सामाजिक एवं शारीरिक गतिविधियों में किस प्रकार की कठिनाइयां आती हैं और अध्यापकगण उनकी समस्याओं के समाधान के लिए क्या उपाय कर सकते हैं, उनकी किस प्रकार से

मदद कर सकते हैं जिससे कि ऐसे बच्चों का जीवन बेहतर और सार्थक हो सके। तो आइए आज चलते हैं एक स्कूल में। इस स्कूल के शिक्षक बच्चों के विकास में गहरी रुचि रखते हैं। उन्हें चिंता रहती है कि अगर कोई बच्चा अच्छा नहीं कर पा रहा है तो आखिर क्यों, उसकी क्या समस्या है और कैसे उस बच्चे की मदद की जा सकती है। साथियों, इस स्कूल में कुछ बच्चे हैं जो भिन्न भिन्न प्रकार की शारीरिक विकलांगता के शिकार हैं, तो शिक्षकों ने सोचा कि क्यों ना इन बच्चों की समस्याओं के विषय में किसी डॉक्टर की राय ली जाए और इस अवसर पर इन बच्चों के अभिभावकों को भी आमंत्रित किया जाए ताकि इन समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की जाए और यथासंभव उनका समाधान भी खोजा जाए। और एक दिन

0: और इस अवसर पर इन बच्चों के अभिभावकों को भी आमंत्रित किया जाए ताकि इन समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की जाए और यथासंभव उनका समाधान भी खोजा जाए। और एक दिन
1: साथियों, आज मैं पूरे स्कूल की ओर से डॉक्टर पुष्पा का स्वागत करता हूं।
2: आप सबको मेरा नमस्कार और धन्यवाद।
3: नमस्कार।
1: आपका धन्यवाद डॉक्टर पुष्पा कि आपने अपना बहुमूल्य समय हमारे लिए निकाला, और हम आशा करते हैं कि आपके परामर्श और विस्तृत अनुभव का हम सबको अवश्य लाभ मिलेगा कि हम अपने बच्चों की मदद कैसे कर सकते हैं। और साथियों, मैं धन्यवाद करता हूं अपने विद्यालय के सभी उन अध्यापकों का जिनकी रुचि और प्रयास के कारण यह संभव हो पाया। आज हमारे बीच में ऐसे विशेष बच्चों के अभिभावक भी उपस्थित हैं, मैं उन सबका भी स्वागत करता हूं। और हां, सबसे अधिक धन्यवाद के पात्र हैं हमारे ये प्यारे प्यारे बच्चे। इन्हें कुछ समस्याएं जरूर हैं, लेकिन ये कई बातों में दूसरे बच्चों से बहुत आगे हैं। तो चलिए आज की इस विशेष बैठक को शुरू करते हैं। रेनू जी, आप
3: जी जी
1: आप कह रही थी कि आपकी कक्षा में एक बच्ची है मीना, आप मीना के बारे में हमें कुछ बताइए।
3: जी, मैं आपको इस बच्ची मीना से मिलवाती हूँ। देखिए, मेरी मीना पढ़ाई में बहुत तेज है, इसके बहुत अच्छे नंबर आते हैं, और ये इस बार भी चौथी कक्षा में प्रथम आई है। और हाँ, इसकी लिखाई भी बहुत सुंदर है। मीना
4: जी,
3: तुम्हें पढ़ाई कैसी लगती है?
4: दीदी, मुझे तो पढ़ाई बहुत बहुत अच्छी लगती है। मुझे स्कूल आना और पढ़ना बहुत पसंद है।
3: और तुम्हें क्या क्या अच्छा लगता है?
4: जी, मुझे खेलना बहुत अच्छा लगता है, पर मैं और बच्चों की तरह तेज नहीं दौड़ पाती, मेरे एक पैर में तकलीफ है।
5: अच्छा, ये बताइए, ऐसा मीना के साथ कब से है? क्या इसे बचपन से ही ये तकलीफ है?
3: डॉक्टर पुष्पा, इसकी माँ ने मुझे बताया था कि जब ये पैदा हुई थी तो बिल्कुल ठीक थी, फिर 2 साल की उम्र में बहुत बीमार हो गई, इसको तेज बुखार हो गया और इसके इलाज में देर हो गई। उसके बाद इसके बाएं पैर की ताकत जाती रही।
5: अच्छा।
3: जिससे ये स्वाभाविक रूप से चलने फिरने से असमर्थ हो गई। डॉक्टर ने बाद में बताया कि मीना को पोलियो हो गया है।
1: डॉक्टर पुष्पा, पोलियो के विषय में हमें जरा विस्तार से बताएंगे?
5: देखिए, पोलियो एक ऐसा रोग है जो केवल हाथों या पैरों पर असर करता है।
1: अच्छा।
5: इसका असर जिस हाथ या पैर पर होता है उसका विकास सामान्य रूप से नहीं हो पाता। पोलियो से प्रभावित हाथ पैर पतले हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसमें शक्ति कम हो जाती है।
3: डॉक्टर पुष्पा, क्या पोलियो का असर देखने सुनने या बोलने पर भी होता है?
5: नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें देखने, बोलने, सुनने और समझने में कोई परेशानी नहीं होती। अच्छा, एक बात बताइए
3: जी,
5: क्या मीना के माँ बाप मीना को बाद में भी डॉक्टर के पास ले जाते थे?
3: जी हाँ, उसकी माँ ने मुझे बताया था कि वे लोग उसे ले तो जाते थे फिजियोथेरेपिस्ट के पास, पर इसके पहले ही उसके बाएं पैर की हड्डियाँ बिल्कुल पतली हो गई थी, उसमें खड़े होने की ताकत नहीं रही और इसका बायां पैर इसके दाएं पैर से छोटा हो गया।
5: देखिए, समय से दवाई न लेने से या समय पर इलाज न कराने से ये समस्या आ सकती है
1: जी।
5: अब इसीलिए हमारी सरकार ने लोगों में जागरूकता लाने के लिए जगह जगह पोस्टर इश्तिहार लगवाए हैं। आपने रेडियो टीवी पर सुना होगा कि आजकल तो सरकार ने पोलियो हटाओ अभियान चलाया है, जिसमें 5 साल से छोटी उम्र के बच्चों को पोलियो की खुराक दी जाती है।

0: पर डॉक्टर पुष्पा, अब हम मीना की मदद किस प्रकार कर सकते हैं?
1: जहां तक पढ़ाई लिखाई का सवाल है, वो कक्षा में और बच्चों की तरह पढ़ सकती है। हाँ, शारीरिक क्रियाओं में या को करिकुलर एक्टिविटीज में उसको इस प्रकार शामिल कीजिए कि वो कार्य उसकी क्षमता के अनुसार हो।
2: जी। नीलम, तुमने कहा था कि तुम्हारी क्लास में सरिता है जिसके बारे में तुम चर्चा करना चाहती हो।
3: जी डॉक्टर पुष्पा, मेरी कक्षा में इस सरिता ने अभी दाखिला लिया है। ये व्हील चेयर में आती है, ये छठी कक्षा में पढ़ती है और ये भी पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज है।
1: अच्छा, एक बात बताओ।
3: जी।
1: सरिता व्हील चेयर का प्रयोग कब से करती है?
3: इसकी माँ ने बताया था कि व्हील चेयर का प्रयोग इसने इसी साल से शुरू किया है। चार साल की उम्र तक तो सरिता और बच्चों की तरह खेल कूद में बहुत अच्छी थी, परंतु धीरे धीरे इसके पैरों में कमजोरी आती गई और फिर इसे इस कुर्सी का सहारा लेना पड़ा।
1: सरिता, तुम्हें और भी कोई परेशानी है?
4: हाँ मैडम जी, मुझे हाथ में कमजोरी लगती है और गर्दन घुमाने में कठिनाई होती है।
3: डॉक्टर पुष्पा, कहीं ये समस्या बढ़ तो नहीं रही है? क्या इससे इसकी पढ़ाई पर भी असर पड़ेगा?
1: हाँ, ऐसा लगता है कि ये एक ऐसी अवस्था का शिकार है जिसमें मस्कुलर डिसफंक्शन यानी गत्यात्मक विकार होता है और जो हर बच्चे में अलग अलग दिखाई देता है।
3: जी।
1: ऐसे बच्चे बहुत तीव्र बुद्धि वाले भी हो सकते हैं। इस अवस्था में धीरे धीरे सारे शरीर की मांसपेशियां कमजोर होती जाती हैं।
3: जी।
1: पर इसका समझने की योग्यता और पढ़ाई लिखाई पर असर नहीं पड़ता।
3: अच्छा।
1: ऐसे बच्चे 12वीं तक और उसके आगे भी शिक्षा हासिल कर सकते हैं।
3: ऐसा विकार होता क्यों है?
1: ऐसा देखा गया है कि ऐसे बच्चों के खून में कुछ रसायन जिसको CPK कहते हैं, उसकी मात्रा ज्यादा होती है।
3: अच्छा। हम इसमें बच्चों की क्या मदद कर सकते हैं डॉक्टर पुष्पा?
1: सरिता, अब तुम अपनी कक्षा में जा सकती हो। हाँ
4: जी मैडम।
1: हाँ, तो इनकी मदद करने के लिए आप इन बच्चों को प्रोत्साहित करते रहें और उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए उनको जितना प्यार दे सकते हैं उतना दें।
3: जी।
1: इन बच्चों की आयु सीमित होती है, इसलिए उनसे उच्च पढ़ाई और नौकरी की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए।
3: जी।
1: केवल बच्चों को और उनके माता पिता को प्रोत्साहन देकर उनके जीवन की गुणवत्ता को सुधार सकते हैं और बच्चों की तरह इनको काम देते रहें।
3: जी ठीक है।
2: हाँ दीपिका जी, आप भी कुछ किसी बच्चे के बारे में बात करना चाहती थी?
5: जी डॉक्टर पुष्पा, ये सीमा है, ये भी सरिता की तरह पहिए वाली कुर्सी पर है। सीमा, ये डॉक्टर पुष्पा हैं।
6: नमस्ते।
2: डॉक्टर पुष्पा, ये हमारे स्कूल की अध्यापिका रेनू जी है ना, उनकी बहन की बेटी है।
1: अच्छा अच्छा। सीमा, कौन सी कक्षा में पढ़ती हो तुम?
6: मैं 7वीं में पढ़ती हूँ।
1: रेनू जी, जरा इसके बारे में विस्तार से बताइए।
0: डॉक्टर पुष्पा, मैंने और नीलम जी ने इसकी माँ से विस्तार में बातचीत की है।
1: अच्छा।
0: ये जब खड़ी होने की कोशिश करती है तो गिर जाती है। बचपन से ही हर काम को सीखने में पीछे रह जाती है। जब ये 10 महीने की थी तब भी अपनी गर्दन अन्य बच्चों की तरह ठीक से संभाल नहीं पाती थी और अब भी ये ठीक से चल नहीं सकती। हर समय इसको इस पहिए वाली कुर्सी पर ही बैठना पड़ता है।
5: डॉक्टर पुष्पा, सीमा बहुत होनहार है, ये बहुत कोशिश करती है कि और बच्चों के साथ गेंद से खेले, लेकिन ये गेंद पकड़ ही नहीं पाती है, गेंद इसके हाथ से गिर जाती है।
0: जिस तरह से और बच्चे अपने हाथ से खाना खाते हैं, उस तरह ये खा नहीं सकती। इसको खाने में समय लगता है, कभी कभी तो इसके हाथ बिल्कुल अकड़ जाते हैं।
1: अच्छा।
0: जब हाथ में अकड़न ज्यादा हो जाती है तो इसके हाथ से खाना गिर जाता है।
5: डॉक्टर पुष्पा, कभी कभी सीमा के मुंह से लार भी टपकती है और चेहरे की मांसपेशियां भी अकड़ सी जाती हैं।
0: शायद इसलिए ही दूसरे बच्चे इसको कुछ अलग तरह से देखते हैं।
3: जी।
0: कुछ लोगों का शायद ये मानना है कि

0: कोई छूत की बीमारी ना हो।
1: पर ऐसा तो बिल्कुल नहीं है।
2: सीमा, तुम तो बहुत प्रतिभाशाली हो। तुम्हें क्लास में जो काम करने के लिए कहा जाता है वो सब समझ में आता है क्या? ये सब डॉक्टर पुष्पा को बताओ।
3: हाँ, समझ तो आता है पर लिख नहीं सकती।
0: इसे देखने और बोलने में कुछ परेशानी होती है। सवाल तो कर लेती है पर उत्तर देने में कठिनाई होती है।
1: अच्छा।
0: और ये साफ साफ बोल नहीं पाती, इसलिए लोग इसकी बात ठीक ठीक समझ नहीं पाते।
2: रेनू जी, इसको ये समस्या कब से है?
0: ये बहुत ही छोटी थी, करीब 4 महीने की रही होगी। तब ये पालने से गिर पड़ी थी।
1: अच्छा।
0: इसके सर पर बहुत गहरी चोट लग गई थी। शायद हो सकता है ये चोट का प्रभाव हो।
2: डॉक्टर पुष्पा, इसको समस्या क्या है?
1: ऐसा लगता है कि ये दिमागी पक्षाघात यानी सेरेब्रल पाल्सी से पीड़ित है। इसको केवल शारीरिक विकलांगता ही है। क्योंकि ये 7वीं कक्षा में पढ़ती है तो इसके दिमाग पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ा है।
2: डॉक्टर पुष्पा, हम इसकी मदद किस प्रकार कर सकते हैं?
1: देखिए, इसको हर कार्य छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर, क्रमानुसार लगाकर, थोड़ा थोड़ा करके बार बार अभ्यास कराइए।
4: जी, आज हमने 3 प्रकार की गत्यात्मक विकलांगताओं के बारे में जानकारी हासिल की।
2: जी।
4: पहली पोलियो, दूसरी मांसपेशी विकृति और तीसरी मानसिक पक्षाघात।
2: डॉक्टर पुष्पा, आप इसके बारे में कोई उपाय बताएंगे?
1: इन बच्चों के लिए कुछ अन्य मदद की जरूरत भी पड़ती है, जैसे कि संसाधन यंत्र आदि, अच्छा आहार और धीमी गति से पढ़ाना।
4: डॉक्टर पुष्पा, आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए हम सब आपका धन्यवाद करते हैं।
1: अच्छा, तो मुझे आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।
4: नमस्कार।
5: तो साथियों, डॉक्टर पुष्पा ने आज के वार्तालाप में हमें बहुत सारी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हम इनकी मदद किस प्रकार से कर सकते हैं, जैसे हर कार्य छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर, क्रमानुसार लगाकर, थोड़ा थोड़ा करके बार बार अभ्यास कराना। इसके अलावा यह भी ध्यान रखने की जरूरत है कि गत्यात्मक विकलांगता अन्य प्रकार की भी हो सकती है, जैसे रीढ़ की हड्डी में किसी प्रकार की कठिनाई होने से, जोड़ों के दर्द, विटामिन डी की कमी, जन्म के साथ बच्चों में सख्त जोड़ों का होना, शरीर के किसी अंग का गलत जगह होना, देरी से पैदा होना, किसी दुर्घटना में अंग का कट जाना, कोई अंग न होना इत्यादि। साथियों, याद रखिए, इन बच्चों को हमेशा आपका प्रोत्साहन और प्रेरणा मिलती रहनी चाहिए।
6: अभी कुछ दिन पहले मेरे मिनी टेम्पो की हेडलाइट बंद हो गई। मैकेनिक बोला, भाई रात को मत चलाना। हमने सोचा, यार इतना तो चलता है, रोज का रास्ता है, मैं जानता हूँ।
7: आगे एग्जिट नहीं दिखा और बाइक वाले ने इंडिकेटर भी नहीं दिया।
6: चलता है बोलने से किसी की जिंदगी भी रुक सकती है।
8: वाहन चलाने से पहले हमेशा ये सुनिश्चित करें कि हेडलाइट ठीक से काम कर रही हो। सही रोशनी से रास्ता भी साफ दिखाई देता है और आसपास चल रहे वाहन भी दिखाई देते हैं।
9: अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। अब आपके मित्र विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
10: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
11: अभी आप सुन रहे थे NCERT की ओर से प्रायोजित कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 295.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। शिक्षा मनुष्य

में आत्मविश्वास जगाती है। खुद शिक्षित बनिए और दूसरों को साक्षर बनाइए। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में ठीक 3 बजने को हैं। हमारी आज की ये सभा अब संपन्न होती है। दूसरी सभा शाम 5 बजे शुरू होगी। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। हमारे नेशनल नेटवर्क के कार्यक्रम जारी रहेंगे।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़, एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। 5 बजे हैं, हमारी आज की सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है। सभा के आरंभ में सुनते हैं कार्यक्रम धरती के गीत। गायक कलाकार हैं छेदीलाल और साथी। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं देवी गीत के साथ।

0: छेदीलाल और साथियों के स्वर में अब सुनते हैं खेमटा।
1: तो होता कितना

कार्यक्रम के अंत में छेदीलाल और साथियों के स्वर में सुनिए लचारी।

0: छेदीलाल और साथियों के गाए इस लाचारी गीत के साथ ही धरती के गीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़, एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर। कुछ ही पलों बाद युवा साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम युववाणी।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: मेहमान आएंगे, हो सकता है

0: इंडिया मैच जीतेगा ये भी पॉसिबल है, क्योंकि अनुमान सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन एचआईवी का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
1: एचआईवी को लेकर अनुमान ना लगाएं, सेल्फ रिस्क असेसमेंट करें। सेल्फ रिस्क असेसमेंट के बाद अगर जरूरत हो तो पास के आईसीटीसी केंद्र पर एचआईवी टेस्ट कराएं। आई स्कैन, अनुमान छोड़िए, स्कैन कीजिए। अधिक जानकारी के लिए breakfreeindia.org पर लॉगिन करें या 1097 पर कॉल करें।
2: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है, प्रस्तुत है युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी।

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है दिन अच्छा जा रहा होगा, और अगर थोड़ा बिजी चल रहा हो तो कोई बात नहीं, अपने इस छोटे से रेडियो ब्रेक में कुछ पल हमारे साथ भी बिताइए। मैं हूँ आपकी अपनी दोस्त सेजल, और स्वागत करती हूँ आपका युवानी के अनदर एपिसोड में। और दोस्तों, आज भी आपके साथ लेकर आई हूँ एक ऐसी बातचीत जो शुरू तो एकदम आम बात से होगी, लेकिन जाते जाते शायद आपको दुनिया को देखने का थोड़ा अलग नज़रिया दे जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक छोटे सवाल से। क्या आपको लगता है कि दुनिया में कहीं कुछ भी हो रहा है, उसका हमसे क्या लेना देना है? मतलब कोई घटना किसी दूसरे देश में हुई हो, कोई इंटरनेशनल टेंशन है, कहीं कोई सिचुएशंस बदल रही हैं, तो कहीं कोई क्राइसिस चल रहा है, तो हम सोचते हैं भाई ये तो हमसे इतनी दूर की बात है और इससे हमें लेना देना क्या है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि कई बार दुनिया के दूसरे हिस्से में होने वाली घटना आपके घर के मंथली बजट तक भी पहुंच सकती है, तो थोड़ा सरप्राइजिंग है ना? असल में आज की दुनिया बहुत छोटी हो गई है। नहीं, मेरा मतलब ये नहीं है कि दुनिया सच में छोटी हो गई है, मेरा मतलब ये है कि हम एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो गए हैं। एक देश में कुछ होता है तो दूसरे देश में उसका असर दिखाई देता है। कहीं कोई रास्ता बंद होता है तो किसी दूसरे देश में सामान की सप्लाई प्रभावित हो सकती है। कहीं एनर्जी से जुड़ी परेशानी आती है तो उसका असर ट्रांसपोर्ट और प्राइसेस पर पड़ सकता है। और हम अपने रोज़ के काम में लगे रहते हैं, और कई बार हमें पता भी नहीं चलता है कि किसी बड़ी ग्लोबल घटना का कोई छोटा सा असर हमारी लाइफ में भी कब आ गया। तो ज़रा सोचिए, आप सुबह घर से निकले, गाड़ी में फ्यूल हुआ, फ्यूल डलवाया, फिर सामान खरीदा, शायद कुछ ऑनलाइन ऑर्डर किया। लेकिन किसी दूसरे शहर में अगर आपने ट्रैवल का प्लान बनाया, और इन सब चीज़ों के पीछे सिर्फ हमारे आसपास की चीज़ें ही काम नहीं करती, इसके पीछे एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, और इस नेटवर्क में एक जगह हलचल होती है तो दूसरी जगह उसका असर पहुंच ही जाता है। अब एक सिंपल तरीके से समझते हैं कि मान लीजिए किसी ज़रूरी चीज़ की सप्लाई कहीं प्रभावित हो गई हो, सप्लाई कम हुई तो डिमांड वही रही, तो नेचुरली प्राइसेस पर प्रेशर आ सकता है। और जब प्राइसेस बदलते हैं तो उसका असर सिर्फ उस एक प्रोडक्ट तक नहीं रहता, उसके ट्रांसपोर्टेशन का खर्च बदल सकता है, प्रोडक्शन कॉस्ट बदल सकती है, और धीरे धीरे उसका असर दूसरी चीज़ों तक भी पहुंच सकता है। यानी एक घटना, फिर उसका एक इकोनॉमिक इफेक्ट, और फिर उसका हमारी एवरीडे लाइफ पर असर। यही तो इंटरेस्टिंग कनेक्शन है। हम अक्सर इंटरनेशनल न्यूज़ को तो देखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन अगर हम थोड़ा ध्यान दें तो समझ आएगा कि इंटरनेशनल अफेयर्स और हमारी डेली लाइफ दो अलग अलग दुनिया नहीं है, दोनों के बीच एक इनविजिबल कनेक्शन है। और दोस्तों, इसका एक और एग्जांपल लेते हैं, ट्रैवलिंग। मतलब हम कहीं घूमने का प्लान बनाते हैं तो सबसे पहले क्या देखते हैं? टिकट्स, फ्यूल्स, और अगर इंटरनेशनल लेवल पर किसी वजह से ट्रांसपोर्टेशन या एनर्जी मार्केट में बड़ा बदलाव आता है तो उसका असर कई जगहों पर पड़ सकता है। मतलब जिस घटना के बारे में हमने शायद सिर्फ न्यूज़ में 2 मिनट सुना, उसका असर हमारी ट्रैवल प्लानिंग तक पहुँच सकता है ना? थोड़ा इंटरेस्टिंग। और शायद इसी वजह से आज के समय में ग्लोबल अवेयरनेस सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए ज़रूरी नहीं है, ये हमारी एवरीडे अंडरस्टैंडिंग के लिए भी ज़रूरी है। और एक चीज़ और, आज हम सिर्फ अपने शहर या अपने देश में नहीं रहते, हमारी पढ़ाई, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, बहुत कुछ ग्लोबल लेवल पर जुड़ा हुआ है। किसी दूसरे देश पे कोई बड़ा बदलाव होता है तो उसका असर कंपनीज़ पर पड़ सकता है, कंपनीज़

पर पड़ता है, तो जॉब्स और मार्केट्स भी इफेक्टिव होती है। किसी रीजन में इंस्टेबिलिटी होती है तो बिजनेस में प्लान्स बदलते हैं हम, और इन सब का कनेक्शन आखिरकार इकोनॉमी से जुड़ता है। इसलिए जब हम कहते हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है, हमें क्या, तो शायद इस सवाल को थोड़ा बदलने की ज़रूरत है। सवाल ये होना चाहिए कि दुनिया में जो हो रहा है उसका हम तक असर कैसे पहुंच सकता है। बस पर्सपेक्टिव थोड़ा सा बदल जाता है। अब मैं चाहूंगी कि आप भी थोड़ा सोचें अगली बार कि जब कोई इंटरनेशनल न्यूज़ सुने तो सिर्फ ये मत कीजिएगा कि अच्छा वहाँ ये हुआ। एक बार खुद से पूछिएगा कि क्या इसका कोई कनेक्शन हमारी इकोनॉमी से है, क्या इसका असर ट्रेड पर पड़ सकता है, क्या इससे फ्यूल या ट्रांसपोर्टेशन प्रभावित हो सकता है, और सबसे ज़रूरी, क्या इसका कोई असर आने वाले दिनों में हमारी लाइफ में भी दिखाई दे सकता है। हो सकता है पहली नज़र में आंसर ना मिले, लेकिन यही क्यूरियोसिटी हमें दुनिया को थोड़ा बेहतर समझने में मदद कर सकती है। और दोस्तों, आज की हमारी बातचीत का सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा तो अभी बाकी है, क्योंकि दुनिया के नक्शे में कुछ ऐसे रीजंस हैं जिनकी इंपॉर्टेंस सिर्फ उनकी जियोग्राफिकल लोकेशन की वजह से नहीं है, उनका कनेक्शन एनर्जी से है, ट्रेड से है, इंटरनेशनल रूट से है, और कई देशों की इकोनॉमी से भी है। और जब ऐसे किसी रीजन में लंबे समय तक तनाव या संकट की स्थिति बनी रहती है तो दुनिया के कई देश सिर्फ वहाँ पर भी तनाव या संकट हमें देखने के लिए मिल सकता है। तो सवाल ये भी है कि इसका असर दुनिया पर क्या होगा और भारत पर भी, पर क्या इसका असर हमारे देश की इकोनॉमी पर पड़ सकता है, क्या एनर्जी और ट्रेड प्रभावित हो सकते हैं, तो इन सब सवालों पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा म्यूजिक तो बनता है ना, तो चलिए इस बातचीत को थोड़ा यहीं पॉज करते हैं और सुनते हैं अपने प्रोग्राम का ये फर्स्ट सॉन्ग।

तो दोस्तों, अब जरा वापस आते हैं अपनी आज की चर्चा की ओर, क्योंकि आज की बात थोड़ी सीरियस है, लेकिन इसे समझना भी उतना ही जरूरी है। श्रोताओं, आप कभी आपने सोचा कि दुनिया के किसी दूसरे कोने में चल रही कोई घटना, भले ही हमसे हजारों किलोमीटर दूर हो, फिर भी हमारी जिंदगी को, मतलब हमारी लाइफ को इफेक्ट कैसे करती है? जी हाँ, और आज बता दें, आज की हमारी चर्चा का टॉपिक है पश्चिम एशिया के संकट और उसके भारत पर पड़ने वाले असर की। अब आप सोच रहे होंगे कि पश्चिम एशिया में क्या हो रहा है, उससे हमें क्या लेना देना। तो चलिए इसी सवाल से अपनी बातचीत शुरू करते हैं। दोस्तों, दुनिया का कोई भी हिस्सा आज पूरी तरह दुनिया से अलग नहीं है। मतलब एक जगह तनाव बढ़ता है तो उसका असर सिर्फ उसी इलाके तक सीमित नहीं रहता। तेल की कीमतें बदल सकती हैं, समुद्री रास्तों पर दबाव बढ़ सकता है, कारोबार प्रभावित हो सकता है और इसका असर दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। और भारत भी इस ग्लोबल सिस्टम का एक हिस्सा है। पश्चिम एशिया यानी कि मिडल ईस्ट और ये इलाका सिर्फ राजनीति और संघर्ष के कारण इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि ये दुनिया के सबसे इम्पोर्टेंट एनर्जी रीजन्स में से एक है। बड़ी मात्रा में क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस का उत्पादन यहीं होता है और भारत भी अपनी ज़रूरत के लिए बड़ी मात्रा में क्रूड ऑयल इम्पोर्ट करता है। इसलिए जब इस रीजन में टेंशन बढ़ती है तो सबसे पहला सवाल सामने आता है कि ऑयल की कीमतों का क्या होगा। मान लीजिए इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल महंगा हो गया तो इसका असर सिर्फ पेट्रोल और डीजल तक नहीं रुकता, ट्रांसपोर्ट महंगा हो सकता है, फिर सामान को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने का खर्च बढ़ सकता है और धीरे धीरे इसका असर दूसरी चीज़ों की कीमतों पर भी दिखाई दे सकता है। यानी कि दुनिया के नक्शे पर कहीं दूर होने वाला कॉन्फ्लिक्ट कभी कभी हमारे घर के बजट तक भी पहुँच सकता है। तो पश्चिम एशिया भारत के लिए एक बहुत बड़ा ट्रेड और कनेक्टिविटी रीजन भी है। भारत की गल्फ कंट्रीज़ के साथ लंबे समय से मजबूत इकोनॉमिक और स्ट्रैटेजिक रिलेशंस रहे हैं। भारत के लाखों लोग इस रीजन के अलग अलग देशों में काम करते हैं। वे वहाँ से अपने परिवारों को पैसे भेजते हैं, जिसे हम रेमिटेंस कहते हैं। अब सोचिए, अगर किसी रीजन में लंबे समय तक इंस्टेबिलिटी रहती है तो वहाँ रहने वाले लोगों की सेफ्टी, जॉब्स और बिजनेस एक्टिविटीज़ पर भी तो असर पड़ सकता है। और इसलिए भारत के लिए ये सिर्फ फॉरेन पॉलिसी का मामला नहीं है, ये एनर्जी सिक्योरिटी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी और अपने नागरिकों की सेफ्टी, इन तीनों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। भारत की फॉरेन पॉलिसी की एक बड़ी चुनौती यहाँ दिखाई देती है कि बैलेंस बनाए रखना, क्योंकि पश्चिम एशिया में भारत के कई देशों के साथ अलग अलग तरह के रिलेशन्स हैं। किसी के साथ एनर्जी पार्टनरशिप है, किसी के साथ ट्रेड रिलेशन्स है, तो किसी के साथ डिफेंस कोऑपरेशन है। और ऐसे में भारत के लिए ज़रूरी है कि वो किसी भी तनाव को बढ़ाने के बजाय डायलॉग, डिप्लोमेसी और स्टेबिलिटी पर जोर दे। भारत का बहुत बड़ा इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो समुद्री रास्तों से ही होता है, तो पश्चिम एशिया के आसपास के जो इम्पोर्टेंट सी रूट्स में तनाव बढ़ता है तो शिप्स को ज़्यादा सावधानी बरतनी पड़ सकती है। कभी कभी रूट्स बदलने पड़ते हैं तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ सकती है।

है, और जब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ती है तो इसका असर इंटरनेशनल ट्रेड पर पड़ना तो स्वाभाविक है। इसलिए भारत के लिए सिर्फ ये देखना जरूरी नहीं है कि कॉन्फ्लिक्ट कहाँ हो रहा है, बल्कि ये भी देखना जरूरी है कि उसका असर किन किन रूट्स, मार्केट्स और सप्लाई चेन्स तक पहुँच रहा है। लेकिन क्या इसमें भारत के लिए कोई अपॉर्चुनिटी भी है? तो बताऊंगी आपको इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद कि क्या अपॉर्चुनिटीज हैं हमारे भारत के लिए।

0: बदलो बदलो आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
3: तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे कि क्या भारत के लिए भी इसमें कोई अपॉर्चुनिटी है। तो भाई है, हर क्राइसिस सिर्फ चैलेंज नहीं लाता, कुछ अपॉर्चुनिटीज भी लाता है। और ऐसे समय में इंडिया के लिए अपनी एनर्जी सोर्सेज को डाइवर्सिफाई करना और रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस बढ़ाना और भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। फिर चाहे वो सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, ग्रीन एनर्जी जैसे एरियाज में इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की ज़रूरत इसलिए भी है ताकि किसी एक एक्सटर्नल सोर्स पर हमारी डिपेंडेंस कम हो। और यही हमें एक बड़ी बात सिखाता है कि सेल्फ रिलायंस, जिसमें का मतलब होता है कि दुनिया से कट जाना नहीं बल्कि दुनिया से जुड़े रहते हुए अपनी वल्नरेबिलिटीज को कम करना है। और अब बात करते हैं कि हमारे यंग लिसनर्स की, क्योंकि इंटरनेशनल अफेयर्स सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वालों का सब्जेक्ट नहीं है, ये हमारी इकोनॉमी, करियर और फ्यूचर से जुड़ा हुआ है। और आज का युवा जिसमें करियर बनाने जा रहा है वो ग्लोबल इकोनॉमी से जुड़ी हुई है। किसी देश की इकोनॉमी स्लो होती है तो किसी रीजन में कॉन्फ्लिक्ट होता है, ऑयल प्राइसेस बदलते हैं, टेक्नोलॉजी, सप्लाई चेन्स प्रभावित होती हैं, तो इसका असर जॉब्स और इन्वेस्टमेंट डिसीजंस पर भी पड़ सकता है। इसलिए दुनिया में क्या हो रहा है इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखना आज के यूथ के लिए काफ़ी ज़रूरी है। और हाँ, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हमें हर इंटरनेशनल हेडलाइन देख कर परेशान हो जाना चाहिए। हमें पैनिक नहीं करना है, बस पर्सपेक्टिव चाहिए। भारत के सामने ब्रॉडली बहुत सारी प्रायोरिटीज़ भी हैं, जैसे पहली अपने नागरिकों की सेफ्टी, दूसरी एनर्जी सिक्योरिटी को मजबूत करना, तो इसी कड़ी में तीसरी है अलग अलग देशों और रीजन्स के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस को बैलेंस्ड रखना, और चौथी है ट्रेड और सप्लाई चेन्स को रिजाइलेंट बनाना, और पाँचवीं कि लॉन्ग टर्म में रिन्यूएबल एनर्जी और ऑल्टरनेटिव सोर्सेज पर डिपेंडेंस बढ़ाना। क्योंकि क्राइसिस कब खत्म होगा ये हमारे हाथ में तो नहीं है, लेकिन क्राइसिस के लिए हम कितने प्रिपेयर्ड हैं ये काफ़ी हद तक हमारे कंट्रोल में होता है। तो दोस्तों, मिडिल एशिया का संकट हमें एक बात तो साफ तौर पर ये समझ में आता है कि आज की दुनिया में कोई भी घटना सिर्फ एक जगह तक सीमित नहीं रहती है। भारत के लिए चुनौती बड़ी ज़रूर है, लेकिन हमारी स्ट्रेंथ भी कम नहीं है। डिप्लोमेसी, बैलेंस्ड फॉरेन पॉलिसी, एनर्जी सिक्योरिटी और अपने नागरिकों की सेफ्टी पर फोकस करके भारत इन मुश्किल हालात का सामना कर सकता है। और हमारे लिए इससे एक ये छोटी सीख भी निकलती है कि दुनिया में क्या हो रहा है इसे सिर्फ हेडलाइन की तरह मत देखिए, उसके पीछे की कहानी और उसका असर समझने की कोशिश कीजिए। क्योंकि आज कुछ भी हमसे दूर नहीं है, और दुनिया में होने वाली हलचल की एक छोटी सी लहर कभी ना कभी हमारे अपने किनारे तक ज़रूर पहुंचती है। तो इसी सोच के साथ आज की चर्चा को देते हैं यहीं विराम, और सुनते हैं अपने प्रोग्राम का ये नेक्स्ट ट्रैक।

तो दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम के अगले सेगमेंट की ओर, जो कि है प्रेरणा पुंज। और आज कहते हैं ना कि कुछ नाम सिर्फ इतिहास के पन्नों पर दर्ज नहीं होते, बल्कि समय बीत जाने के बाद भी हमें ये याद दिलाते रहते हैं कि हिम्मत होती क्या है। और आज के प्रेरणा पुंज में हम ऐसी ही एक शख्सियत के बारे में बात करेंगे, एक ऐसी वीरांगना जिसने उस दौर में हथियार उठाया जब महिलाओं के लिए अपनी आवाज़ उठाना भी आसान नहीं था, एक ऐसी वीरांगना जिसने अपने सामने खड़ी बड़ी ताकत से डरने के बजाय उसका सामना किया, जिनका नाम था ऊदा देवी। साल था 1857, देश के

अलग अलग हिस्सों में अंग्रेजी शासन के खिलाफ विद्रोह की चिंगारी फैल रही थी। अवध और लखनऊ भी इस संघर्ष के बड़े केंद्र बने। इसी दौर में उदा देवी ने भी अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष में हिस्सा लिया। उनका संबंध अवध के उस विद्रोही आंदोलन से था जिसका नेतृत्व बेगम हजरत महल जैसी साहसी महिला कर रही थी। लेकिन उदा देवी की कहानी सिर्फ इसलिए खास नहीं है कि उन्होंने युद्ध में हिस्सा लिया, वो इसलिए खास है क्योंकि उन्होंने अपने समय की सोच को चुनौती दी। उस समय एक महिला के हाथ में हथियार की कल्पना करना भी बहुत बड़ी बात थी, और जब उन्हें पता चला कि उनके पति युद्ध में शहीद हो गए तो उन्होंने अपना अंतिम अभियान पूरी ताकत से शुरू कर दिया। और ऐसे समय में कोई इंसान टूट सकता था, लेकिन उन्होंने इस दर्द को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया, उन्होंने उसे संकल्प में बदल दिया। और यही शायद उनकी कहानी की सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि जिंदगी में भी तो ऐसा ही होता है ना, कभी कोई सपना टूटता है। बट शी बिलीव्ड शी कुड एंड शी सो शी डिड। उन्हें शायद पता था कि रास्ता आसान नहीं है, लेकिन उन्होंने ये भी तय कर लिया था कि मुश्किल रास्ता उन्हें रोक नहीं पाएगा। कभी मेहनत का परिणाम हमारे पक्ष

से संकल्प में बदल दिया, और यही शायद उनकी कहानी की सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि जिंदगी में भी तो ऐसा ही होता है ना, कभी कोई सपना टूटता है। बट शी बिलीव्ड शी कुड एंड शी सो शी डिड। उन्हें शायद पता था कि रास्ता आसान नहीं है, लेकिन उन्होंने ये भी तय कर लिया था कि मुश्किल रास्ता उन्हें रोक नहीं पाएगा। कभी मेहनत का परिणाम हमारे पक्ष में नहीं आता, तो कभी किसी अपने की कही हुई कोई बात दिल दुखा देती है, और ऐसे समय में हमें लगता है ना कि अब आगे कैसे बढ़ेंगे। तो ऊदा देवी की कहानी हमें ये याद दिलाती है कि कभी कभी वही दर्द हमें पहले से और ज़्यादा मजबूत बना देते हैं। लखनऊ के सिकंदर बाग 1857 के संघर्ष के दौरान यहाँ भारतीय विद्रोही और अंग्रेजी सेना के बीच संघर्ष हुआ। लोकप्रिय ऐतिहासिक विवरणों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि ऊदा देवी ने एक पेड़ पर चढ़कर मोर्चा संभाला, एक तरफ अंग्रेजी सेना तो दूसरी तरफ विद्रोही, और उनके बीच एक ऐसी महिला जो अपनी जान की परवाह किए बिना लड़ाई के मैदान में डटी हुई थी। कहा जाता है कि उन्होंने पेड़ पर छिपकर अंग्रेज सैनिकों पर हमला किया, और काफी समय तक अंग्रेज सैनिक ये समझ ही नहीं पाए कि हमला उन पर आखिर किस दिशा से हो रहा है। और जब बाद में उनको ये स्थिति का पता चला तो उनका सामना किया गया। उनकी बहादुरी की कहानी वहीं खत्म हो गई, लेकिन उनका नाम वहीं से इतिहास में दर्ज हो गया। कहते हैं दोस्तों कि करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रियम्फ ओवर इट। यानी साहस का मतलब ये नहीं कि इंसान को डर नहीं लगता, साहस तो तब है जब डर सामने हो और फिर भी कदम पीछे न हटे। और शायद इसी साहस की सबसे खूबसूरत मिसाल थी 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की वीरांगना ऊदा देवी। और दोस्तों अब हमारे मन में ये सवाल आता है ना कि आखिर उनमें इतनी हिम्मत आई कहाँ से। शायद इसका कोई जवाब नहीं है, लेकिन हिम्मत किसी एक दिन में नहीं होती है, हिम्मत बनती है अपने विश्वास से, लोगों के प्रति जिम्मेदारी से, और उस पल से कि जब इंसान ये तय कर लेता है कि अब डर से बड़ा मेरा उद्देश्य है। और यही बात आज हमारे लिए भी उतनी ही मायने रखती है। आज हमारे पास युद्ध के मैदान नहीं है, लेकिन हमारे अपने संघर्ष ज़रूर है। किसी के सामने पढ़ाई का प्रेशर है, तो किसी के सामने करियर को लेकर थोड़ा कन्फ्यूजन है, कोई अपने सपने को लेकर बार बार कोशिश कर रहा है, और कोई ऐसा भी हो सकता है जो बाहर से बिल्कुल ठीक दिखता हो लेकिन अंदर से किसी मुश्किल दौर से गुजर रहा हो। तो ऐसे में ऊदा देवी की कहानी हमें एक छोटी सी बात याद दिलाती है कि मुश्किल समय आपकी पूरी कहानी नहीं है। आज अगर रास्ता मुश्किल है तो इसका मतलब ये नहीं कि मंजिल असंभव है। आज अगर आप थक गए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हार गए हैं। और अगर आपको कभी लगे कि आप अकेले हैं तो इतिहास के पन्नों को याद कीजिएगा जहाँ कुछ लोगों ने अकेले खड़े होकर भी अपने समय को चुनौती दी थी। तो ये थी हमारी आज की प्रेरणा पुंज। और वैसे भी अभी है मेरे पास एक और सेगमेंट आपके लिए, पर उससे पहले सुनाते हैं आपको ये नेक्स्ट ट्रैक।

तो दोस्तों, अब वक्त है उस सेगमेंट का जहां आपको कल के सवाल का जवाब मिलता है और आज का सवाल आपके सामने आता है। तो सबसे पहले, कल मैंने आपसे पूछा था कि कौन सी देशांतर रेखा को भारत का स्टैंडर्ड मेरिडियन माना गया है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। और साथियों, आज का सवाल है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की न्यूनतम लंबाई क्या होनी चाहिए। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की न्यूनतम लंबाई क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों, हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। आप अपना जवाब दे सकते हैं हमारे नंबर पर, जो कि है 8004926250, और मेल कर सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पर, जो कि है yuvvnialt@gmail.com। तो साथियों, घड़ी इशारा कर रही है कि अब मुझे आपसे कहना होगा टाटा बाय बाय, लेकिन उससे पहले सुनवाती हूँ अपने प्रोग्राम का ये लास्ट ट्रैक।

तो दोस्तों, आपको हमारा आज का प्रोग्राम कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके सुझाव और फीडबैक हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। तो इसी के साथ अपनी दोस्त सेजल को दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी एक नए विषय और एक नई बातचीत के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।

0: अभी युवा साथी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युवा वाणी। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स, FM 100.3 मेगाहर्ट्स और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। 6 बजने को हैं, कुछ ही पलों बाद आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। समाचारों के लिए कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को होने वाली ब्रिक्स बैठक के दौरान कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि इन बैठकों के दौरान रूस यूक्रेन संघर्ष सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत यूक्रेन और रूस दोनों के संपर्क में है और संघर्षों को रोकने में मददगार सुझावों और विचारों पर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत युद्ध समाप्त करने में किसी भी तरह मदद कर सकता है तो वो इसके लिए तैयार है। उन्होंने बताया कि भारत चीन सीमा मुद्दे पर लगातार संवाद कर रहे हैं। दोनों देशों के बीच वरिष्ठ सैन्य कमांडर स्तर की बैठक अरुणाचल प्रदेश के वाचा और चीन के दमाई में हुई है।
2: अगस्त 2025 और अगस्त 2026 में भारत और चीन के विशेष प्रतिनिधियों के बीच बनी सहमति और उसके बाद मई और अगस्त 2026 में जो मीटिंग हुई थी बीजिंग में और दिल्ली में WMCC की बैठकों में, उस चर्चाओं पर आधारित वरिष्ठ सैन्य कमांडर स्तर की पहली फ्लैग मीटिंग 6 सितंबर 2026 को अरुणाचल प्रदेश के वाचा में और 7 सितंबर 2026 चीन की तरफ दमाई में आयोजित की गई।
1: ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति

0: व्लादिमीर पुतिन द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। रूस के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि दोनों नेता आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। श्री पेस्कोव ने कहा कि रूस भारत को वैश्विक बहुमत में एक महत्वपूर्ण देश मानता है। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान एआई एक प्रमुख मुद्दा रहेगा। इस बीच ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की तैयारियों के लिए आज शाम 7:45 से रात 10 बजे तक मोटर कारकेट का पूर्वाभ्यास किया जाएगा। इस दौरान भारत मंडपम और आसपास के क्षेत्रों में लगभग 35 से अधिक सड़कों पर यातायात नियंत्रित किया जाएगा और 22 स्थानों पर मार्ग परिवर्तित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। श्री मोदी ने पश्चिमी क्षेत्र के लिए विशेष माल ढुलाई गलियारे के 3 प्रमुख खंडों को राष्ट्र को समर्पित किया। इसके साथ ही माल ढुलाई गलियारे के संचालन का मार्ग प्रशस्त हो गया है। श्री मोदी ने कहा कि ये गलियारा विकसित भारत की जीवन रेखा है।
1: आज ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर देश के व्यापार कारोबार का मुख्य आधार बन रहा है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर तेजी से विकसित होते भारत की जीवन रेखा है। इसने भारत के ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर का कायाकल्प कर दिया है।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 22 सितंबर को गुजरात के एकता नगर में 72वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगे। आर्टिकल 370 को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया जाएगा। फिल्म ब्रह्मयुगम के लिए अभिनेता ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेता का पुरस्कार दिया जाएगा। यामी गौतम को आर्टिकल 370 के लिए सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेत्री का पुरस्कार दिया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज 3 दिन की श्रीलंका यात्रा पर कोलंबो पहुंचे। इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच रक्षा और समुद्री सहयोग को और मजबूत करना है। इस दौरान रक्षा मंत्री रक्षा और समुद्री सहयोग साझेदारी को मजबूत करने सहित कई मुद्दों पर बातचीत करेंगे। वे कोलंबो में भारतीय समुदाय से भी मुलाकात करेंगे। ब्रिटेन ने भारत की कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना को मान्यता दे दी है। भारतीय निर्यातकों के लिए ये बड़ी राहत ब्रिटेन ने कार्बन सीमा समायोजन व्यवस्था के अंतर्गत दी है। अब ब्रिटेन में कार्बन टैक्स के दायरे में आने वाले भारतीय उत्पादों पर भारत में पहले से चुकाए गए कार्बन मूल्य के आधार पर राहत मिल सकती है। इससे भारतीय निर्यातकों को एक ही कार्बन उत्सर्जन के लिए 2 बार शुल्क चुकाने से राहत मिलेगी। बम्बई शेयर बाजार का सेंसेक्स आज 555 अंक गिरकर 75,578 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 144 अंक की गिरावट के साथ 23,635 पर दर्ज हुआ। अहमदाबाद में विश्व पैरा तीरंदाजी श्रृंखला के तीसरे चरण में आज भारत ने 2 स्वर्ण 2 रजत और 1 कांस्य पदक अपने नाम किए। तोमन कुमार और श्याम सुंदर स्वामी ने कंपाउंड टीम स्पर्धा में और हरविंदर सिंह तथा विजय सुंडी की रिकर्व टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज, एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। आइए आपको जानकारी दे दें इस सभा के शेष और कल प्रसारित होने वाले हमारे कुछ मुख्य मुख्य कार्यक्रमों की। पहले सुनिए इस सभा के शेष कार्यक्रमों के बारे में। शाम 6:30 पर पंचायत घर कार्यक्रम में ग्रामीण भाई सुनेंगे अवधेश चंद्र यादव की वार्ता डेयरी उद्योग में जैव प्रौद्योगिकी। इसके अलावा विद्यानंद त्रिपाठी से रामायण पाठ। 6:50 पर होगा प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। शाम 7:31 पर संस्कृत कार्यक्रम में सुनिएगा डॉक्टर नीलेश मिश्र की वार्ता भारतीय संस्कृतो नारिणाम स्थानम। सुगम संगीत के कार्यक्रम में शाम 7:45 पर आपको सुनवाएंगे सुमधुर भाषणी तिवारी के स्वर में भजन और गीत। सबरस कार्यक्रम सुनिएगा रात 8:30 पर। गजलों पर आधारित कार्यक्रम कहकशा का समय होगा रात्रि 9:30। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में रात्रि 10:30 पर आप सुनेंगे पंडित प्रेम कुमार मलिक का गायन। खेल दर्पण कार्यक्रम होगा रात 10 बजे। इसे हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे। ये थी जानकारी इस सभा के शेष कार्यक्रमों के बारे में।

और अब डालते हैं एक नजर कल प्रसारित होने वाले कुछ खास खास कार्यक्रमों पर। कल रात्रि 9:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम चर्चा का विषय है। इसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। सुबह 6:35 पर कृषि जगत कार्यक्रम में किसान भाई सुनेंगे डॉक्टर हेमलता पंत की वार्ता वर्मी कंपोस्ट। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में सुबह 6:45 पर सुनिएगा डॉक्टर अनिल अग्रवाल की वार्ता हेपेटाइटिस कारण लक्षण और उपचार। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुबह 7:30 पर आपको सुनवाएंगे विदुषी लक्ष्मी शंकर का गायन। दिन में 12:15 पर विद्याधर प्रसाद मिश्र का गायन और शास्त्रीय संगीत के ही कार्यक्रम में रात्रि 10:30 पर आप सुन सकते हैं पंडित ब्रज नारायण का सरोद वादन। नमस्कार, प्रयागराज कार्यक्रम होता है सुबह 8:45 पर। वॉइस ऑफ प्रयागराज में 10:05 पर सुनिएगा डॉक्टर ऋचा पांडे से अभिनव प्रज्ञ पांडे की बातचीत का दूसरा भाग। लोकगीत का आनंद लीजिएगा सुबह 10:30 पर गायक कलाकार शोभा लाल और साथी प्रियंका चौहान, ब्रजभान यादव और साथी। 1:15 पर गृह लक्ष्मी कार्यक्रम में बहनें सुनेंगी मेरा हुनर मेरा व्यवसाय के अंतर्गत बांस से बनाए खिलौने और घरेलू सामान। युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी हम लेकर के आते हैं शाम 5:15 पर। पंचायत घर कार्यक्रम में शाम 6:30 पर ग्रामीण भाई सुनेंगे मंगला प्रसाद तिवारी से नीत वचन। बोलते नगमे कार्यक्रम होगा शाम 7:31 पर। सबरस का समय है रात्रि 8:30। ये थी जानकारी इस सभा की शेष और कल प्रसारित होने वाले हमारे मुख्य मुख्य कार्यक्रमों की। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है।

0: सुबह सवेरे आध्यात्मिक चेतना का कीजिए विकास आराधना के साथ।
1: विचारों की तरंग और भावनाओं की उमंग, नमस्कार प्रयागराज के संग।

0: में फिल्मी सितारों का सफरनामा। जोड़िए दिल से दिल के तार हेलो फरमाइश के साथ।
1: गृह लक्ष्मी के साथ होंगी

0: लोक रंग लोक उमंग लेकर आता है पनघट।
1: युवाओं की सोच को आवाज देता कार्यक्रम युववाणी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: और पंचायत घर में होंगी खेत खलिहान और चौपाल की बातें।

0: संस्कृत हिंदी और उर्दू कार्यक्रमों का संगम सिर्फ आकाशवाणी पर।
1: समाज का

0: प्रतिबिंब और जन जन की आवाज आईना के साथ।
1: तू आशिक है, मैं तेरी आशिकी।
2: सिल्वर स्क्रीन से खुलेगा सिनेमा के सुनहरी यादों का एल्बम।

0: गीत जो कह जाते हैं कहानी, कार्यक्रम बोलते नगमे की जबानी।
1: पहली बार हुआ तुम इतने दिन थी कहाँ, मैं ढूंढता ही रहा
0: कहाँ।
1: कभी लिंकिंग रोड, कभी वार्डन रोड, कभी कैडल रोड, कभी पेडल।
2: लिफाफों में बंद एहसासों के रंग, चिट्ठी आई है के संग।
1: पहली बार हुआ।
0: सुबह से रात तक आपकी आवाज आपके साथ।
2: सुनते रहिए आकाशवाणी प्रयागराज, धड़कन हर दिल की।
3: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। अब प्रस्तुत है देशगान।

0: अभी आपने सुना देश गान। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर 6:20 होने को हैं। कुछ ही पलों बाद आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः जतिन शर्मा। आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना अद्य गुजरातस्य वडोदरायां 35,000 कोटि रूप्यतोप्यधिकमूल्यानां विभिन्न विकास परियोजनानां उद्घाटनं शिलान्यासः च कृतः। उक्तं च यत् भारतं वैश्विकोत्पादन केन्द्र रूपेण उदितमस्ति। मुंबय्यां प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 26,000 ग्लोबल फिनटेक फेस्ट इत्यस्य उद्घाटनं विधास्यति। बॉम्बे उच्च न्यायालयेन अद्य प्रधानमन्त्रिणं नरेन्द्र मोदिनं प्रति 19-2000 वर्षे प्रदत्तं वक्तव्यं सम्बद्धे मानहानि प्रकरणे कांग्रेस सांसदस्य राहुल गांधिनः विरुद्धं प्रत्याख्यापितस्य समाह्वानपत्रस्य निरस्तीकरणं निराकृतम्। रक्षामंत्री राजनाथ सिंहः अद्य त्रिदिवसीय श्रीलंका यात्रायै कोलंबो नगरं सम्प्राप्तवान्। अपि च अहमदाबादे अनुष्ठीयमानायाम् ऐषमः विश्व दिव्यांग धनुर क्रीडायां भारतेन 2 स्वर्ण पदके 1 रजत पदकं च अधिगतम्।

0: अथ वार्ताः विशदीकृत्य प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना अद्य गुजरातस्य वडोदरायां 35,000 कोटिरुप्यतोप्यधिकमूल्यानां विभिन्नविकासपरियोजनानाम् उद्घाटनं शिलान्यासः च कृतः। प्रधानमन्त्रिणा पश्चिमसमर्पितमालवाहकमार्गस्य 3 प्रमुखाः खण्डाः राष्ट्राय समर्पिताः, येन मालवाहकमार्गजालस्य पूर्णं परिचालनं संभविष्यति। प्रधानमंत्री मोदी न्यू सानंद, न्यू मकरपुरा, न्यू उम्बरगांव तथा न्यू जेएनपीटी इत्येतेभ्यः स्थलेभ्यः मालवाहक रेल यान सेवानां हरितध्वजं प्रदर्श्य शुभारंभं कृतवान्। तेन टांडा मार्गस्य वडोदरायाः च मध्ये नवीन यात्री रेल सेवायाः शुभारंभोपि कृतः। एषा सेवा अलीराजपुरस्य दूरस्थेषु जनजातीय क्षेत्रेषु राष्ट्रीय रेलजालस्य संपर्कं स्थापयिष्यति। विशाल जनसमूहं संबोधयन् प्रधानमंत्री उक्तवान् यत् भारतं वैश्विकोत्पादन केन्द्र रूपेण उदितमस्ति तथा अधुना देशः स्वयमेव उन्नतयोः रेल मेट्रो चेत्येतयोः यानयोः कक्ष निर्माणं करोति।
1: आज 2,800 किलोमीटर से अधिक का डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट पूरा हो गया। ये 21वीं सदी के भारत के लिए बहुत ऐतिहासिक कार्य संपन्न हुआ है। ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इस बात का साक्षी है कि बीते 12 साल में देश की काम करने की संस्कृति कैसे बदली है।
0: प्रधानमंत्री उक्तवान् यदस्याः परियोजनायाः परिकल्पना 6,000-2,000 वर्षे कृता, किन्तु सा बहूनि वर्षाणि निष्क्रियावस्थायाम् आसीत्। तद्विपरीतं गतदशके द्रुतगतिना कृतस्य कार्यान्वयनस्य फलस्वरूपं राष्ट्रियापूर्ति व्यवस्था पूर्णतया परिवर्तितास्ति। अद्य अयं मालवाहक मार्गः द्रुतगत्या विकासमानस्य भारतस्य जीवनरेखारूपेण कार्यं करोति। प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् मालवाहनस्य यात्री रेलमार्गेभ्यः पृथक्करणेन कार्यक्षमतायां महत्वपूर्णः परिष्कारः अभवत्। यात्राकाले महन्न्यूनतया इन्धनस्य पर्याप्तं संरक्षणं भवति, पर्यावरणे दुष्प्रभावः न्यूनीभवति, सम्पूर्णराष्ट्राय च द्रुततरा स्वच्छा च आपूर्तिव्यवस्था स्थापिता भवति।
1: इस वर्ष लाल किले से मैंने विकसित भारत के लिए संकल्प की सप्तधारा का आह्वान किया है। इस सप्तधारा में एक धारा गति शक्ति की भी है। विकसित भारत के लिए हमें ऐसी कनेक्टिविटी चाहिए जो सुगम भी हो और जमाने के हिसाब से जरा तेज भी हो।
0: कार्यक्रमावधौ प्रधानमन्त्री मोदी 97,000 कोटिरुप्यतोप्यधिकमूल्यानां 3 रेलविस्तारयोजनानां शिलान्यासमपि कृतवान्। मुम्बय्यां प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी 26,000-2,000 ग्लोबल फिन्टेक् फेस्ट इत्यस्य अद्य उद्घाटनं विधास्यति। अस्य वार्षिकसम्मेलनस्य 7 संस्करणमद्य समारब्धं सत् आगामिनि सितम्बरमासस्य 11 दिनाङ्के समाप्तिमेष्यति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य सामाजिक सेवां स्वच्छतां च प्रभावी दैनन्दिन आचरण रूपेण स्वीकर्तुम् अथ विकास योजनानां लाभं समाजस्य प्रति प्रापयितुं च नागरिकेभ्यः जनप्रतिनिधिभ्यश्च आह्वानं कृतवान्। प्रधानमन्त्रिणा नवसारीत्यत्र नवनिर्मितस्य भाजपा कार्यालयस्य उद्घाटनानन्तरम् आयोजिता विशाल जनसभा सम्बोधिता। प्रधानमन्त्री स्वनिधि योजनायाः परिवर्तनकारी प्रभावस्य उल्लेखं कुर्वन् प्रधानमन्त्री उक्तवान् यत् अनया योजनया लघुमार्ग विक्रेतृभ्यः पथ विक्रेतृभ्यश्च सुलभ ऋणस्य अथ आधुनिक अंकीय देय सौविध्यानां च सुलभ प्राप्तिं सुनिश्चित्य वित्तीय समावेशनं प्रवर्धितम्। जनस्वास्थ्यस्य स्वच्छतायाश्च महत्वं प्रतिपादयन् प्रधानमन्त्री स्वागमनात् पूर्वं स्थानीय प्रशासनेन निवासिभिश्च संचालितस्य व्यापकस्य सूक्ष्म स्वच्छताभियानस्य प्रशंसां कृतवान्। प्रधानमन्त्री मोदी जनकल्याणाय निरन्तर समर्पणस्य कृते दलकार्यकर्तृणामपि प्रशंसां कृतवान्। इतः पूर्वमद्य प्रधानमन्त्री मोदी वडोदरायां 35,000 कोटि रूप्यकं

0: रूप्यतोप्यधिक मूल्यानां विभिन्न विकास परियोजनानां उद्घाटनं शिलान्यासं च कृतवान्। संस्कृत वार्तायाः संस्करणमिदं इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। असम विधानसभायाः भूतपूर्व सदस्याय विश्रुत संगीतज्ञाय भारत रत्न विभूषिताय डॉक्टर भूपेन हजारिका महोदयाय तस्य शततमे जन्मजयन्त्यवसरे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शाहश्च अद्य स्वकीयां भावपूर्णां श्रद्धांजलिं समार्पयन्। सांप्रदायिक संचार पटलीय संदेशे प्रधानमंत्रिणा श्रीमोदिना प्रत्यपादि यत् डॉक्टर हजारिका महोदयस्य स्वरमाधुरी असम प्रदेशस्य आत्मानं पूर्वोत्तर भारतस्य च सांस्कृतिक चैतन्यं समग्र राष्ट्रे प्रासारयत्। अपरस्मिन् संदेशे उपराष्ट्रपतिना राधाकृष्णन इत्यमुना न्यरूपयत यत् स्वीयेन आत्मस्पर्शिना संगीतेन ओजस्वीभिः शब्दैश्च डॉक्टर हजारिका असमस्य, पूर्वोत्तर भारतस्य अथ च विशाल मानव संवेदनानां जीवन्तरूपं संगीतबद्धम् अकरोत्। बॉम्बे उच्च न्यायालयेन अद्य प्रधानमन्त्रिणं नरेन्द्र मोदिनं प्रति नवदशोत्तर द्विसहस्रतमे वर्षे प्रदत्तं वक्तव्यं सम्बद्धे मानहानि प्रकरणे कांग्रेस सांसदस्य राहुल गांधिनः विरुद्धं प्रत्याख्यापितस्य समाह्वानपत्रस्य निरस्तीकरणं निराकृतम्। न्यायमूर्तिनः एन आर बोरकर इत्यस्य एकलपीठेन राहुल गांधिनः सा याचिका निरस्तीकृता यस्यां तेन स्वविरुद्धं न्यायालयेन प्रारब्धस्य कार्याचरणस्य आदेशः आक्षिप्तः आसीत्। तथापि उच्च न्यायालयेन एकविंशत्युत्तर द्विसहस्रतमे वर्षे प्रदत्तः स्वस्य सः निर्देशः यथावत् स्थापितः यस्यान्तर्गतं दण्डाधिकारिणः पुरतः श्रवणं षट्सप्ताहं यावत् स्थगितम् आसीत्। रक्षामन्त्री राजनाथसिंहः अद्य त्रिदिवसीय श्रीलंकायात्रायै कोलम्बो नगरं सम्प्राप्तवान्। तस्य यात्रा भारत श्रीलंकयोः मध्ये द्विपक्षीय रक्षा सहकारस्य सामुद्रिक सहकारस्य सुदृढीकरणोद्देश्येन आयोजिता अस्ति। श्रीलंकायाः भण्डारनायके अन्ताराष्ट्रिय विमानस्थानके श्रीसिंहस्य श्रीलंकायाः उपरक्षामन्त्री अरुणा जयशेखरः, श्रीलंकायां भारतस्य उच्चायुक्तः सन्तोष झाः च हार्दं स्वागतं कृतवन्तौ। अहमदाबादे अनुष्ठीयमानायाः विश्व दिव्यांग धनुर्क्रीडायाः तृतीय चरणस्य उपान्तिमे दिवसे भारतीय धनुर्धरैः त्रीणि पदकानि हस्तगतानि कृतानि इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़, एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है ग्रामीण भाइयों का कार्यक्रम पंचायत घर।

पंचो राम राम, हम कहा पंचो देखा मई भैया सुमेर और तुम्हारे सबका राम जोहारी कही थी। एक बात यह है पंचो कि देखा भाई खेती किसानी के साथे साथे पीढ़ी परिपाटी से अपने सबकियाँ पशुपालन का रोजगार धंधा रहा बा। वैसे हूँ दुआरे पे अगर गोरू बछेरू बना रहा है, गाय है भैंस है बैल है, तो घर का शोभा बढ़ता है, खेती का किसानी का शान बढ़ रहा है। खेत किसान में खेती किसानी में गोबरे का खाद का बहुत उपयोगिता बाटे और खेती का मजबूती के बड़े पशुअन को हो बहुत जरूरी रहा। मूल थोड़ा परिवर्तन हुआ भाई, अब देखा ट्रैक्टर उक्टर आ गए तो जोताई उताई के ज़्यादातर काम ट्रैक्टर के माध्यम से होता है। मूल दूध दही घी के बड़े अब लगे पशु का महत्ता बाटे और ख़ासतौर पर जब

से संकर नस्ल का गाय भैंसी आ गया है, तब से दूध का उत्पादन बढ़ गया है का व्यवसायिक स्तर पर किन जाता है। तो कहे का मतलब ये बाटे भाई कि जौन भी लगेन पशु हैं बेसकीमती हैं, महंगा मिलबो करत हैं, इनकर देखब देख रेख भी करब वैज्ञानिक तरीके से है, वैज्ञानिक सोच के साथ में है, कार्य व्यवहार वैसे ही न है, ताकि हमारे पशु स्वस्थ रहें, ज़्यादा से ज़्यादा दूध का उत्पादन करें, उनका कोनो रोग व्याध ना हो। तो यह कुल का ध्यान में देत भे एक तो इलाज का टीकाकरण का तमाम ब्लॉक स्तर से लेकर गाँव स्तर तक सरकार की तरफ से व्यवस्था की गई, ताकि हमारे पशु प्राणी स्वस्थ रहें और बढ़िया दूध का उत्पादन करें। दूसरी बात यह है भाई कि कभों कभों होत का कि हरी बिरामी आई जात है, तो पशु का कभों कभों बड़ा जान माल का भी नुकसान हुई जात है, तो उसे बचाव के बड़े हमारे किसान भैया हरे उसे झटका खाएं, उबर जाएं और फिर से पशुपालन कर सकें, तो एकरे बड़े पशुधन बीमा योजना का कार्यक्रम शुरू किया है, जिसके माध्यम से अगर पशुओं का कोनो बड़ा नुकसान होता है तो किसान का भरपाई की जात, किसान का धन दीन जात है, तो एक बारे में किसान भैया हरे जाने समझें और यह योजना से जुड़ें, ताकि उनकर जो रोजगार धंधा बाटे पशुपालन का उमा नुकसान न हो सके और फिर से अपने पैर पर खड़ा हो कि अगर कोनो ऐसा बात आवत है तो धंधा बनाए रखें। एक बात पंचो यो कर कहा कहा कि देखा भाई खेती किसानी पशुपालन या रोजगार धंधा जो ग्रामीण रोजगार धंधा आए, इनसे जुड़ी हुई जो भी समस्या है, जो भी जानकारी है, समस्या जानकारी जागरूकता और ओकर भैया अनुपालन कैसे करें ताकि उनकर फसल अच्छी रहे, खेती किसानी अच्छी रहे, किसान भैया रे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमा सकें, तो एकरे बड़े किसान कॉल सेंटर का स्थापना की गया है, जिसके माध्यम से किसान भैया रे अपने खेती किसानी या उससे जुड़े हुए रोजगार धंधा के बारे में कॉल सेंटर पर बात करके पूछ सकत हैं और वहाँ हिसाब से वैज्ञानिक भैया हरे जो उनका सुझाव दें उनका अनुपालन करें तो उनकर फसल भी अच्छी रहे, खेती किसानी भी अच्छे रहे, गोरू बछेरू भी अच्छे रही हैं। तो भाई जो दोनों बात है, चाहे पशुधन का बात हो चाहे किसान कॉल सेंटर का बात हो, एक कर कुल का उद्देश्य के बाटे कि किसान का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिले और उनका समय के हिसाब से समय से पूर्व भी जानकारी रहे, ताकि वह तरीके से खेती किसानी में अपन कार्य व्यवहार कर सकें, कृषि कार्य कर सकें, ताकि फसल लालहाय अच्छी रहे, बढ़िया उत्पादन हो, किसान माल लाभ में रहें। ये सब बत कही भाई पंचायत देखा भाई एक गौने ही बाटे बाबूलाल दिवाकर का हम काहे का पंचरे सुन लें फिर बत कही हुई।

0: उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की अनुमन्य सुविधाओं हेतु कृषि विभाग से संपर्क करें। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
3: हाँ, पंचो दिखाई तो गंवा ही रही है और साथ ही साथ सनेस भी सुनत गया है। अब जोन बात कही होत रही भाई कि आज रामायण पाठ का दिन बाटे, तो भैया विद्यानंद त्रिपाठी जी रामायण का पाठ करता है, अर्थात समझावत बतावत है, वो का सुने गुने भाई।
4: सी राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। समस्त संसार को सीता राम में जानकर करपद प्रणाम करते हुए इस राम कथा प्रसंग में सबका अभिनंदन है। श्री राम अखिल ब्रह्मांड नायक, सर्वांतरात्मा, पर ब्रह्म परमेश्वर, करुणा वरुणालय, निखिल रसामित मूर्ति, जानकी हृदयेश्वर, कौशल्यानंद वर्धन, दशरथ नंदन, अपितु मर्यादा पुरुषोत्तम है। श्री राम अर्थात जो सब में रमण करता है, जिसमें संपूर्ण संसार रमण करता है और जो सतराचर को रमणीय बनाता है। राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, सर्व रहित सब उर पुरवासी, सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवध पति सोई। जगत प्रकाश प्रकाशक रामु, मायाधीश ज्ञान गुण धामु। समस्त संसार को जिस प्रकाश की अपेक्षा है, श्री राम उसी दिव्य प्रकाश के माध्यम से माया रूपी घोर अंधकार को नियमन ज्ञान और गुणों के आलोक में करते हैं। संसार दुखमय है, राम आनंद सिंधु सुखरास एवं त्रैलोक को सुव्यवस्था के पोषक हैं।

विश्राम प्रदान करते हैं। जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक सुपासी, जो सुख धाम राम अरुनामा अखिल लोक दायक विश्रामा। राम दीन बंधु अधम उधारक अकारण दयालु और उन्हें दीन दुखी एवं खिन्न प्राणी परम प्रिय है। गिरा रथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदौ सीता राम पद जी है परम प्रिय खिन्न। राम आदर्श पुरुष है, वे आदर्श हितैषी है, उनके जैसा हितैक्ष गुरु माता पिता बंधु और स्वामी भी नहीं हो सकते। उमा राम समहित जग माही, गुर पितु मातु बंधु प्रभु नाही। सुग्रीव बंधुवर वाली के भय से लक्ष्य था त्रस्त था, रात दिन चिंतातुर रहता था, अपने अस्तित्व के लिए संघर्षरत था, किंतु राम ने उसे मित्र बनाकर अपनी दयालुता से उपकृत किया एवं समस्त बानर साम्राज्य का अधिपति बना दिया। बाली त्रासी व्याकुल दिन राती, तन बहु बन चिंता जर जाती। सोई सुग्रीव कीन कपिराऊ, अति कृपाल रघुबीर सुभाऊ। अहल्या पति देव गौतम ऋषि के साथ से पत्थर बन गई। पतित पावन राम ने मिथिला प्रमाण के प्रयाण के ब्याज से उसका उद्धार किया। पर सत पद पावन सोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक, सनमुख होई कर जोरी रही। एहि भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी। जो अति मन भावा सो बरु पावा, गए पति लोक आनंद भरी। अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल। तुलसीदास सठ तहि भजु, छाणी कपट जंजाल। राम मानवता के पोषक हैं, वे दीन दुखियों को मानवता की ओर प्रेरित करते हैं, उन्हें मनुष्यता प्रदान करते हैं। केवट ने राम के इस गुण धर्म को पहचान प्राप्त की और संसार के समस्त प्राणियों को जागृत किया। चरण कमल रज कहु सब कहई, मानुष करनि मोरी कछु अहई। पाशविकता से मानवता की प्रेरणा के लिए राम प्रसिद्ध हैं। रावण पाशविकता को प्रतिष्ठापित करता है, अपने मामा मारीच को वह पशु बनने के लिए बाध्य करता है, छल कपट के शर्त में धकेलता है। हो हु कपट मृग तुम छलकारी, जहि विधि हरिया नौ नृप नारी। जाहु भवन कुल कुशल विवारे, सुनत जरा दीन सी बहुगारे। उभय भांति देखा निज मरना, तब ताके सी रघुनायक सरना। राम के साथ युद्ध में नित्य पराजय के पश्चात आघात से व्याकुल रावण अपने अनुज कुंभकर्ण को जगाया। कुंभकर्ण रावण को उदास एवं हताशा का कारण पूछा। रावण ने उसे सप्रसंग सीता हरण एवं राम से युद्ध का वृत्तांत सुनाया। कुंभकर्ण इस दारुण वृत्तांत से हतप्रद हो गया और उसने रावण को खरी खोटी सुनाई। सुनि दस कंधर बचन तब कुंभकर्ण बिलखान, जगदम्बा हरियाणी अब सठ चाहत कल्याण। भलन कीन्हीं तय निसि चरनाहा, अब मोहि आई जगाय ही काहा। अह बंधु तय कीन्हीं खोटाई, प्रथम ही मोहिन सुनाय ही आई। रावण चिंतित हो गया। विभीषण की भांत कुंभकर्ण की आदर्श मूर्ति राम के प्रति अनन्य विनम्रता का भाव रखता है, यह उसके उद्देश्य की पूर्ति में बाधक है। उसने कुंभकर्ण की पाशविक दानवता को जागृत करने का उपाय करने में तनिक भी विलम्ब और संकोच नहीं किया। उसने करोड़ों घड़ी मंदिरा और अनेकों भैंसों का मांस कुंभकर्ण के लिए परोसने के लिए आदेश दिया। उसकी आज्ञा का तत्काल अनुपालन हुआ। आदर्श का उपदेशक कुंभकर्ण अपने अग्रज की प्रेरणा से मदिरापान मांसाहार स्वीकार कर मानवता के विरुद्ध युद्ध के लिए तत्पर हो गया। राम रूप गुण सुमिरत मगन भयउ छन एक, रावण मांगउ कोटि घट मदयरु महिष अनेक। महिष खाई कर मदिरापाना, कर जाघात समाना। कुंभकर्ण दुर मदरन रंगा, चला दुर्ग तज सेन संगा। ठीक इसके विपरीत श्री राम अभिषेक भोजी अधर्म पक्षी गीत को पिता का आदर प्रदान करते हैं, परोपकार के लिए अपना बलिदान अपने प्राणों सर को भी तुच्छ मानने वाले गीधराज को श्री राम तात रूप में संबोधित करते हुए यह

विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि श्री राम ने सर्वत्र गिरधराज को तात अर्थात पितृवत आदर दिया है। उन्होंने पूर्ण काम कहा है, राम कहा तनु राखहु ताता, जल भरि नयन कहहि रघुराई, तात कर्म निज ते गति पाई, तनु तज तात जाहु मम धामा, देहु काह तुह पूरन कामा, सीता हरन तात जन कहउ पितासन जाय, जो मैं राम त कुल सहित कहिय दशानन आय।

तात जन कहऊ पितासन जाय, जो मैं रामत कुल सहित कहिय दसानन आय। अपने पिता की सेवा से वंचित राम गीध से अपने पितृ सुख और उन्हें पुत्र सेवा सुख हेतु जीवित रहने का आग्रह करते हैं। मेरे जान तात कछु दिन जी जय, देखिए आप सुनन सेवा सुख, मोहि पितु को सुख दी जय। गीधराज ने मृत्यु का वरण किया, राम ने उनका श्राद्ध किया और कृतज्ञता पूर्वक अविरल भक्ति प्रदान की। अविरल भगत

0: राम का आग्रह निर्मल जीवन, निष्कपट निश्चल छंद रहित जीवन के लिए लिए है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। श्री राम ने युद्ध में प्राणहुति देने वाले भालु बंदरों के साथ ही राक्षसों को भी मोक्ष प्रदान किया। ऋषि मुनि को भी अप्राप्त है। राम सरिस को दिन हितकारी, किन्हे मुकुट निसाचर झारी। खलमल धाम कामरत रावन, गति पाई जो मुनिवर पावन। अयोध्या वासियों ने को संबोधित करते हुए श्री राम मानव शरीर को लोक और परलोक दोनों का साधन और देवत्व से सभी श्रेष्ठ निरूपित किया। बड़े
1: अपन जो दिखाए रामायण पाठ रहा विद्यानंद त्रिपाठी भैया का, और एक बात पंचों और कहा ही कहा कि भाई खेती किसानी के साथ साथ अपने स्वास्थ्य का, पशु और पराइन का स्वास्थ्य का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, अच्छे से रहें, खेती किसानी बढ़िया हो, अच्छा लाभ हो। अच्छा पंचो, राम राम।

अभी ग्रामीण भाई सुन रहे थे अपना कार्यक्रम पंचायत घर, आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

0: और वही के माध्यम से भैया हम अपने जो बैंक है वह से ले लेते हैं कर्जा, और जब फसल हो जाए तो बेचो और समय से कर्जा चुकाओ भैया।
1: हम पंच जो उनसे धरधर हाथ फैलाई थे, कभो कभो ऐसा हुआ था कि समय पे कर्जा भी नहीं मिल पावत है, और जो मिलता है उसका जो ब्याज रहा था इतना ज्यादा रहा था कि जितना हम पंच ले नहीं ना उससे ज्यादा अदा करे पड़ जाता है। मूल ई योजना जब से चली है तब से जो है बहुत कम ब्याज दर पर हम पंचन का इसे कर्जा मिल जाता है। जब भी हमें जरूरत हुए कर्जा ले लीन जाए और अपन फसल बेच के जो है ओके समय पे हम पंच अदायगी जब कर दी थे तो अपन जो उन अतिरिक्त जो उन पैसा जाते है वो बहुत कम जाते है।
0: और देखो अगर हम सबका जानकारी रहा था ना तो यू खेती करम बहुत आसान हो जाता है। तो जान लेन जाए आज के खबरें।
2: उत्तर प्रदेश में किसानों और कृषि क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए बड़ी खबर है। राज्य कृषि विकास योजना के तहत राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति ने कुल 286 करोड़ 46 लाख रुपए की कृषि परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इनमें चालू वित्तीय वर्ष 2000

0: 2026-27 की नई परियोजनाओं के लिए 185 करोड़ 33 लाख रुपए, जबकि पहले से चल रही परियोजनाओं को पूरा करने के लिए 101 करोड़ 13 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इन परियोजनाओं के तहत सरकारी कृषि केंद्रों का आधुनिकीकरण, उन्नत कृषि यंत्र, सिंचाई नलकूप और जल निकासी व्यवस्था विकसित की जाएगी। इसके अलावा मृदा परीक्षण और एकीकृत कीट प्रबंधन प्रयोगशालाओं को मजबूत करने, कृषि यंत्रीकरण और प्रशिक्षण, औद्यानिक विकास, मत्स्य बीज उत्पादन और बीज भंडारण क्षमता बढ़ाने पर भी जोर दिया जाएगा। मुख्य सचिव SP गोयल ने अधिकारियों को सभी परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा में पूरा करने, गुणवत्ता और वित्तीय अनुशासन बनाए रखने और स्वीकृत धनराशि का 100% उपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। सरकार का उद्देश्य इन परियोजनाओं के जरिए कृषि क्षेत्र को आधुनिक बनाना और किसानों तक योजनाओं का अधिकतम लाभ पहुँचाना है।
1: सरला बहनी,
2: हाँ रियाज भैया,
1: देखो ये जो अपन खरीफ की फसलें चल रही हैं, तो इमा हम पंच मक्का का भी खेती कर रहे हैं।
2: हाँ बिल्कुल कर रहे हैं भैया, आपका हाँ। देखभाल भी बहुत जरूरी है।
1: तो कहे ना आज की बातें सुन ली।
3: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, जहाँ खरीफ मक्का आपके खेत में है, तो इस समय सामयिक प्रबंधन में क्या कुछ करें, इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं फसल वैज्ञानिक डॉक्टर अमरीत सिंह यादव साहब। स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि जहां खरीफ मक्के की फसल खेत में है, तो इस समय सामयिक देखभाल में क्या कुछ करें किसान भाई बहन।
4: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, इस समय जो खेत में आपकी फसल खड़ी हुई है, तो जिन क्षेत्रों में वर्षा अधिक हुई है और जिसके कारण से जल भराव हुआ है, तो सर्वप्रथम वहाँ पर जो अतिरिक्त जल है उसको निकाल दिया जाए। इसके अलावा तो यदि समय से बोई गई फसल है, तो वहाँ पर खड़ी फसल में उर्वरक का प्रयोग करना है, जिसमें 1 एकड़ में लगभग 33 किलोग्राम नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, जिसके लिए 33 किलोग्राम यूरिया 1 एकड़ के लिए पर्याप्त है। यदि आपके पास नैनो यूरिया उपलब्ध है, तो उसके लिए एक बोतल 250 ml की 1 एकड़ के लिए पर्याप्त है, उसका आप छिड़काव भी कर सकते हैं।
3: डॉक्टर साहब, जहां देर से मक्के की फसल बोई गई है, तो वहां पोषक तत्वों का प्रबंधन कैसे करें किसान भाई बहन?
4: अगर घुटने तक उसकी हाइट हो रही है, तो वहां पर नित्रजन की 1/3 मात्रा लगभग 33 किलोग्राम नित्रजन पर्याप्त है 1 एकड़ के लिए। यदि उनकी लंबी अवधि की फसल है, कम अवधि की फसल है, तो वहां पर वो 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया का प्रयोग कर सकते हैं।
3: डॉक्टर साहब, क्या सूक्ष्म पोषक तत्वों की भी आवश्यकता है?
4: अगर खेत की तैयारी के समय जिंक का उपयोग कर दिया गया है बेसल ड्रेस के रूप में, तो आवश्यकता नहीं है। अगर कमी है और उसके लक्षण दिखाई दे रहे हैं, कत्थई रंग के धब्बे पौधों पर, तो उसके लिए जिंक सल्फेट का छिड़काव कर सकते हैं, जिसके लिए 2.5% का घोल बना करके छिड़क दे। उतनी मात्रा में आप बुझा हुआ चूना ले लें और दोनों को मिला करके छिड़काव कर सकते हैं। जनरली 150 लीटर से लेकर के 200 लीटर पानी की आवश्यकता होती है।
3: डॉक्टर साहब, बहुत सारे बिन बुलाए मेहमान खेत में उगाते हैं, तो खरपतवारों का प्रबंधन कैसे हो खरीफ मक्के में?
4: इसके लिए चौड़ी पत्ती और सकरी पत्ती के खरपतवार दोनों ही होते हैं, तो यदि आपने उस समय खेत की बुआई के बाद आपने अगर पेंडी मेथिलीन का प्रयोग कर दिया है और समय से बुआई की हुई है, तो अब जो अवस्था है उस अवस्था में आप एक निराई गुड़ाई ही कर सकते हैं
3: जी।
4: और यदि आपने देर से बोया है, तो उस अवस्था में मतलब अगर 25 से 30 दिन की आपकी फसल है, तो वहाँ पर टोपरा मेजोन या टेम्बोट्राइन जो रसायन है, इसका भी उपयोग किया जा सकता है खरपतवार को नियंत्रण के लिए,
3: और इसका प्रयोग 20 से 30 दिन की अवस्था पर ही कर सकते
4: जी।
3: डॉक्टर साहब, क्या मिट्टी चढ़ाना भी फायदेमंद होगा?
4: जी हाँ बिल्कुल, मिट्टी चढ़ाने से आपकी जो वर्षा का पानी है वो जड़ों में नहीं लगता है, और हवा तेज चलती है उससे गिरने से बचाव के लिए भी मिट्टी चढ़ाना बहुत ही लाभदायक रहेगा, और उसके लिए मिट्टी पड़ने वाले हल से जो है आप जुताई करके उसको, तो उसमें मिट्टी चढ़ जाएगी फसल के ऊपर।
3: डॉक्टर साहब, इस समय फसल सुरक्षा महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई तरह के हानिकारक कीट और बीमारियों का प्रकोप इस समय हो रहा है।
4: बिल्कुल
3: डॉक्टर साहब, बीमारियाँ कौन कौन सी हैं?
4: मक्का में प्रमुख रूप से तुलसीता रोग, गुलाबी उकटा रोग और पत्तियों का झुलसा रोग प्रमुख है। इससे सावधानी के लिए सर्वप्रथम तो आप जब प्रयोग कर रहे थे बीज का, तो हमको उन प्रजातियों का चयन करना चाहिए जो रोग प्रतिरोधी हो। यदि किसी के कारण से नहीं कर पाए हैं, बीजों की उपलब्धता नहीं हुई है, तो इस अवस्था में अगर आपके फसल पर रोग का प्रकोप दिख रहा है, तो डाइथेन Z78 या जिनेब की 2.5 से 4 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल करके और 8 से 10 दिन के अंतराल पर इसका छिड़काव करें। यदि बीमारी का प्रकोप हर वर्ष हो रहा है, तो इसके लिए प्रतिरोधी किस्मों का चयन करना चाहिए। गुलाबी उकटा के लिए बाविस्टीन या कैप्टन के अलावा जैसे वैलिडीमाइसिन

0: जो दवा है 2.5 मिलीलीटर की मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल के छिड़काव करना चाहिए हरी फसल
1: अच्छा,
0: में।
1: वेलिडामाइसिन।
0: जी हाँ,
1: डॉक्टर साहब, जहाँ पत्तियों का झुलसा रोग आता है वहाँ?
0: वहाँ ब्लीचिंग पाउडर आता है 33% का, उसका प्रति एकड़ के घोल बना करके मृदा को उपचारित करना चाहिए।
1: डॉक्टर साहब, जो हानिकारक कीट हैं उनमें ज्यादातर आजकल फॉल आर्मी वर्म का प्रकोप हो रहा है, कहीं कहीं तना छेदक कीट का भी प्रकोप हो रहा है।
0: जी हाँ, इसके लिए जैविक प्रबंधन और रासायनिक प्रबंधन दो विधियाँ हैं। तो सर्वप्रथम हमको जैविक प्रबंधन करना चाहिए कि जब कीट दिखाई दे उसकी संख्या के हिसाब से हमको पहले जैविक प्रबंधन करना है। तो बुआई के 15 दिन बाद 1 एकड़ क्षेत्रफल में 3 ट्राइकोकार्ड रख दें और उसकी निगरानी करते रहें, फसल में
1: यानी उसको काट करके जगह जगह लगा दें।
0: पत्तियों में स्टेपल कर दें उसको।
1: ट्राइको कार्ड।
0: जी, अगर फॉल आर्मी वर्म का प्रकोप आपको दिख रहा है तो उसके लिए 5% ये नीम का तेल आता है, उसका भी छिड़काव कर सकते हैं। 5 मिलीलीटर की मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। इसके अलावा ट्राइकोग्रामा है या टेलिनोमस रेमुस है, इसकी 50,000 से 10,000 की संख्या का जैविक कार्ड आता है, उसको पत्तियों में उसको लगा देना चाहिए।
1: प्रति एकड़
0: जी हाँ
1: ट्राइको कार्ड या टेलिनोमस रेमोस,
0: जी,
1: ये भी एक तरह का कार्ड होगा।
0: जैविक प्रबंधन के लिए।
1: अगर नुकसान का स्तर अधिक है जहां फॉल आर्मी वर्म का वहां?
0: वहाँ पर रसायन का संचित की जाती है, इसके लिए स्पाइनोटोरम 11.7%, इसकी 0.5 मिलीलीटर की मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल करके इसका छिड़काव करें।
1: यानी स्पाइन टोरम आधा ml दवा 1 लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव करें।
0: जी हाँ,
1: इसके अलावा
0: इसके अलावा लैम्डा साई हेलोथिन 9.5% की 0.25 मिलीलीटर प्रति लीटर की पानी में घोल के छिड़काव करें, अथवा थाई मेथॉक्साम 12.5% की दवा का भी हम चयन कर सकते हैं।
1: और इसकी कॉम्बिनेशन में भी दवा आती है, उसका भी प्रयोग कर सकते हैं।
0: जी हाँ,
1: डॉक्टर साहब, जहाँ तना छेदक प्ररोह मक्खी या पत्ती लपेटक कीट की समस्या है वहाँ?
0: इस अवस्था पे जैसे दीमक एक प्रमुख कीट है, जहाँ हल्की मृदा होती है तो वहाँ पर दीमक का
1: बलुई
0: प्रकोप,
1: दोमट।
0: बलुई दोमट, तो उसके लिए बेवेरिया बेसियाना 2 से 3 किलोग्राम पाउडर को 100 से 200 किलोग्राम गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट में मिला करके इसको 1 एकड़ में छिड़काव कर दें। या अगर आपके खड़ी फसल में दिख रहा है और आपके पास जैविक उपचार नहीं संभव है तो आप रसायन में जा सकते हैं, तो क्लोरपायरीफास दवा सिंचाई पानी के साथ में आप मिला सकते हैं इसको 1 से 1.5 लीटर प्रति एकड़ की दर से।
1: डॉक्टर साहब, किसान भाइयों बहनों के मन में अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे खरीफ मक्के की फसल में सामयिक प्रबंधन के बारे में। अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
0: 700-7840-421, 700-7840-421, 778-40-421।
1: चलते चलते और क्या आह्वान करना चाहते हैं किसान भाइयों बहनों का खरीफ मक्के की फसल में सामयिक प्रबंधन के बारे में? डॉक्टर साहब,
0: सर्वप्रथम खेत में जल का जमाव ना होने दें, आवश्यकता से अधिक नाइट्रोजन का प्रयोग ना करें, और कीटनाशक रसायनों का प्रयोग तभी करना चाहिए जब आर्थिक क्षति स्तर से ऊपर निकल जाए, और कीटनाशक रसायनों को नंगे हाथों से ना छुएं व शरीर पे ना लगने दें। इसके अलावा किसान भाइयों को ये ध्यान रखना है कि 1 एकड़ में लगभग 8 से 10 प्रति एकड़ की दर से जो है पक्षियों के बैठने के अड्डे बना दें, जिससे कि वो कीट जो जो फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो पक्षी जो है चिड़िया है वो आएंगे और हानिकारक कीटों को वो खा लेंगे।
1: डॉक्टर अमरीत सिंह यादव साहब, आज आप कार्यक्रम में आए और खरीफ मक्के की फसल में सामयिक प्रबंधन क्या कुछ करें किसान भाई बहन, इसके बारे में आपने ढेर सारी जानकारी दी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
3: उतला बोल रहे
2: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
3: मतलब
2: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ,
3: पर हम तो सभी डाले हैं।
2: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, पर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
3: सच है?
2: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
3: ठीक है भाई, मैं भी आज तो जैविक खेती शुरू करूंगा।
4: माटी से प्रेम।

0: की परंपरा है परंपरागत खेती।
1: रियाज भैया,
2: हाँ सरला भैया,
1: मेहनत जब करा था सबसे जरूरी है मनोरंजन है, अपन जो शरीर है मन है वो आनंद से भर जाता है।
2: बिल्कुल, कहे से कि जब कोनो संगीत सुना जाते है तो जो हम पंच काम करत रही थे वह और मन लागत है और अपन काम जो है और बढ़िया ढंग से हो चला जाता है।
1: तो कहे न भैया, सुन ले जा यू खमटा गीत शंकर यादव और साथी के स्वर में है तो सुना जाए।

0: सरला बहनी।
1: हाँ भैया।
0: देखो अपने एक कार्यक्रम में हम पंच कुछ ऐसे किसानन के बुलाए थे कि जोन अपनी खेती पाती में बहुत अच्छा कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं, तो कहे ना आज के किसान में जोन अपने किसान भाई आए हैं उनके बात सुन ली जाए।
2: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, आज हमारे साथ एक ऐसे युवा किसान हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, लखनऊ जनपद के मोहनलालगंज ब्लॉक के गौरा गाँव के शुभम द्विवेदी भैया, स्वागत है कार्यक्रम में। भैया ये बताएं कि आप शिमला मिर्च की खेती, सीडलेस खीरा की खेती के लिए जाने जाते हैं, ये बताएं कि आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुई, इस तरह की खेती से जुड़ा हुआ कब से?
3: मेरी जो पढ़ाई है वो हम इलाहाबाद एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट से कंप्लीट की है, जिसमें हमने शुरू से ही कृषि बोर्ड और स्नातक परास्नातक में बीएससी एग्रीकल्चर और एमबीए एग्री बिजनेस किया, जो कि शुरू से मेरा उद्देश्य था कि जो हमने शिक्षा ग्रहण की है अपने ही गांव में जाके इसी शिक्षा से रिलेटेड कुछ उद्योग किया जाए। शुरू से पहले मैंने पाली हाउस लगवाया जो कि मेरा आधे एकड़ का है, उसमें हम लाल रंगीन शिमला मिर्च की खेती करते हैं और खुले में 2 एकड़ में हरी शिमला मिर्च की खेती करते हैं और 1 एकड़ में सीडलेस खीरा जिसको बोलते हैं उसकी खेती करते हैं।
2: तो आपने कहा कि आधा एकड़ का पाली हाउस है, आपके पास नेट हाउस भी है?
3: नेट हाउस है जिसमें हम खीरे की खेती करते हैं 1 एकड़,
2: यानी सीडलेस खीरा।
3: सीडलेस खीरा।
2: तो इस समय कौन कौन सी फसल आपके पाली हाउस में है?
3: हमारे पास पाली हाउस में लाल पीली शिमला मिर्च की रुपाई का समय चल रहा है जो कि हमने अगस्त में मैंने रुपाई की हुई है। अब ये पौध हमारी लगभग 60 दिन के बाद फूल और फल की वृद्धि में बदलेगा, फिर वही 90 दिन में हमारा रंगीन शिमला मिर्च का माल निकलना चालू होगा।
2: आपने क्या नर्सरी खुद तैयार की, कहीं से नर्सरी लेकर के रुपाई की?
3: नर्सरी हम खरीद मतलब लेके रुपाई करते हैं, उनको बीज देते हैं नर्सरी वाले जहाँ पे उनका स्ट्रक्चर लगा होता है, तो वो बीज से करके हमको पौधा देते हैं तो हम रुपाई करते हैं।
2: तो कोई खास वैरायटी रंगीन शिमला मिर्च की है?
3: इसकी अलग वैरायटी आती है जिसमें पीले में जो है हमारा डब स्टेप नाम से आता है और लाल हमारा जो आता है वो हमारा बचाटा के नाम से आता है।
2: इसकी खासियत क्या महसूस कर रहे हैं आप?
3: इस वैरायटी में जो फल की आकृति है वो बहुत अच्छा बनता है, कलर अच्छा आता है और पैदावार बहुत अच्छी होती है इस वैरायटी में।
2: और जो खुले में 2 एकड़ आप हरी शिमला मिर्च करते हैं उसकी कौन सी वैरायटी चुनते हैं?
3: उसकी हरी शिमला मिर्च की वो अलग वैरायटी है जो कि अभी हमने जो लगाई हुई वो आशा वैरायटी है, इंदिरा वैरायटी है, ये हम लगाते हैं।
2: तो उसकी रुपाई कब तक करेंगे?
3: रुपाई उसके 15 सितंबर में करेंगे।
2: खड़ी फसल में कौन कौन सी देखभाल करते हैं, जहां पाली हाउस में है और जहां खुले में है, दोनों में?
3: पौधा रोपण करने के बाद मेन जो उसमें खेती में देखना होता है कि पौधे में कोई भी कीड़ा कोई भी कीट जो ना हो उसको हम लोग ध्यान में रखते हुए हैं, पौधे में नमी उसके साथ में क्या क्या उसको खाद देनी है। जब छोटा पौधा लगाते हैं तो उसको 15 दिन हमारी जो प्रैक्टिस होती है पर पौधे में ही खाद पानी उस पर ही हम लोग मशीन से देते हैं,
2: यानी फर्टिगेशन,
3: फर्टिगेशन बोल सकते हैं उसको। और फिर जब पौधा में जड़ विकसित हो जाता है, तना विकसित हो जाता है, पौधा 20 से 25 दिन का मजबूत हो जाता है, तब उसको हम लोग ड्रिप के थ्रू उसमें फर्टिगेशन करते हैं।
2: और रोग दोख और कीड़ा से बचाव के लिए?
3: रोग दोख कीड़ा से बचाव के लिए समय समय पे स्प्रे कराना होता है, वो हम चाहे वो हमारा उसमें कीट का लगा हो या कोई फंगस लगा होता है उसको हमको प्रॉपर देख रेख करनी होती है सुबह शाम।
2: और जहाँ खुले में आप शिमला मिर्च करते हैं तो वहाँ तो आपको विशेष सावधानी की जरूरत पड़ती
3: है? उसमें विशेष सावधानी ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि वो खुले में है और खुले के तापमान में थोड़ा कीटों का प्रकोप ज्यादा होता है, तो उसमें ज्यादा ध्यान देना होता है।
2: और अंतरण क्या रखते हैं उसका?
3: पौधे का पौधा जो दूरी होती है हरी शिमले की वो आती है 30 सेंटीमीटर से 35 सेंटीमीटर, और जो दूसरा पौधा का दूरी होती
2: लाइन
3: है लाइन से लाइन की जो दूरी होगी वो हमारी 1 फीट आती है 30 सेंटीमीटर।
2: और जो पाली हाउस में करते हैं उसका अंतरण?
3: उसमें जो दूरी होती है वो पौधे की पौधे दूरी 45 सेंटीमीटर होती है और जो पौधे की जो लाइन से पौधे की दूरी होती है वो 35 सेंटीमीटर होती है।
2: खड़ी फसल में जो खुले में आप शिमला मिर्च करते हैं तो फसल की भूख मिटाने के लिए प्रति एकड़ कितनी खाद की मात्रा देते हैं, उर्वरक की मात्रा देते हैं?
3: 30 दिन के बाद जैसे फर्टिगेशन चालू करते हैं ग्रेड के हिसाब से फल के हिसाब से हमको उसमें देनी पड़ती है।
2: तो ये काम तो आप पाली हाउस में करते हैं?
3: सेम पाली हाउस में और खुले हरी शिमला मिर्च में दोनों में ही करना होता है क्योंकि पेड़ वही हैं, बस उसमें वैरायटी का अलग है, पैदावार उससे भी लेना है, पैदावार उससे भी लेना है। ड्रिप पे टपक विधि के थ्रू सिंचाई है, करने का तरीका वही है, सेम मशीन सेम खाद हम उसी से पूरा चलाते हैं, पाली हाउस नेट हाउस और ओपन में।
2: पहली फलत कब तक मिलने की संभावना है?

0: हाउस में।
1: पाली हाउस में पहली फलत जो हमारी आती है, जैसे मैंने 10 अगस्त को इस सीजन का रोपाई किया है, तो हम यहाँ से 80 दिन का जोड़ के चलेंगे, तो हमारा वही 10-15 से 10 नवंबर, वही मिड नवंबर जिसको बोलते हैं मध्य नवंबर, उसी में हमारा माल निकलना चालू होगा।
0: उस समय आपको भाव अच्छा मिलेगा,
1: सहलक चल रही होती हैं और भाव भी अच्छा रेट रहेगा उस टाइम।
0: और जो खुले में शिमला मिर्च है।
1: खुले की शिमला मिर्च की जो उसकी पैदावार की जो तौड़ाई है वो हमारी आती है 65 से 70 दिन की, उसकी थोड़ा सा 15 दिन पहले आती है,
0: यानी अक्टूबर के लास्ट में,
1: अक्टूबर के लास्ट में।
0: एकड़ पीछे आंकड़ा देखें, जो खुले में आप हरी शिमला मिर्च कर रहे हैं उसकी एकड़ में क्या लागत गिरती है, उत्पादन कितना ले लेते हैं और आपका मुनाफा कितना होता है, साथ में जो आधा एकड़ की संरक्षित खेती है रंगीन शिमला मिर्च की, उसमें एक साल की लागत क्या गिरती है, उत्पादन कितना तक ले लेते हैं और आपका मुनाफा होता कितना है।
1: संरचित खेती का जो हमारा पूरा एक एवरेज रेट निकलता है, क्योंकि देखिए निकलता माल स्टार्ट होता है तो 70 रुपये से लेकर 200-300 भी जाता है, लेकिन साल का आता है हमारा 80 रुपये का एवरेज, और 10 टन लगभग मेरा माल पूरी कोशिश रहती है निकाल लें, जिससे
0: यानी सौ
1: हमारा
0: कुंतल
1: 100 क्विंटल लगभग
0: पाली हाउस से
1: पाली हाउस से।
0: और खुले में।
1: खुले में हमारा वो निकल जाता है जितने निकलना चाहिए, तो 50 टन, लेकिन हर साल अभी 2-3 साल से 35 से 40 टन निकलता है,
0: यानी 400
1: एक एकड़
0: कुंतल
1: 400 क्विंटल
0: साल में।
1: साल में।
0: तो खर्चा
1: खर्चा संरक्षित खेती का जो हमारा आता है वो उसको 6, क्योंकि वो फसल अगस्त से चल के मई तक चलती है, तो वो 8 से 9 महीने की फसल है, तो उसके सारे खर्चे हमारे जो आते हैं वो 3 से 3.5 लाख रुपए आते हैं, और जो कि हमने बताया 10 टन 80 रुपए का एक एवरेज पकड़ते हैं, तो हमारा बड़े आराम से 8.5 से 9 टन का माल निकल जाता है, जिससे 3.5 लाख रुपए हम लागत भी हटा देते हैं, तो पाली हाउस से बड़े आराम से बचत बचत हमारा 5-5.5 लाख का हो जाता है।
0: और खुले में जो शिमला मिर्च
1: खुले का जो एकड़ का है वो कम से कम शुरुआत के समय में और आखिरी, वो भी लंबी फसल है क्योंकि सितंबर से लग के मई तक चलती है, 8 से 9 महीने की 7 महीने की फसल है, तो उसमें भी एकड़ का 2 लाख का खर्चा आता है, और उसकी जो एवरेज रेट होती है वो कम होती है, एवरेज रेट 20 का हम लेके चलते हैं, और हम 40 टन भी निकालते हैं, और 2.5 से 3 लाख खर्चा उसमें भी आता है, तो बड़े आराम से एकड़ पर 4 लाख बच जाता है।
0: यानी 4 दूनी 8 लाख 2 एकड़ में आपको बच जाता
1: जी
0: है,
1: जी
0: और 5-6 लाख रुपया संरक्षित खेती
1: संरक्षित खेती
0: से।
1: से जी।
0: तो आप संतुष्ट हैं?
1: हाँ, मैं पूरी तरीके से संतुष्ट हूँ।
0: जो अब तक का आपका तजुर्बा है उसके आधार पर और किसान भाइयों बहनों को क्या सलाह देना चाहिए?
1: किसान भाइयों बहनों को ये सलाह है कि आज के टाइम जो संरचित खेती में जो आधुनिकता आ रही है उसको अपनाएं, खेती हमेशा ड्रिप और मल्चिंग के थ्रू किया जाए, जो बहुत से किसान आज भी अनभिज्ञ हैं, वो बेडों पे पानी सीधा जो भर के करते हैं उसमें पैदावार भी कम मिलती है, फसल भी बहुत जल्दी खराब हो जाती है, जिसलिए उनकी आय और उनका पैसा निकल नहीं पाता है।
0: बहुत सारे किसान भाई बहन उत्सुक होंगे आपसे मिलने के लिए या आपसे बात करने के लिए, तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
1: मेरा मोबाइल नंबर है 80-90-88-72-82, 8090-88-7282।
0: शुभम द्विवेदी भैया, आज कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा,
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी,
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
6: सरला बहनी,
7: हाँ रे अजबी,
6: देखो अपन जोन खेती पाती है वो मौसम पर आधारित रहता है, और अगर हम पंच का मौसम की जानकारी रहता है तो उके प्रबंधन जोने हम पंच निकेतन से कर लिए थे।
7: भारत सरकार, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत मौसम विज्ञान विभाग, मौसम केंद्र लखनऊ के अनुसार आज यानी 8 तारीख से लेके 12 तारीख तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में संभाग में कुछ स्थान पर गरज चमक के साथ ही बरसात हो संभावना है। और भैया पूर्वी उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो यहाँ भी हर जगह लगभग बरसात हो संभावना है, और कहूँ कहूँ भैया भारी से भारी बरसात हो संभावना है।
6: अपन कार्यक्रम किस लागत है ई के बारे में चिट्ठी पाती के माध्यम से अवगत जरूर करावे, तो उके लिए पता है कार्यक्रम किसान वाणी।

द्वारा केंद्रीय निदेशक आकाशवाणी 18 विधानसभा मार्ग लखनऊ पिन कोड है 226001। इसके अलावा अपने पंच ईमेल के माध्यम से भी चिट्ठी पाती भेज सकते हैं, तो उके लिए पता है farmandhomeairlko@gmail.com। यही के साथ माँ घड़ी इशारा कर रही है कि अपने बैठकी के समय हो रहा है समाप्त, तो पंचन चलिन जाए आज्ञा। जय हिंद।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
1: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़, एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे लखनऊ केंद्र से। समाचारों के लिए कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: पंडित जवाहरलाल नेहरू का कथन है, लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, इससे ज्यादा ये महत्वपूर्ण है कि हम क्या हैं।

आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों का मानदेय 12,000 रुपये और सहायिकाओं का 6,000 रुपये प्रतिमाह करने का किया ऐलान। 5,00,000 रुपये तक कैशलेस इलाज की भी मिलेगी सुविधा। लखनऊ में 2 दिवसीय यूपी टेक्सटाइल कॉन्क्लेव 2026 का शुभारंभ। 5,196 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों के किए गए एमओयू। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी कल वाराणसी में करेंगी 9वें राष्ट्रीय पोषण माह 2026 का शुभारंभ। और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय में आयोजित यूपी स्टार्टअप संवाद कार्यक्रम में हुई शामिल। कहा, बदलते भारत में स्टार्टअप आज के समय की जरूरत। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अयोध्या में राज्य स्तरीय समारोह में नवनियुक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों और सहायिकाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इस अवसर पर श्री योगी ने आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों का मानदेय 8,000 रुपये से बढ़ाकर 12,000 रुपये और सहायिकाओं का 4,000 रुपये से बढ़ाकर 6,000 रुपये प्रतिमाह किए जाने की घोषणा की। उन्होंने कार्यकर्त्रियों, सहायिकाओं और उनके परिवारों को हर वर्ष 5,00,000 रुपये तक कैशलेस इलाज की सुविधा दिए जाने का ऐलान किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते 9 वर्षों में सरकार के प्रयासों का परिणाम है कि आज प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्र स्मार्ट हो चुके हैं और इनमें काम करने वाली महिलाएं सम्मानजनक मानदेय प्राप्त कर रही हैं। उन्होंने कहा कि बचपन अगर सुरक्षित रहेगा तो स्वस्थ और समर्थ भारत के

0: संकल्प को पूरा करेगा। उन्होंने कहा कि आंगनवाड़ी केंद्र विकसित भारत की संकल्पना का आधार बनेंगे।
1: बचपन अगर सुरक्षित रहेगा और स्वस्थ रहेगा तो यही स्वस्थ बचपन एक समर्थ और स्वस्थ भारत की संकल्पना को पूरा करेगा, और स्वस्थ और समर्थ भारत ही प्रधानमंत्री जी की संकल्पनाओं को पूरा करेगा, जो आत्मनिर्भर और विकसित भारत होगा। उसका आधार कोई बनने वाला है, हमारे आंगनवाड़ी केंद्र बनने वाले हैं।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में 2 दिवसीय यूपी टेक्सटाइल कॉन्क्लेव 2026 का शुभारंभ किया। इस कॉन्क्लेव का उद्देश्य उत्तर प्रदेश को वैश्विक वस्त्रोद्योग केंद्र के रूप में विकसित करना है। इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की टेक्सटाइल पहचान आज की नहीं बल्कि हजारों वर्षों की समृद्ध विरासत है। उन्होंने कहा कि यूपी टेक्सटाइल 2026 प्रदेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को एक नई दिशा प्रदान करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यूपी का मतलब है अनलिमिटेड पोटेंशियल। उन्होंने कहा कि प्रदेश के पास विरासत है, हुनर है, मानव संसाधन है, और दुनिया का सबसे यंग वर्कफोर्स भी हमारे पास मौजूद है। इसी ताकत के सहारे उत्तर प्रदेश को ग्लोबल टेक्सटाइल हब बनाना है। श्री योगी ने कहा कि विगत 9 वर्षों में सरकार ने उत्तर प्रदेश की समृद्ध विरासत को आधुनिक टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन और ग्लोबल मार्केट से जोड़कर एक नई इंडस्ट्रियल स्टोरी लिखी है।
1: कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार का सृजन करने वाला कोई सेक्टर है तो वह ये वस्त्र उद्योग का सेक्टर है। पिछले 9 वर्ष में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी समृद्ध विरासत को आधुनिक टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन और ग्लोबल मार्केट के साथ जोड़कर एक नई इंडस्ट्रियल स्टोरी लिखने की व्यवस्था भी यूपी के अंदर हम लोगों ने तैयार की है।
0: इस दौरान उन्होंने यूपी टेक मित्र पोर्टल लॉन्च करने के साथ हथकरघा बुनकर समृद्धि योजना का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में टेक्सटाइल सेक्टर में 5,196 करोड़ रुपए के नए निवेश प्रस्तावों के एमओयू साइन किए गए। इसके साथ ही 163 करोड़ रुपए के लेटर ऑफ कंफर्ट और 60 करोड़ रुपए की सब्सिडी का वितरण किया गया। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय की ओर से कल वाराणसी में 9वें राष्ट्रीय पोषण माह 2026 का शुभारंभ किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी अभियान की शुरुआत करेंगी। पेश एक रिपोर्ट।
2: वाराणसी में होने वाले शुभारंभ कार्यक्रम में पोषण मेले का आयोजन, दीप प्रज्वलन, लाभार्थियों के अनुभवों पर आधारित वीडियो प्रदर्शन तथा केंद्रीय मंत्री और आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों के बीच संवाद प्रमुख आकर्षण होंगे। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर और प्रदेश की महिला कल्याण, बाल विकास और पोषण मंत्री बेबी रानी मौर्य भी मौजूद रहेंगी। यह अभियान पूरे सितम्बर माह में देश भर के आंगनबाड़ी केंद्रों, विद्यालयों, पंचायतों और घरों में सामुदायिक भागीदारी के साथ संचालित किया जाएगा। इस वर्ष राष्ट्रीय पोषण माह की थीम हमारी आंगनबाड़ी हमारी जिम्मेदारी रखी गई है। पोषण माह 2026 में आहार विविधता और पर्याप्त प्रोटीन, आंगनबाड़ी केंद्रों पर ताजा गर्म पका हुआ भोजन, सामुदायिक स्वामित्व एवं जवाबदेही, पोषण और प्रारंभिक बाल विकास के लिए शिक्षा तथा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के 10 वर्ष पूरे होने को प्रमुखता दी जाएगी। वाराणसी से मनीष सिंह के साथ समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन EIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की उपस्थिति में आज डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय लखनऊ में यूपी स्टार्टअप संवाद 3.0 का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि ये कार्यक्रम विचार से अवसर तक, नवाचार से निवेश तक और प्रतिभा से उपलब्धि तक की यात्रा को गति देने का एक प्रयास है। उन्होंने कहा कि आज का भारत बदल रहा है और स्टार्टअप आज के समय की आवश्यकता है। राज्यपाल ने कहा कि इनोवेशन को केवल टेक्नोलॉजी तक सीमित नहीं रखना चाहिए। कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, जल संरक्षण, स्वच्छता, पर्यावरण और ग्रामीण विकास जैसे क्षेत्रों में भी इनोवेशन की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि स्किल इंडिया मिशन और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के माध्यम से युवाओं को उद्योगों की आवश्यकता के अनुरूप कौशल प्रदान किया जा रहा है। पूर्व मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के विधान परिषद सदस्य रहे मोहसिन रजा को उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष नामित किया गया है। इसके साथ ही 8 सदस्य भी नामित किए गए हैं। उत्तर प्रदेश शासन की

0: से आज इस संबंध में पत्र जारी किया गया। उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष मोहसिन रजा और अन्य सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। प्रदेश भर में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसी क्रम में लोक अदालत के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए जौनपुर, हमीरपुर, गौतमबुद्ध नगर सहित कई जिलों में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। कानपुर देहात में जिला जज रविन्द्र सिंह और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव नूपुर श्रीवास्तव ने हरी झंडी दिखाकर प्रचार वाहनों को रवाना किया। प्राधिकरण की सचिव नूपुर श्रीवास्तव ने लोगों से अधिक संख्या में लोक अदालत में पहुंचकर अपने वादों का निस्तारण कराने की अपील की।
1: लोक अदालत में ऐसे वाद जैसे वैवाहिक वाद होते हैं, बैंक वसूली ऋण वाले मुकदमे होते हैं, बिजली के बिल, पानी के बिल और किसी भी तरीके के सिविल वाद या शमनीय वाद जो होते हैं, जो सुलह समझौते से निपट सकते हैं, उसके लिए बिना किसी अधिवक्ता शुल्क, बिना न्याय शुल्क के जनता सुबह 10 बजे से 5 बजे तक न्यायालय आ सकती है।
0: राजधानी लखनऊ सहित आज प्रदेश के कई जनपदों में रुक रुक कर बारिश हुई। बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण प्रदेश में कई नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है। प्रदेश में 26 जनपद बाढ़ से प्रभावित हैं। सरकार ने राहत और बचाव कार्यों को तेज कर दिया है। उत्तर प्रदेश राहत आयुक्त कार्यालय के मुताबिक अब तक 6,83,000 से अधिक लंच पैकेट और 1,11,000 से ज्यादा बाढ़ राहत किट जरूरतमंदों तक पहुंचाए जा चुके हैं। वहीं 19,496 प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। बदायूं और बलिया में गंगा नदी, शाहजहांपुर में रामगंगा, लखीमपुर खीरी में शारदा और बाराबंकी, अयोध्या तथा तुर्तीपार में घाघरा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। फर्रुखाबाद में गंगा के बढ़े जलस्तर के चलते कई गांव बाढ़ की चपेट में हैं। जिलाधिकारी डॉक्टर अंकुर लाठर ने प्रभावित इलाकों का दौरा कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।
2: कल रात को भी कुछ कटान हुआ है, टोटल 38 जो घर हैं इस गांव में कटे हैं, तो उसी के संदर्भ में कुछ लोगों को यहां से बाढ़ डालने में मोबिलाइज किया गया है और जो दूसरे मजरे में हैं उनको राहत किट का वितरण किया गया और मेडिकल कैंप भी लगवाया गया है वहां पर।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों का मानदेय 12,000 रुपये और सहायिकाओं का 6,000 रुपये प्रतिमाह करने का किया ऐलान। 5,00,000 रुपये तक कैशलेस इलाज की भी मिलेगी सुविधा। लखनऊ में 2 दिवसीय यूपी टेक्सटाइल कॉन्क्लेव 2026 का शुभारंभ। 5,196 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों के किए गए एमओयू। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी कल वाराणसी में करेंगी 9वें राष्ट्रीय पोषण माह 2026 का शुभारंभ। और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय में आयोजित यूपी स्टार्टअप संवाद कार्यक्रम में हुई शामिल। कहा, बदलते भारत में स्टार्टअप आज के समय की जरूरत। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़, FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन AIR ऐप पर आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। संस्कृत कार्यक्रम में प्रस्तुत है डॉक्टर नीलेश मिश्र की वार्ता भारतीय संस्कृतौ नारिणाम स्थानम।
4: भारतीय संस्कृतौ नारीणाम स्थानम, स्त्रीणाम सम्मानास्पदत्वम वैदिक साहित्यस्यानुशीलनेन विज्ञायते यद वैदिक काले स्त्रीणाम स्थानम अतीव गौरवास्पदम आसीत। स्त्री, गृहिणी, गृहस्वामिनी, सहधर्मिणी इत्यादिभिः विशेषणैः संबोध्यते स्म। पत्नी रूपेण सा गृहस्वामिनी पदम अलंकरोत्। स्वसुर स्वस्रवादीषु तस्या अधिकारो मन्यते स्म। समाग्री स्वसुरे भव, समाग्री स्वस्रवां भव। ननांदरी समाग्री भव, समाग्री अधिदेवरीषु। जायेदस्तम जाया एव अस्तम गृहमित्यर्थः इति ऋग्वेदे प्रतिपाद्यते। एतदेव संस्कृतेपि समर्थ्यते यद

यहाँ आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हमारे कार्यक्रम न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 7:45 होने को हैं। पेश है हमारा कार्यक्रम सुगम संगीत। आज के कलाकार सुमधुर भाषणी तिवारी द्वारा गाया गया एक मधुर भजन पेश है।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। श्रोताओं, गीत जब केवल मनोरंजन न रहकर समाज की आवाज़ बन जाए, संगीत जब सरहदों को पार करके इंसान को इंसान से जोड़ दे और एक कलाकार जब अपनी आवाज़ में नदी, मिट्टी, मेहनतकश इंसान और पूरे समाज का दर्द समेट ले, तो वो कलाकार केवल कलाकार नहीं रहता बल्कि एक युग की आवाज़ बन जाता है। जी हाँ श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं महान संगीतकार, गायक, गीतकार और साहित्यकार भूपेन हजारिका जी की और उनकी संगीत यात्रा की। भूपेन हजारिका का जन्म आज के ही दिन यानी 8 सितंबर सन 1926 को असम के सादिया में हुआ। आज है उनका जन्मदिन। बचपन से ही संगीत उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गया। उन्होंने संगीत को केवल सुरों की सुंदरता के रूप में नहीं देखा, उनके लिए संगीत समाज से संवाद करने का माध्यम था। असमिया लोकधुनों, भारतीय शास्त्रीय संगीत और विश्व संगीत की विविध परंपराओं से प्रभावित भूपेन हजारिका ने अपनी अलग संगीत भाषा बनाई।

रुदाले फिल्म का गीत आपने सुना भूपेन हजारिका की आवाज़ में। गीत गुलजार का था और संगीत भूपेन हजारिका का था। श्रोताओं, भूपेन हजारिका की रचनात्मकता की सबसे खूबसूरत बात ये थी कि उन्होंने भाषा को कभी दीवार नहीं बनने दिया। उन्होंने असमिया में गाया, हिंदी में गाया और अपनी रचनाओं के माध्यम से देश के अलग अलग हिस्सों की सांस्कृतिक संवेदनाओं को जोड़ा। भूपेन हजारिका के गीत में लोक संगीत की शक्ति थी और आधुनिक समाज की बेचैनी भी। यही वजह है कि उनकी आवाज़ सुनते हुए हमें लगता है जैसे कोई अपना ही व्यक्ति अपने मन की बात कह रहा है। बहरहाल, आपको सुनवाते हैं दमन फिल्म का गाना जिसे गाया है अलका याग्निक ने। इसका गीत लिखा है माया सिंह ने और धुन बनाई है भूपेन हजारिका ने।

भूपेन हजारिका को उनके बहुआयामी योगदान के लिए अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिले। उन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण और दादा साहब फाल्के पुरस्कार सहित अनेक सम्मान से सम्मानित किया गया। मरणोपरांत भूपेन हजारिका को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी सराहा गया। श्रोताओं, लेकिन किसी कलाकार की असली पहचान केवल पुरस्कारों से नहीं होती। असली सम्मान तब मिलता है जब उनकी आवाज पीढ़ियों तक सुनी जाए, जब उसके गीत समय बीतने के बावजूद भी प्रासंगिक बने रहें और जब उसकी धुन सुनकर इंसान अपने आसपास की दुनिया को थोड़ा बेहतर बनाने के बारे में सोचे। भूपेन हजारिका इसी अर्थ में हमारे बीच आज भी जीवित हैं और हम यही कहेंगे, जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक भूपेन हजारिका जी को।

ये गीत है एक पल फिल्म का, जिसे गाया है उषा मंगेशकर, हेमवंती शुक्ला, भूपेन सिंह और भूपेन हजारिका ने। गीत गुलजार का है, संगीत है भूपेन हजारिका का।

आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से श्रोता सुन रहे हैं फिल्म संगीत। अब जो गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं उसे हमने लिया है फिल्म जुबैदा से। गायिका हैं कविता कृष्णमूर्ति, गीतकार जावेद अख्तर और संगीतकार ए आर रहमान।

कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवा रहे हैं रॉकी हैंडसम फिल्म का गाना, जिसे गाया है श्रेया घोषाल और इंदर बावरा ने। गीत मनोज मुहिंजिर का है और संगीत है सनी बावरा का।

रॉकी हैंडसम फिल्म के गाने के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। आप हमारे कार्यक्रम न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सबरस। कार्यक्रम के आरंभ में आपको सुनवाते हैं अनूप जलोटा के स्वर में ये भक्ति रचना।

भूपेंद्र और मिताली सिंह की गाई इस गजल के साथ ही सबरस कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स पर। थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे समाचार संध्या हमारे दिल्ली केंद्र से। कीजिए बस थोड़ा सा इंतज़ार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की फिनटेक यात्रा नई ऊंचाइयों पर पहुंच रही है। इसमें नवाचार और समावेशन को केंद्र में रखा गया है। मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने गुजरात में 35,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने कहा, चिप से लेकर जहाजों तक भारत विनिर्माण के एक नए भविष्य का निर्माण कर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन के श्रीलंका दौरे पर कोलंबो पहुंचे। यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच रक्षा और समुद्री सहयोग को और मजबूत करना है। रूस ने यूक्रेन संघर्ष को खत्म करने की भारत के शांति प्रयासों का समर्थन किया है। कहा, इस मुद्दे पर रूस का रुख भारत जैसा। बिहार, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, झारखंड, उड़ीसा और पूर्वोत्तर राज्यों में कल मूसलाधार बारिश की आशंका। और अहमदाबाद में विश्व पैरा तीरंदाजी में आज भारत ने 2 स्वर्ण सहित कुल 5 पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने अपनी फिनटेक यात्रा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। इसमें नवाचार और वित्तीय समावेशन को सबसे अधिक महत्व दिया जा रहा है। मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में उन्होंने कहा कि नई प्रौद्योगिकियां वित्तीय क्षेत्र में नई संभावनाएं खोल रही हैं।
1: 21वीं सदी का दूसरा क्वार्टर हमारे लिए और भी नई संभावनाओं लेकर आया है। एजेंटिक AI, टोकनाइजेशन, क्वांटम, ऐसी टेक्नोलॉजीज फाइनेंशियल सेक्टर में नई संभावनाओं के द्वार खोल रही है। अब हमारे सामने चुनौती है, इन संभावनाओं को वास्तविक इम्पैक्ट में कैसे बदले।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत साइबर सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहा है।
1: हमें भारत में साइबर सिक्योरिटी को टॉप नॉच बनाना है। हमारी इंडस्ट्री के पास अपने इथिकल डेटा प्रोटेक्शन स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। हमें एक मजबूत फिनटेक रेगुलेटर इंडस्ट्री इनोवेशन इकोसिस्टम बनाना है और हमारे पास एक फिनटेक कंज्यूमर प्रोटेक्शन इंडेक्स होना चाहिए, जिसके आधार पर हर कंपनी की पारदर्शी रेटिंग हो सके।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले महीने UPI के 2400 करोड़ से अधिक लेन देन हुए। भारतीय UPI अब 11 देशों में संचालित हो रहा है। श्री मोदी ने UPI को फिनटेक क्षेत्र की बड़ी

0: उपलब्धि बताया।
1: भारत की फिनटेक स्टोरी अद्भुत रही है और इसका एक बड़ा चैंपियन है हमारा यूपीआई। मैंने पिछले साल भी इसकी चर्चा की थी, लेकिन ये इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है कि जब भी फिनटेक की चर्चा होगी तो वो यूपीआई के बिना अधूरी ही होगी।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत की 7.8% की विकास दर दुनिया को एक नया भरोसा दे रही है।
1: दुनिया कॉन्फ्लिक्ट्स और अनसर्टेनिटी के दौर से गुजर

0: श्री मोदी ने कहा कि भारत की 7.8% की विकास दर दुनिया को एक नया भरोसा दे रही है।
1: दुनिया कॉन्फ्लिक्ट्स और अनसर्टेनिटी के दौर से गुजर रही है। एनर्जी और कमोडिटीज की सप्लाई चेन्स पर दबाव है, ट्रेड को लेकर भी तनाव है और ये स्थितियां कई महीनों से बनी हुई है। इसमें भी अप्रैल से जून का क्वार्टर सबसे चैलेंजिंग रहा और इसमें भी जब भारत 7.8% से ग्रो करता है तो दुनिया को एक नया भरोसा मिलता है।
0: प्रधानमंत्री ने बताया कि 3 दशक के लंबे इंतजार के बाद जापान ने भारत की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को BBB+ से बढ़ाकर A- कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। श्री मोदी ने पश्चिमी क्षेत्र के लिए विशेष माल ढुलाई गलियारे के 3 प्रमुख खंडों को राष्ट्र को समर्पित किया। इसके साथ ही माल ढुलाई गलियारे के संचालन का मार्ग प्रशस्त हो गया है। श्री मोदी ने कहा कि ये गलियारा विकसित भारत की जीवन रेखा है।
2: ये 21वीं सदी के भारत के लिए बहुत ऐतिहासिक कार्य संपन्न हुआ है। ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इस बात का साक्षी है कि बीते 12 साल में देश की काम करने की संस्कृति कैसे बदली है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में उभर रहा है और अब अपनी उन्नत रेलगाड़ी और मेट्रो कोच का निर्माण कर रहा है।
2: साथियों, अब भारत चिप से लेकर शिप तक निर्माण की एक नई गाथा लिख रहा है, यानी पुर्जे भी हमारे और प्रोडक्ट भी हमारा। आत्मनिर्भरता की पूरी चेन भारत में ही बनेगी।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 9,50,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज 3 दिन की श्रीलंका यात्रा पर कोलंबो पहुंचे। रक्षा मंत्री रक्षा और समुद्री साझेदारी को मजबूत करने सहित कई मुद्दों पर बातचीत करेंगे। वे कोलंबो में भारतीय समुदाय से भी मुलाकात करेंगे। रक्षा मंत्री के साथ रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को होने वाली ब्रिक्स बैठक के दौरान कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि इन बैठकों के दौरान रूस यूक्रेन संघर्ष सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि भारत युद्ध समाप्त करने में किसी भी तरह मदद करने के लिए तैयार है। नेपाल में आई भीषण बाढ़ पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने तुरंत मदद पहुंचाई और राहत बचाव तथा पुनर्निर्माण के प्रयासों में आगे भी सहयोग जारी रखेगा। उन्होंने बताया कि अब तक 7 विमानों के जरिए 95 टन राहत सामग्री नेपाल भेजी जा चुकी है। उन्होंने बताया कि मारे गए कई भारतीय नागरिकों की पहचान अब तक नहीं हो पाई है।
6: मारे गए हमारे भारतीय नागरिक हैं, उनमें से कई लोग का पहचान नहीं हो पाया है। इस मामले में हम लोग उनके परिवारजन से बातचीत हमारी चल रही है और कई एक मामलों में जो डीएनए की सैंपलिंग भी ली गई है। 273 लोग लापता हैं अभी और ये जो हादसा हुआ है नेपाल में हुआ है, तो हम लोग इंतजार करते हैं कि किस प्रकार का वहां के

0: सरकार वहां के अधिकारी इस पर क्या खुलासा करते हैं।
1: श्री जायसवाल ने बताया कि भारत चीन सीमा मुद्दे पर लगातार संवाद कर रहे हैं। दोनों देशों के बीच वरिष्ठ सैन्य कमांडर स्तर की बैठक अरुणाचल प्रदेश के वाचा और चीन के दमाई में हुई। रूस ने यूक्रेन संघर्ष को समाप्त करने के लिए भारत के शांति प्रयासों का स्वागत किया है। रूस के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि इस मुद्दे पर रूस का रुख भारत जैसा ही है। रूस यूक्रेन संघर्ष का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से चाहता है और इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए तैयार है। श्री पेस्कोव ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। श्री पुतिन प्रधानमंत्री मोदी को यूक्रेन के साथ चल रहे युद्ध की स्थिति की जानकारी भी दे सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं।
2: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 10 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: ये आकाशवाणी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 22 सितंबर को गुजरात के एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। एक रिपोर्ट।
3: आर्टिकल 370 को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म और भंगार को सर्वश्रेष्ठ नॉन फीचर फिल्म चुना गया है। वहीं रामनामी को सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र का पुरस्कार दिया जाएगा। ब्रह्मयुगम के लिए मलयालम अभिनेता ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेता का पुरस्कार दिया जाएगा, जबकि यामी गौतम को आर्टिकल 370 के लिए सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेत्री का पुरस्कार दिया जाएगा। रणदीप हुड्डा को स्वतंत्र वीर सावरकर के लिए सर्वश्रेष्ठ नवोदित निर्देशक के लिए सम्मानित किया जाएगा। मंत्रालय ने बताया है कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के नॉन फीचर फिल्म वर्ग में पहली बार किसी संथाली फिल्म को सम्मानित किया जाएगा। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
1: भारतीय जनता पार्टी ने नशीले पदार्थों की समस्या से निपटने में कोई ठोस कदम न उठाने के लिए पंजाब सरकार की आलोचना करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान के इस्तीफे की मांग की है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आरोप लगाया कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के सामने ड्रग माफिया का पूरा तंत्र फल फूल रहा है।
4: गुलजार सिंह एक वीडियो बनाता है और वीडियो में वो 4 लोगों को इसका जिम्मेदार बताता है कि कैसे पंजाब में हर जगह नशीले पदार्थ युवाओं में बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाता है और सरकार मूक दर्शक बनी रहती है, कार्रवाई नहीं करती।
1: बंबई उच्च न्यायालय ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ टिप्पणी के मानहानि मामले में जारी समन को रद्द करने से इनकार कर दिया। याचिका में राहुल गांधी के खिलाफ कार्यवाही शुरू करने के मजिस्ट्रेट न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई थी। लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अनुपस्थिति और अवकाश के दौरान जम्मू कश्मीर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। राष्ट्रपति भवन की आधिकारिक विज्ञप्ति में ये जानकारी दी गई है। कृषि मंत्रालय ने बताया है कि 4 सितंबर तक देश में खरीफ फसलों का क्षेत्रफल 1,086 लाख हेक्टेयर से अधिक हो गया है। धान की खेती 421 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में और दालों की बुआई 117 लाख हेक्टेयर में हुई है। श्री अन्न और दरदरे अनाज की खेती 181 लाख हेक्टेयर से और तिलहन की खेती 191 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में किया गया है। ब्रिटेन ने भारत की कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना को मान्यता दे दी है। भारतीय निर्यातकों के लिए ये बड़ी राहत ब्रिटेन ने कार्बन सीमा समायोजन व्यवस्था के अंतर्गत दी है। इससे भारतीय निर्यातकों को एक ही कार्बन उत्सर्जन के लिए 2 बार शुल्क चुकाने से राहत मिलेगी। भारत सुरक्षित 6G वायरलेस नेटवर्क के विकास में तेजी लाने के लिए अमेरिका की अगुवाई वाली वैश्विक साझेदारी में शामिल हो गया है। अमेरिका ने बताया कि इस पहल में ब्रिटेन, जर्मनी और जापान

तथा कुछ और देश भी शामिल हैं। इसका उद्देश्य वर्ष 2030 के दशक में 5G नेटवर्क की जगह 6G तकनीक आने से कई वर्ष पहले ही विभिन्न देशों की 6G रणनीतियों के बीच समन्वय स्थापित करना है। मौसम विभाग ने कल अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, बिहार, पश्चिम बंगाल के गंगे क्षेत्र, झारखंड, नागालैंड और उड़ीसा में मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी है। कल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराईकाल में भी बारिश की संभावना है। अहमदाबाद में विश्व पैरा तीरंदाजी श्रृंखला के तीसरे चरण में आज भारत ने 2 स्वर्ण सहित 5 पदक अपने नाम किए। तोमन कुमार और श्याम सुंदर स्वामी ने कंपाउंड टीम स्पर्धा में और हरविंदर सिंह तथा विजय सुंडी की रिकर्व जोड़ी ने पुरुष टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की फिनटेक यात्रा नई ऊंचाइयों पर पहुंच रही है। इसमें नवाचार और समावेशन को केंद्र में रखा गया है। प्रधानमंत्री ने गुजरात में 35,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने कहा, चिप से लेकर जहाजों तक भारत विनिर्माण के एक नए भविष्य का निर्माण कर रहा है। रूस ने यूक्रेन संघर्ष को खत्म करने के भारत के शांति प्रयासों का समर्थन किया। कहा, इस मुद्दे पर रूस का रुख भारत जैसा। और अहमदाबाद में विश्व पैरा तीरंदाजी में आज भारत ने 2 स्वर्ण सहित कुल 5 पदक जीते। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: रोजा ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 मुंबई में 8 से 11 सितंबर तक मुनाकिद हो रहा है। इससे कबल दिन में आज वजीराजम ने गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के मुख्तलिफ तरक्याती स्कीमों का इफ्तिताह किया और संगे बुनियाद रखा। वजीराजम ने मगरबी रेलवे के लिए वक्फ मालगाड़ी की राहदारियों के 3 अहम सेक्शन मुल्क के नाम वक्फ किए और ये मालगाड़ी की राहदारी के नेटवर्क की पूरी तरह तकमील और बाकायदा कामकाज शुरू होने की अलामत है। जनाब मोदी ने न्यू सानंद, न्यू मकरपुरा, न्यू अंबरगांव और न्यू JNPT से मालगाड़ी खिदमात को झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही टांडा रोड और वडोदरा के दरमियान एक मुसाफिर रेलगाड़ी को भी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो दूर दराज के कबायली इलाके अलीराजपुर को कौमी रेल ग्रिड से जोड़ती है। वजीराजम ने 9,700 करोड़ रुपए की मालियत के रेलवे के 3 तौसी प्रोजेक्टों का भी संगे बुनियाद रखा। इस मौके पर लोगों से खिताब करते हुए वजीराजम ने कहा कि चिप से लेकर शिप तक भारत मैन्युफैक्चरिंग के नए मुस्तकबिल की तामीर कर रहा है।
1: अब भारत चिप से लेकर शिप तक निर्माण की एक नई गाथा लिख रहा है, यानी पुर्जे भी हमारे और प्रोडक्ट भी हमारा। आत्मनिर्भरता की पूरी चेन भारत में ही बनेगी।
0: वजीराजम ने कहा कि एक मुकम्मल खुद कफील सप्लाई चेन मुल्क के अंदर तैयार हो रही है, जो हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक से समंदरों में भारी जहाजरानी तक का अहाता करती है। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत एक आलमी मैन्युफैक्चरिंग मरकज के तौर पर उभरा है और वो अब खुद जदीद तरीन रेलगाड़ियों और मेट्रो के कोच बना रहा है। वजीराजम ने भारत के ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक सेक्टर की तेजी से होती कायापलट को भी उजागर किया।
1: आज 2,800 किलोमीटर से अधिक का डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट पूरा हो गया। ये 21वीं सदी के भारत के लिए बहुत ऐतिहासिक कार्य संपन्न हुआ है। ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इस बात का साक्षी है कि बीते 12 साल में देश की काम करने की संस्कृति कैसे बदली है।
0: वजीराजम ने नवसारी में नौ तामीर शुदा बीजेपी दफ्तर के इफ्तिताह के बाद एक पुरहजूम अवामी रैली से खिताब किया। जनाब मोदी ने शहरियों और अवामी नुमाइंदों से जोर देकर कहा कि वो समाजी खिदमात और सफाई को रोजमर्रा की बिला कोशिश आदत बना लें। साथ ही इस बात को यकीनी बनाएं कि तरक्याती स्कीमों की रसाई आखिरी फर्द तक हो। वजीराजम नरेंद्र मोदी इस महीने की 12 और 13 तारीख को नई दिल्ली में होने वाली ब्रिक्स सरबरा कॉन्फ्रेंस के दौरान मुतादिद रहनुमाओं के साथ बाहमी बातचीत करेंगे। नई दिल्ली में आज मीडिया ब्रीफिंग के दौरान वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने यह बात कही। रूस यूक्रेन जंग के सिलसिले में तर्जुमान ने कहा कि भारत यूक्रेन और रूस दोनों के साथ राबते में है और इस बात पर गौर कर रहा है कि इस लड़ाई को रोके जाने के सिलसिले में क्या कोई नजरियात और तजावीज हैं जो मदद कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने हाल ही में यूक्रेन और पोलैंड का दौरा किया था। अपनी बातचीत के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने कहा था कि भारत ने मुसलसल ये मौकफ बरकरार रखा है कि ये दौर जंग का नहीं है और कोई भी हल जंग के मैदान से नहीं निकलेगा। नेपाल में तबाहकुन अचानक सैलाब से मुतालिक बात करते हुए जनाब जायसवाल ने कहा कि भारतीय फॉरेंसिक टीम और टनल में बचाव टीम जमीनी सतह पर काम कर रही है। फॉरेंसिक टीम इस वक्त काठमांडू में 2 लेबोरेटरियों में काम कर रही है और वो 1,200 DNA नमूनों की जांच कर रही है। जनाब जायसवाल ने कहा कि 275 भारतीय शहरी लापता हैं, जिनमें वो 49 अफराद भी शामिल हैं जो चीन की जानिब लापता हुए हैं। उन्होंने कहा कि कुल 169 भारतीय शहरियों को अब तक बचा लिया गया है।
2: मारे गए हमारे भारतीय नागरिक हैं, उनमें से कई लोग का पहचान नहीं हो पाया है। इस मामले में हम लोग उनके परिवारजन से बातचीत हमारी चल रही है और कई एक मामलों में जो DNA की सैंपलिंग भी ली गई है। 273 लोग लापता हैं अभी और ये जो हादसा हुआ है नेपाल में हुआ है, तो हम लोग इंतजार करते हैं कि किस प्रकार का वहां की सरकार, वहां के अधिकारी इस पर क्या खुलासा करते हैं।
0: जनाब जायसवाल ने कहा कि भारत ने नेपाल के आवाम और हुकूमत के साथ यकजहती और हमदर्दी का इजहार किया है। उन्होंने मजीद कहा कि भारत ने जल्द मदद का हाथ बढ़ाया और वो राहत इमदाद, बचाओ और तामीर नौ की कोशिशों में मदद जारी रखेगा। जनाब जायसवाल ने कहा कि 7 तैयारों के जरिए अब तक 95 टन इमदादी सामान भेजा जा चुका है और कुछ और इमदादी सामान जल्द भेजा जाएगा। जनाब जायसवाल ने कहा कि भारत चीन ताल्लुकात रफ्तार मुस्बत सिमत में आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि ताल्लुकात के इस तरह रफ्तार मामूल बनाने और अवाम से अवाम

शक्ति महकमा मौसमियात ने कल अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, बिहार, गंगा की तराई वाले मगरबी बंगाल, झारखंड, ओडिशा में शदीद बारिश की पेशगोई की है। महकमा मौसमियात ने कहा कि अंडमान और निकोबार जजायर, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में कल गरज चमक के साथ छींटे पड़ सकते हैं और तेज हवाएं चल सकती हैं। इस दौरान हिमाचल प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में अगले 3 से 4 दिन में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। भारत ने अहमदाबाद में जारी आलमी पैरा तीरंदाजी सीरीज के तीसरे मरहले के तहत आज सोने के 2, चांदी के 2 और कांस्य के 1 तमगे समेत कुल 5 तमगे जीते हैं। मर्दों के कंपाउंड टीम मुकाबलों में भारत के तोमर कुमार और श्याम सुंदर स्वामी ने सोने के तमगे जीते, जबकि हरविंदर सिंह और विजय सुंदी ने मर्दों के रिकर्व टीम जुमरे में भी सोने का तमगा अपने नाम किया। वहीं खवातीन के रिकर्व टीम मुकाबले में भावना और पूजा ने चांदी के तमगे जीते। और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत का फिनटेक सफर नई बुलंदियों तक पहुंच गया है, जिसकी बुनियादों में इख्तिराआत और सबकी शमूलियत शामिल है। वज़ीर-ए-आज़म ने मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का इफ्तिताह किया। वज़ीर-ए-आज़म ने गुजरात में 35,000 करोड़ रुपए की मालियत के कई तरक्याती प्रोजेक्टों को मुल्क के नाम वक्फ किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि चिप से लेकर शिप तक भारत मैन्युफैक्चरिंग के नए मुस्तकबिल की तामीर कर रहा है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह श्रीलंका के 3 रोजा दौरे पर कोलंबो पहुंच गए हैं, ताकि बाहमी दिफा और समंदरी सरहद से मुतालिक तआवुन को फरोग दिया जा सके। और रूस ने यूक्रेन लड़ाई के खात्मे के लिए भारत की अमन कोशिशों की हिमायत की है। रूस ने इस मामले पर भारत के मौकफ से वाबस्तगी का इजहार किया है। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।

0: 상처.
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम कहकशां।

मोहब्बत एक ऐसा एहसास है जिसे शब्दों में पूरी तरह बांध पाना शायद मुमकिन नहीं। कभी किसी की मुस्कान इसे बयां कर देती है, कभी आवाज़ और कभी सिर्फ आँखें। कहते हैं आँखें दिल का आईना होती हैं, इनमें छुपे जज्बात बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ कह जाते हैं। किसी की आँखों में प्यार दिखाई देता है तो किसी में इंतज़ार, और कभी कभी इन्हीं आँखों की खूबसूरती पर पूरी की पूरी गज़ल लिख दी जाती है। जो गज़ल आपको सुनवाने जा रहे हैं उसे गाया है तलत अजीज साहब ने। इस गज़ल में भी मोहब्बत की इसी नज़ाकत और खूबसूरती का एहसास है।

मोहब्बत एक ऐसा एहसास है जिसकी कोई एक परिभाषा नहीं होती। कभी ये किसी की आंखों में दिखाई देती है, कभी किसी की खामोशी में सुनाई देती है, और कभी किसी गजल की धुन बनकर दिल में उतर जाती है। प्यार की कहानी भी श्रोताओं बड़ी अजीब होती है। कभी इसमें मुलाकातों की मिठास होती है, कभी इंतजार की कसक, कभी किसी के साथ होने की खुशी, तो कभी दूर होकर भी उसके बेहद करीब होने का एहसास। और जब ऐसी ही किसी प्रेम कहानी को पंकज उधास जैसी मकबूल आवाज मिल जाए तो अल्फाज सीधे दिल से संवाद करने लगते हैं। सुनिए।

मोहब्बत में कुछ बातें अनकनी रह जाएं, कुछ राज दिल में छुपे रह जाएं और कभी कभी कोई जानबूझकर भी अनजान बना रहे, तो यही तो इश्क की नज़ाकत है। और श्रोताओं, गज़ल की खूबसूरती इसी में है कि वो सीधे सीधे सब कुछ नहीं कहती, बल्कि अपने अल्फाज के बीच बहुत कुछ महसूस करने के लिए छोड़ देती है। और जब इन्हीं एहसासों को मिताली सिंह और भूपेंद्र सिंह की दिलकश आवाज़ मिलती है, तो गज़ल का असर और भी गहरा हो जाता है।

और श्रोताओं, कहकशा की इस सुरीली महफिल में कुछ पल के लिए शहर की चहल पहल से दूर चलते हैं उस खामोश रात की ओर, जहां चांद है, चांदनी है और दिल में किसी अपने की याद है। सुनते हैं अनूप जलोटा की पुरकशिश आवाज़ में ये खूबसूरत गज़ल। यादों को करीब आने दीजिए और महसूस कीजिए चांदनी रात में बिखरे मोहब्बत के इन नर्म एहसासों को।

कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें जुबां तक लाना आसान नहीं होता। वो दिल में रहते हैं, खामोशी में पलते हैं और कभी किसी शेर का रूप लेकर हमारे सामने आते हैं। अब उन जज्बातों के करीब चलते हैं जहां दिल के जख्म भी अपनी एक जुबान रखते हैं और दर्द भी खूबसूरत लगने लगता है। पेश है जगजीत सिंह की दिलकश आवाज़ में ये गज़ल।

जगजीत सिंह की गाई इस गजल के साथ ही आज का कहकशा कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

0: श्रोताओं नमस्कार, मैं अभय कांत तिवारी स्वागत करता हूं आपका कार्यक्रम खेल दर्पण में। आज के अंक में हम बात करेंगे कायाकिंग और कैनोइंग की उभरती हुई खिलाड़ी आंचल और भूमि सोनकर से, और हम सुनेंगे इस सप्ताह के खेल समाचार। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं दो उभरती हुई खिलाड़ी कायाकिंग और कैनोइंग में, जिन्होंने प्रयागराज और उत्तर प्रदेश का नाम रोशन किया है और भविष्य में इनकी योजना है कि पूरे विश्व में देश का नाम रोशन करने की। तो आइए स्वागत करते हैं आंचल और भूमि का। आंचल, भूमि, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद। धन्यवाद सर।
0: आंचल, आप बताइए, आपको कायाकिंग और कैनोइंग में जाने की प्रेरणा कहाँ से मिली, कैसे शुरुआत हुई इस खेल में जाने की?
1: सर, अभी हम बचपन से स्विमिंग करते थे, तो हमारा लॉकडाउन हुआ था तो इसकी वजह से स्विमिंग हमारा बंद हो गया था, तो फिर से हम स्विमिंग स्टार्ट कर रहे थे। तो फिर हम यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे थे उस टाइम स्विमिंग की, तो
0: यूनिवर्सिटी गेम्स की।
1: हाँ, तो फिर सर उसके बाद जब हम स्विमिंग कर रहे थे तो वहाँ पे देखा तो कुछ नाव चल रही थी, क्योंकि वो पहली बार देखा था, ऐसा कभी गेम सुना भी नहीं और पहली बार देखा था। तो फिर वो गेम देख के लगा कि हाँ हम भी कर सकते हैं, क्योंकि हम स्विमिंग पूरे 12 महीने नहीं कर सकते, ठंड आ जाती है। फिर हाँ हुआ कि ये गेम करना है, अच्छा लग रहा था देखने में। फिर गए, बगल में ही था जस्ट बोट क्लब प्रयागराज है कीड़गंज के पास, तो वहाँ पर गए हम। वहाँ कोच थे धवन सर, तो उनसे मुलाकात हुई हमारी, तो उनसे हमने बात की, तो फिर उन्होंने बोला ठीक है नेक्स्ट डे से आना, तो फिर हमने वहाँ पर ज्वाइन किया।
0: वहाँ से आपकी शुरुआत हुई?
1: जी सर।
0: तो जैसा कि आंचल ने बताया कि शुरुआत आप लोगों ने स्विमिंग से की थी, तो स्विमिंग कहाँ आप करती थी? भूमि, स्विमिंग की शुरुआत कैसे हुई, क्या शौक से करती थी या सीखने के लिए करती थी, तो कौन लेके गया आपको स्विमिंग के लिए?
2: मेरे फादर का नाम मिस्टर राजा बाबू सोनकर है, वो हमें शुरू से ही मतलब गेम में डालना चाहते थे, क्योंकि गेम में जितना हम लोग जाएंगे उतना ही खुल के रहेंगे। तो उन्होंने हम लोगों को पहले टैकांडो सिखाया था, बट किसी प्रॉब्लम की वजह से हमें उसे छोड़ना पड़ा। हम जब 5 साल के थे और ये 7 साल की थी, तब हमने टैकांडो किया था, तो फिर येल्लो बेल्ट करके हमने छोड़ दिया था। फिर 1 साल तक घर पे बैठे थे, कोई गेम नहीं, बस पढ़ाई कर रहे थे। फिर पापा मेरे रोज़ गंगा जी जाते हैं नहाते, तो उन्होंने देखा था कि हाँ वहाँ बहुत सारे बच्चे आते हैं, तो उन्होंने एक सोचा कि हम लोगों को कराते, तो एक दिन वो ले करके गए, बस दिखा करके आ गए। फिर उस दिन संडे था, उस दिन ऑफ था, हमें कुछ पता नहीं था। फिर अगले दिन हम खुद से गए, ये लगा था कि शौक के लिए कर रहे हैं। फिर स्कूल में गए तो पता चला कि हाँ एक कॉम्पिटिशन वगैरह होता है। फिर स्कूल स्टेट खेला, उसमें अच्छे रिजल्ट आए, मतलब पहली बार गए तो मेडल आए अच्छे खासे। फिर दूसरी बार 10th में गए, उसमें भी मेडल आए, लेकिन जब 11th में खेलने की बारी आई तो लॉकडाउन लग गया, तो वहीं पे सब चीज रुक गई।
0: लॉकडाउन की बात, आप लोग
2: 2 साल एकदम रुक गया था,
0: 2 साल कुछ नहीं किया,
2: कुछ नहीं, घर पे ही थे,
0: पढ़ाई किया।
2: हाँ, फिर लॉकडाउन खत्म होने के बाद हमारा 12th कंप्लीट हुआ। 12th के बाद हम कॉलेज में एडमिशन भी लेना था, ये था कि स्विमिंग से अपना करेंगे आगे का, लेकिन स्विमिंग का ना यहाँ कोई फैसिलिटीज थी, कोई स्विमिंग पूल नहीं था, स्विमिंग का कोई अच्छा कोच नहीं था, बहुत उसमें प्रॉब्लम थी। तो फिर बस हमने कायाकिंग कैनोइंग ज्वाइन किया।
0: अच्छा, भूमि, आप दोनों सगी बहने हैं, तो आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि कैसी है? क्या कोई परिवार में पहले से स्पोर्ट्स में था, या फिर आप लोग ही पहले शख्स हैं जो इस फील्ड में जा रहे हैं?
2: सर, अभी तक मेरे परिवार में कोई भी नहीं है, मेरे पेरेंट्स अनएजुकेटेड है, वो पढ़े लिखे भी नहीं है, और जहाँ से सर हम बिलोंग करते हैं वहाँ से ऑलमोस्ट कोई भी नहीं पढ़ा होगा, वहाँ पे बस्ती है।
0: आपके पिताजी क्या करते हैं?
2: हमारे पापा अभी चाय की दुकान है।
0: आपके पिताजी की चाय

0: की दुकान है, वो अशिक्षित हैं, फिर भी उन्होंने ये योजना बनाई, ये प्लान किया और ये प्रेरणा दी आप लोगों को कि आप लोग आगे बढ़िए, स्पोर्ट्स में आगे बढ़िए, पढ़ाया लिखाया भी लेकिन खेलकूद में आगे बढ़ने का अवसर दिया। आपको स्विमिंग के लिए ले गए गंगा जी में, जहाँ पे आपको किसी ने सिखाया और आपने उस समय शौक के लिए ही स्विमिंग सीखनी शुरू की, और कोविड के बाद आप लोग क्योकिंग और कैनोइंग में आए। तो वहाँ पे आपके कोच कौन थे, कैसे आप लोगों ने सीखना शुरू किया और शुरुआत में क्या क्या मुश्किलें आई आप लोगों को?
1: पहले तो हम स्विमिंग में स्कूल स्टेट खेले थे तो इतना कुछ जानते नहीं थे। कैकिंग कैनोइंग में जब आए तो हर चीज एकदम नया था, मतलब वो ऐसा गेम था कि आज तक न देखा था और न ही तो सुना था। पहली बार देखा भी था, पहली बार सुना भी था, बस वो भी लग रहा था कि ऐसे शौक से होगा, ठंडी में छुट्टी होगी, लेकिन ये गेम में आने के बाद ऐसा लग रहा था कि हाँ असल में अब हम गेम में आए हैं। वो तो स्कूल स्टेट था इसलिए उतना कुछ लगा नहीं, फिर इधर जब आए तब गेम का अहमियत पता चली कि गेम क्या होता है। एक खिलाड़ी हम अगर बने तो कैकिंग कैनोइंग से बने, एक एथलीट हम अपने गेम से ही बने, बस स्विमिंग एक जरिया था हम लोगों को इस गेम तक पहुंचाने के लिए।
0: स्विमिंग माध्यम था जो आपको लेके गया कैकिंग और कैनोइंग में। तो आंचल ये बताइए कि जब आप लोगों ने कैकिंग और कैनोइंग शुरू की तो उसमें K1 होता है जिसमें एक ही प्लेयर पैडल करता है, और K2 होता है जिसमें दो होते हैं। तो आप लोग क्या शुरुआत में ही साथ में किया करते थे, K2 ही किया करते थे कि शुरुआत में K1 और उसके बाद में फिर आपने टीम बनाई दो लोग मिलके K2?
2: नहीं सर, हम जब ये गेम ज्वाइन किए थे तो इसमें बोट में क्या होता है कि हमें पहले बैलेंस बनाना पड़ता है, उस टेक्निक की प्रैक्टिस करनी पड़ती है।
0: तो वो अकेले करते थे?
2: हाँ, तो कोई भी बच्चा होगा वो उस गेम में जो भी जाएगा तो उसमें उसको अकेले प्रैक्टिस करना पड़ता है। जब उसकी बोट बैलेंस हो जाएगी, बोट चलने लगेगी, तब वो डबल और फोर पे बैठ के पैडल चलाता है।
0: तो आप लोग K1 में भी करती हैं, K2 में भी करती हैं। तो पहली ऐसी कौन सी प्रतियोगिता थी जिसमें जाके आप लोगों ने कोई मेडल जीता हो या कुछ ऐसा सीखा हो जो आप लोगों को लगा हो कि नहीं हम इस फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं?
1: हम लोग ने अगस्त 2022 में गेम ज्वाइन किया था, तो और फिर नया नया गेम था, उस समय खिलाड़ी की तरह शरीर में इम्यूनिटी भी नहीं थी, तो बीच में ही मेरी तबीयत खराब हो गई थी। फिर दिसंबर 2022 में हमने अपना पहला नेशनल खेला था जो कि भोपाल में हुआ था। तो उसमें क्या हुआ था कि हम 5 लड़कियां थी, तो मैं अकेले गई थी, K1 से खेला था हमने और इन्होंने K4 से खेला था। उस समय खेलो इंडिया हुआ था तो हम गए थे K1 से खेलने, मेरी 200 मीटर की रेस थी तो उसमें पलट गए थे। तो पलटने के बाद उसमें काफ़ी लोगों ने ऐसा कमेंट पास किया, तो फिर वो चीज़ें बहुत ज़्यादा हो गया कि हम उस समय मेरी बोट इन चारों से थोड़ी सही चल रही थी लेकिन फिर भी हम पलट गए थे, तो उस चीज़ को लगा कि ये चीज़ गलत है तो अब गेम पे ध्यान देंगे।
0: वहां से आपको जो सीखने को मिला, हाँ, सबक मिला, उसके बाद आपने मेहनत और ज्यादा करनी शुरू की और इसको ज्यादा सीरियसली, ज्यादा गंभीरता से लेना शुरू किया। तो आंचल आपको कब लगा कि भूमि तो अच्छा कर रही है, भूमि तो अब ज्यादा सीरियसली, ज्यादा गंभीरता से ले रही है, तो क्या आपने भी तभी से गंभीरता से लिया या आपने उस समय शौक से ही लिया?
2: सर उस टाइम तो हमारी वो जब खेलो इंडिया हुआ था तो उस टाइम हमारा बैलेंस था, हम ढंग से पैडल भी नहीं मार पाते थे, तो फिर उसके बाद खेलो इंडिया खेल के आए, यूपी को फाइनल में पहुंचाया था, उसके बाद हम लोग रिप्रेजेंट किया फाइनल में यूपी को, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट हुआ, स्टेट हुआ, उसमें फिर गोल्ड आने चालू हुए। मेरा बैलेंस बहुत लेट से बना था बोर्ड पर, उसमें सबसे मुश्किल वर्क होता है बैलेंस बनाना,
0: बैलेंस बनाना। जैसा कि भूमि ने बताया कि वो उस प्रतियोगिता में अच्छा तो खेल नहीं थी लेकिन अचानक से उनकी बोट पलट गई, यानी कि बैलेंस आपका गड़बड़ हो गया। तो आप लोग बहनें जब साथ में करती हैं, मैं जानना चाहता हूँ K2 में, जब K2 में आप लोग साथ में पेडल करती हैं तो क्या आपस में थोड़ा सा लड़ाई होती है कि तुम ठीक से नहीं चला रही हो, तुम ठीक से नहीं चला रही हो?
1: हाँ सर, होती है बहुत हद तक। सर शुरुआत में तो बहुत ज्यादा हुई थी क्योंकि जो अपना K2 पार्टनर होता है या भी कोई भी अगर अपना पार्टनर होता है तो हम लोगों का माइंडसेट एक होना चाहिए, एकदम एक, कि अगर एक आगे वाला क्या सोच रहा है पीछे वाले को बिना बताए पता चल जाए, इतना ज्यादा माइंडसेट एक होना चाहिए। तो एक बार की तो ये चीज हुई नहीं सर, फिर हम K1 करते थे सर, K2 बस हमने ऐसे चलाना शुरू किया लेकिन हमारा ऐसा कुछ था नहीं कि हम साथ में K2 चलाएंगे, बस ऐसे उतारा एक दिन K2, वो सही चलने लगी, सही चलते चलते कंपटीशन करते करते एक एक्सपीरियंस मिलने लगा और सर हमारा 3 साल के बाद मेडल पड़ना शुरू हुआ था।
0: पहला मेडल कब मिला आपको?
2: दिसंबर 2025 में
0: कौन
2: नेशनल में आया था,
1: खेलो इंडिया में।
0: खेलो इंडिया में उसमें आपको ब्रॉन्ज मेडल मिला 200 मीटर्स में।
2: जी सर।
0: तो जैसा कि आपने बताया K2 में सबसे जरूरी है कि आपस में कोऑर्डिनेशन, आपस में समन्वय बना के रखना, क्योंकि घर में भी आप लोग साथ रहती हैं तो घर में भी एक समन्वय बना के रखना पड़ता है और खेल में भी आप लोग साथ हैं तो इससे आपको एक सहयोग मिल जाता होगा, एक एडवांटेज मिल जाता होगा साथ में खेलने का, क्योंकि कोई और खिलाड़ी बाहर से आता, किसी और डिस्ट्रिक्ट से आता तो आप समन्वय बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता क्योंकि आप लोग साथ रहती हैं। अब मैं भूमि आपसे पूछना चाहूंगा क्योंकि क्योकिंग और

0: कैनोइंग, ये इस खेल के बारे में लोग कम जानते हैं और इस खेल में जो प्रशिक्षण के अवसर भी हैं प्रयागराज में कम है। बहुत कम खिलाड़ी होंगे, गिनती के खिलाड़ी होंगे जो आप लोगों के साथ प्रशिक्षण ले रहे होंगे, खेल रहे होंगे। तो यहाँ कहाँ पे सीखती हैं, आपके कोच कौन है और कितनी सुविधाएं हैं, कैसा लगता है आप लोगों को वहाँ पे?
1: यहाँ पे हमारा बोट क्लब है प्रयागराज, जो ये
0: यमुना
1: केड़ीगंज
0: नदी किनारे।
1: चौखंडी पे अपना सर, वहाँ पे हमने जब ज्वाइन किया था। हमारे बोट में क्या होती है, जो यहाँ पे बोटें हैं वो कार्गो है,
0: कार्गो।
1: और जिससे हमारा कंपटीशन होता है वो नैलो है। और सर हमारा गेम बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है, हमारी केवल पैडल ही 50 से 60 हज़ार की आती है, और बोट तो और ही ज़्यादा आती है, नैलो अपनी आती है लैक्स 2 लैक्स में। तो सर अपने पास नहीं है वो। सर हम 3 साल से यहाँ पे इसीलिए पीछे थे क्योंकि सर अपन यहाँ पे कार्गो चलाते थे, और वहाँ जाके नैलो एक बार की इतनी अच्छी नहीं चलती जितना अपना कार्गो चल जाता है, इसीलिए हम लोग कहीं ना कहीं हम लोग पीछे रह जाते थे। और सर यहाँ पे पैडल भी है लेकिन कम है, बच्चे अगर 50 है तो पैडल 10 है। तो सर अपने पास फैसिलिटीज़ भी कम थी, बस बच्चे मेहनत करते थे, मेहनत से भी थोड़ा थोड़ा हम लोग पीछे हो जाते थे क्योंकि अपने गेम में डाइट भी बहुत ज़्यादा रहता था, डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट है, रिकवरी का बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो बच्चे घर पे रह के गेम करते हैं सर, वो उतना अच्छा डाइट तो ले सकते हैं सर, लेकिन जहाँ तक रिकवरी नहीं ले सकते सर, इसलिए गेम में थोड़ा सा अपने को रिकवरी भी चाहिए और डाइट भी चाहिए, मेहनत भी चाहिए और सर फैसिलिटीज़ भी चाहिए।
0: तो आप लोगों को अभी डाइट रिकवरी या फिर जो प्रशिक्षण है वो कहाँ आप कर रही हैं अभी फिलहाल?
1: सर अभी तो हम भोपाल में कर रहे हैं, हमको 1 साल हो गया, और सर भोपाल में ये हमारे कैकिंग कैनोइंग का एक तरीके से हब है।
0: अच्छा,
1: वहाँ के ऑल इंडिया के प्लेयर जो अपने स्टेट में नहीं कर पाते अच्छा, वो हमारे क्लब पे आते हैं, मतलब भोपाल पे आके प्रैक्टिस करते हैं।
0: तो अभी आप लोग वहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वहाँ सारी सुविधाएं आपको मिल रही
1: जी
0: हैं,
1: सर।
0: और जैसे आपने बताया कि यहाँ पैडल्स कम थे, आपको कार्गो बोट्स मिलती थी, वहाँ पे अलग बोट्स होती थी
1: नैलो बोट।
0: नैलो बोट्स, तो वहाँ पे वो बोट्स मिल रही
1: हाँ
0: हैं,
1: जी सर।
0: वहाँ पे आपको कोचेस भी अच्छे मिल रहे होंगे,
1: हाँ
0: सारी सुविधाएं मिल रही होंगी, वो गवर्नमेंट की तरफ से मिल रहे होंगे।
1: वहाँ पे एक खुद का एसोसिएशन है।
0: अच्छा, ये एसोसिएशन है तो आप लोग एसोसिएशन ज्वाइन की होंगी तो वो आपको ये ट्रेनिंग दे रहे होंगे। तो आंचल, अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जब आप पहली बार भोपाल में गई होंगी, आप लोग यहाँ से वहाँ पे जाने के बाद आपको क्या अंतर महसूस हुआ कि जो यहाँ पे आपको नहीं मिल पा रहा था वहाँ आपको मिल रहा है, तो आपको क्या लगा कि मैं और अच्छा परफॉर्म कर सकती हूँ और ज़्यादा मेडल्स अचीव कर सकती हूँ?
2: सर एक प्लेयर के लिए सबसे बड़ा चीज़ होना चाहिए इन्वायरमेंट, क्योंकि हम जहाँ पे अभी प्रयागराज में गेम करते हैं सर, केवल हम ही बच्चे हैं सर, बहुत ज़्यादा बच्चे होंगे तो 50, लेकिन जहाँ सर हम भोपाल में आज प्रैक्टिस करते हैं वहाँ पे सर कम से कम 500 बच्चे प्रैक्टिस करते हैं। उसमें कुछ जॉब वाली टीम है, जैसे कि सर्विसेस है, SSB है, CRPF है, BSF है, और इंटरनेशनल प्लेयर भी वहीं प्रैक्टिस करते हैं, और भोपाल में इंटरनेशनल कोचेस भी हमें प्रैक्टिस कराते हैं।
0: वहाँ आपको सुविधाएं भी ज़्यादा मिलती हैं और कंपटीशन भी अच्छा मिलता है, क्योंकि आप प्रोफेशनल लोगों के साथ खेलेंगे तो आपके खेल में और निखार आएगा। खेल से अलग हम बात करते हैं अब आंचल, पढ़ाई में आपका क्या है अभी, आपको कौन सा विषय पसंद है, अभी आप क्या कर रहे हैं?
2: सर अभी तो हम BA कर रहे हैं, अभी हमारा BA फर्स्ट ईयर चल रहा है इसलिए सर, लेकिन आगे हमें BPED करना है।
0: BPED करना है, और पढ़ाई में कौन सा विषय ऐसा है जो आपको ज़्यादा पसंद है?
2: हिंदी
0: हिंदी, हिंदी साहित्य।
2: जी सर।
0: तो भूमि, आप दोनों लोग प्रोफेशनल खिलाड़ी हैं कयाकिंग और कैनोइंग के, आप लोग इसी में अपना करियर बनाना चाहती हैं, इसके अलावा आप पढ़ाई में आप लोगों कितना समय दे पाती हैं? और ऐसा तो नहीं होता कि आप जब प्रशिक्षण लेके आती हैं तो आप लोग बहुत थक जाते होंगे, तो पढ़ाई में उतना समय नहीं दे पाते होंगे, तो पढ़ाई के साथ कितना जस्टिस कर पाते हैं आप लोग?
1: सर हम सुबह उठते हैं 5 बजे, वर्कआउट जाते हैं, फिर रूम पर आते आते 10 बज जाते हैं, फिर सर ब्रेकफास्ट बना के अपना करते हैं, फिर थोड़ा रेस्ट करते हैं, फिर सर 2 बज जाते हैं, 3 बज जाते हैं, तो फिर सर प्रैक्टिस के लिए जाना पड़ता है, फिर रात को आते हैं 7 बजे 8 बजे तक।
0: जब वापस आते हैं तो बहुत थके होते होंगे,
1: बहुत ज़्यादा सर, क्योंकि वर्कआउट कंटिन्यू चलता
0: लेकिन
1: रहता
0: इसके
1: है।
0: बावजूद भी पढ़ाई के लिए आप लोग समय निकाल लेते
1: हाँ
0: हैं,
1: सर।
0: पढ़ाई जो भी करते हैं मन से करते हैं। तो आगे आप लोगों की क्या योजनाएं हैं, नियर फ्यूचर में कौन से कंपटीशन हैं जिसकी आप अभी तैयारी कर रहे हैं?
1: सर अभी तो हमारा नेशनल गेम है, 2 से 3 महीने में हमारा नेशनल गेम आने वाला है सर। उस बार हम 1 सेकंड से चूक गए थे, तो इस
0: मेडल
1: बार
0: से
1: नहीं सर, नेशनल गेम
0: क्वालिफाई
1: क्वालिफाई
0: करने
1: करने
0: से?
1: से,
0: अच्छा,
1: तो सर वो चीज़ें इस बार रिपीट नहीं करना है, इस बार नेशनल गेम में जाना और मेडल भी लेना है उसमें सर। बाकी अपने आगे का तो इंटरनेशनल है, अपने केटू को और बेस्ट करना है और इंटरनेशनल खेलना है।
0: तो अभी जैसे आप लोग ने कई कंपटीशन में, जैसे मैं देख रहा था खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 उदयपुर में, 200 मीटर्स में आपने ब्रॉन्ज मेडल जीता, सीनियर नेशनल चैंपियनशिप फरवरी 2026 ब्रॉन्ज मेडल 200 मीटर में, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2026 सांगली महाराष्ट्र में जो हुआ था उसमें 3।

0: सिल्वर K4 में आपने जीता, और इसके अलावा अस्मिता जोनल नेशनल में 2 गोल्ड 1 सिल्वर K2 में और K4 में, जो छत्तीसगढ़ में हुआ था, आपने जीता था। और अस्मिता नेशनल चैम्पियनशिप भोपाल में 2 ब्रॉन्ज मेडल आपने K2 में जीता था। तो इन सब प्रतियोगिताओं में कौन सी ऐसी प्रतियोगिता थी जिसमें आपको लगा कि इसमें ज़्यादा मुश्किल हुई, ज़्यादा आपको संघर्ष करना पड़ा जीतने के लिए, सबसे मुश्किल जो लगा हो?
1: सर, हमारा सीनियर नेशनल चैम्पियनशिप था सर, उसमें हमारा 2 इवेंट था, एक 5 किलोमीटर का और एक 200 मीटर का। 5 किलोमीटर में सर हमारी एक दिन पहले थी, तो सर उसमें हमारे साथ BSF की टीम थी, MP की टीम थी, सर्विसेज की टीम थी। तो हम लोग कॉम्पिटिशन के लिए गए सर, हम मेडल पे ही चल रहे थे, सेकंड थर्ड पे चल रहे थे। स्टार्टिंग में हम फर्स्ट पे चल रहे थे, फिर सर हम सेकंड पे हो गए थे। 2 किलोमीटर की रेस होने वाली थी, तब तक सर हम कैप्साइज हो गए। तो सर उस दिन तो हमारा पूरा कॉन्फिडेंस एकदम ख़त्म हो गया था कि अब आज कुछ नहीं हुआ तो कल भी कुछ नहीं होगा। सारी उम्मीदें ख़त्म हो गई थी, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या होगा, क्या करना है,
0: आप
1: इतनी
0: लोग
1: मेहनत
0: मेडल की
1: करी,
0: रेस में थी, अचानक से ही आपकी बोट कैप्साइज हो गई।
1: कैप्साइज हो गई सर, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था उस टाइम क्या होगा। सब चीज़ हिम्मत टूट गई थी कि जब हमारा मेन इवेंट था, हमने इतनी मेहनत करी, उसमें नहीं हुआ, 200 मीटर में क्या ही होगा। लेकिन सर रात तक तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई, उस चीज़ से निकल नहीं पा रहे थे। फिर उस समय फैमिली का भी बहुत सपोर्ट मिला सर, और हमारे सर का भी, क्योंकि सर हमारा कॉन्फिडेंस एकदम ख़त्म हो गया था कि हम अगली रेस के लिए प्रिपेयर भी नहीं थे, लग रहा था कुछ नहीं होगा। फिर घर वालों का भी बहुत सपोर्ट मिल रहा था, घर वालों का भी बार बार फ़ोन आ रहा था, सर भी बार बार फ़ोन कर रहे हैं कि ठीक है जो आज ठीक है, कल का ध्यान दो, अगर आज का दिन तुम्हारा नहीं है तो क्या पता कल का दिन तुम्हारा हो। सर फिर अगले दिन हमारी पहली ही रेस थी 2 बजे, फिर सर हम उसमें उतरे थे। उसमें उड़ीसा की टीम थी, MP थी, और SSB थी, इंडिया पुलिस थी, बहुत सारी टीम थी। तो सर हमारा उसमें ब्रॉन्ज मेडल आया था
0: 200 मीटर में K2 में
1: दो सौ
0: आपने जीता
1: मीटर
0: था
1: में
0: उसमें।
1: हाँ जी
0: चलिए बहुत अच्छा था, क्योंकि एक बार गिरने के बाद फिर उठ के चल लेना, फिर उसमें मेडल लाना, वो बड़ी चीज़ है, क्योंकि आपकी बोट कैप्साइज होना आप लोगों के लिए बहुत ही हतोत्साहित करने वाली घटना थी,
1: बहुत ज़्यादा सर।
0: क्योंकि जो दबाव था तो उससे निकल के आप लोग अगले दिन बढ़े और न सिर्फ आगे बढ़े बल्कि आपने मेडल जीता। तो आंचल और भूमि, जैसा कि आप लोगों ने शुरुआत में ही बताया था कि आप लोगों को खेल के क्षेत्र में जाने के लिए प्रेरणा आपके पिताजी से मिली, पिताजी ने आपको सबसे पहले स्विमिंग के लिए प्रेरित किया, उन्होंने एडमिशन कराया, आप लोग सीखने लगे गंगा जी के तट पे, वहाँ पे तैराकी में, उसके बाद आप लोग कैकिंग और कैनोइंग में थे, तो और कहाँ से आपको सबसे ज़्यादा सहयोग मिला इस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए, कहाँ से प्रेरणा मिली?
1: सर हमारे पिताजी के बाद तो हमारे अभिषेक सर हैं, उन्होंने ही हमारा सब चीज़ किया। क्योंकि सर अभी मैंने बताया कि हमारा गेम बहुत ज़्यादा कॉस्टली है और सर हम इतने कैपेबल नहीं हैं उसको करने के लिए, तो अभिषेक सर ने ही पूरा पूरा साथ दिया था। और सर पेरेंट्स ने तो बस एक परमिशन दी है, बाकी पूरा गेम का हर चीज़ अभिषेक सर देख रहे हैं।
0: अभिषेक जी से मुलाकात आप लोग कैसे हुई, कहाँ उन्होंने देखा आपको खेलते हुए?
1: सर उन्हें खेलते हुए नहीं देखा था सर, वो स्कूल में हमारे आए थे हम लोगों को कुछ बताने के लिए, फिर उनसे हम लोग कनेक्ट हुए कंप्यूटर क्लास के थ्रू। तो कंप्यूटर क्लास करते करते सर को हमने एक दिन ये सारी चीज़ें बताई कि हम स्विमिंग करते थे पहले, सर ने सुना, फिर पूरी बात जानी, हमारे सर्टिफिकेट देखे, मेडल देखे, फिर सर ने बोला कि ठीक है बच्चे गेम करेंगे। तो उन्होंने बहुत ही दिन तक हमारे बारे में कोई गेम सोचा, बहुत से लोगों से राय ली कि बच्चों के लिए इंडिविजुअली कौन सा गेम अच्छा होगा, क्योंकि टीम में अगर सब अच्छे हैं तभी, लेकिन इंडिविजुअली खुद के ऊपर होता है। तो सर ने बहुत दिन तक सोचा, फिर हमने भी ये गेम देखा, समझा, सर को बताया, तो सर को ये गेम सही लगा, फिर हमने ये गेम ज्वाइन किया।
0: अभिषेक सर ने ही आप लोगों को खेल को चुनने के लिए प्रेरित किया और सहयोग कर रहे हैं, आपको प्रेरित करते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं। जैसा कि आपने बताया, जब आपकी बोट कैप्साइज हो गई थी तो शाम को भी उन्होंने फ़ोन करके बोला था कि कोई बात नहीं, अगले दिन फिर से आप प्रयास कर सकते हैं, अगला दिन आपका होगा।
1: जिस दिन हम कैप्साइज हुए थे सर उसी समय वहाँ पे मौजूद थे,
0: अच्छा, अभिषेक जी साथ में थे आपके?
1: हाँ, फिर उनकी उसी दिन ट्रेन थी, अगले इवेंट में वो हमारे साथ नहीं थे। तो वो हर थोड़ी थोड़ी देर में कॉल कर रहे कि तुम लोग घबराना मत, कल के लिए प्रिपेयर रहो, कल के लिए प्रिपेयर रहो, डाउन मत हो, तुम लोग कर लोगे, आज खराब गया कल अच्छा होगा, तुम लोग कर लोगे कर लोगे। फिर हम लोग ने अगले दिन किया।
0: आंचल और भूमि, आप लोगों ने इस खेल में अभी तक काफ़ी कुछ अचीव किया है, काफ़ी उपलब्धियां रही हैं आपकी जो हमने अभी तक चर्चा की, लेकिन आगे भी आपको बढ़ना है, आपको न सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम रोशन करना है, देश का नाम रोशन करना है। लेकिन इस खेल में प्रयागराज से ही और कई छोटे शहरों से कई नए खिलाड़ी भी आ रहे होंगे, कई नए खिलाड़ी हैं जो आपको सुन रहे हैं, चाहते होंगे कि आपकी तरह वो भी इस खेल में आगे बढ़े, तो उनके लिए आप लोग क्या संदेश देना चाहेंगी?
1: सर बस एक तो यही मैसेज जाएगा कि एक लड़की के लिए गेम करना बहुत टफ होता है,

0: उसको करना चाहिए, जैसे कि वो घर में रह के लड़ती है अपने आप से, उसको बाहर दुनिया से लड़ना चाहिए ताकि वो एक अच्छी नारी बन सके। और आज तो लड़कियां चांद पे पहुंच रही हैं, प्लेन चला रही हैं, देश के लिए लड़ रही हैं, तो फिर हम तो अभी एक एथलीट है, तो हम देश का मान बढ़ा सकते हैं।
1: बहुत अच्छी बात कही आंचल आपने, क्योंकि ये कहा जाता है कि स्पोर्ट्स में, खासकर क्योकिंग और कैनोइंग जैसे खेल में, जैसा कि आपने बताया भी कि काफ़ी महंगे खेल हैं, इसमें इस पृष्ठभूमि के लोग कमतर, जो मध्यम वर्गीय या निम्न मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं, उनके लिए अवसर कम उपलब्ध हैं। और खासकर लड़कियाँ, जिनको माना जाता है कि वो अभी काफ़ी पीछे हैं इस क्षेत्र में, वो आगे बढ़ें, वो आप लोग देख के प्रेरित हों और अपना नाम रोशन करें, तो अभाव का बहाना नहीं रह जाता। तो भूमि, आप भी कुछ कहना चाहेंगी?
2: सबका अपना अलग अलग पैशन होता है। हमारा गेम है, किसी का कुछ और होगा, किसी का डांस होगा, किसी का सिंगिंग होगा, किसी का कुकिंग होगा, कुछ भी। हर चीज़ स्किल बेस्ट होती है अपनी अपनी जगह। बस एक ही चीज़ है कि मेहनत ही सफलता की कुंजी है। आप किसी भी फील्ड में रहो, कोई भी चीज़ करो, पढ़ाई करो, कुछ भी करो, लेकिन बस मेहनत करो, क्योंकि फील्ड चुनने से ही कुछ नहीं होता, उसमें सबसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि जब तक मेहनत नहीं रहेगी तो फिर वो स्किल भी किसी काम की नहीं रहेगी,
1: मेहनत करेंगे, आगे बढ़ेंगे और रास्ता अपने
2: अपने
1: आप
2: आप निकल
1: बनता
2: जाएगा।
1: चले जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे, आंचल और भूमि, क्योंकि जिस पृष्ठभूमि से निकल के आप लोग यहाँ तक पहुँची हैं, हम यही चाहते हैं कि आप न सिर्फ प्रयागराज, उत्तर प्रदेश, बल्कि देश का नाम रोशन करें और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम बनाएं। आप लोग हमारे स्टूडियो में आई, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद।
1: तो श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं इस सप्ताह के खेल समाचार। फुटबॉल में भारत ने ताशकंद में खेले गए क्वालिफाइंग मैच में बांग्लादेश पर 3-0 से जीत हासिल कर 20 वर्षों में पहली बार AFC अंडर 20 एशियाई कप के मुख्य टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई कर लिया। ग्रुप बी के अपने आखिरी क्वालिफायर मैच में डेनेई मेतेई लैशाम ने पहला गोल, विशाल यादव ने दूसरा गोल तथा सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी मोहम्मद अरबाश ने तीसरा गोल किया। AFC अंडर 20 एशियन कप अगले वर्ष 24 मार्च से 10 अप्रैल तक चीन में आयोजित किया जाएगा। बैडमिंटन में भारतीय जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने शेंजेन में आयोजित चाइना मास्टर्स में पुरुष युगल का खिताब जीत लिया। फाइनल मुकाबले में भारतीय जोड़ी ने चीन के हे जी टिंग और रेन जियांग यू को 11-21, 21-23 और 21-27 से हराकर चाइना मास्टर्स में भारत का पहला खिताब हासिल किया। दुबई में खेले जा रहे महिला T20 एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया। पाकिस्तान की टीम 18.1 ओवर में मात्र 55 रन पर ऑल आउट हो गई। भारत की ओर से युवा स्पिनर श्री चरनी और प्रेमा रावत ने 3-3 विकेट लिए। जवाब में भारत ने 8.4 ओवर में निर्धारित लक्ष्य 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया। शूटिंग स्पर्धा में भारतीय टीम जापान में इस महीने के अंत में शुरू होने वाले एशियाई खेलों 2026 से पहले भोपाल स्थित मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग एकेडमी में प्रशिक्षण शिविर में भाग ले रही है। इस दल में मनु भाकर, ईशा सिंह और ऐश्वर्य प्रताप सिंह जैसे शीर्ष निशानेबाज शामिल हैं। मेघालय में 2026 की हाफ मैराथन में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 11,000 से अधिक धावकों ने भाग लिया। 5वीं सोहरा इंटरनेशनल हाफ मैराथन 2026 का आयोजन मेघालय राज्य ओलंपिक संघ द्वारा किया गया। पिकलबॉल विश्व कप 2026 का आयोजन 30 अगस्त से 6 सितंबर 2026 तक वियतनाम के दा नांग में हुआ। ICC ने महिला चैंपियंस ट्रॉफी 2027 के नए मेजबान के रूप में भारत को मंजूरी दे दी है। 6 टीमों का यह टूर्नामेंट 14 से 28 फरवरी 2027 तक मुंबई और वडोदरा में खेला जाएगा। महान फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा कर दी है, जिससे अर्जेंटीना के लिए उनके 20 साल के कैरियर का अंत हो गया। उनके कैरियर में 1 विश्व कप जीत, 2 कोपा अमेरिका खिताब और देश के लिए रिकॉर्ड 207 मैच खेलना शामिल है। 39 वर्षीय मेसी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में अपने इस फैसले की जानकारी दी। मेसी ने कहा, यह फैसला उनके लिए बेहद मुश्किल था।

0: खासकर इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने पूरे करियर में राष्ट्रीय टीम और अर्जेंटीना के समर्थकों के साथ एक गहरा भावनात्मक जुड़ाव साझा किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अन्य दक्षिण अफ्रीकी संघ के नेताओं के साथ किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में आयोजित छठे नोमेड गेम्स के उद्घाटन समारोह में भाग लिया। भारतीय जूनियर हॉकी टीम ने चीन में आयोजित एशिया कप के पूल मैच में दक्षिण कोरिया को 7-3 के अंतर से हराया। क्रिकेट में दलीप ट्रॉफी 2026 का फाइनल मुकाबला ईस्ट जोन और साउथ जोन के बीच चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जा रहा है। ईस्ट जोन ने पहली पारी में 708 रनों का विशाल स्कोर बनाया है। ईस्ट जोन की ओर से कप्तान ईशान किशन ने 270 रन तथा कुमार कुशाग्र ने 101 रन बनाए। यूएस ओपन में एलेना रायबाकिना ने पूर्व यूएस ओपन चैंपियन नाओमी ओसाका को 6-1 6-4 से हराकर क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बनाई। टेनिस में भारत के करण सिंह ने इंडोनेशिया के बाली में आयोजित पुरुष विश्व टूर M15 में पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है। यह करण का चौथा और उनका 2026 सीजन का तीसरा खिताब है। हरियाणा के करनाल में रहने वाले चौथी वरीयता प्राप्त भारतीय खिलाड़ी ने कड़े मुकाबले वाले फाइनल में न्यूजीलैंड के पांचवी वरीयता प्राप्त खिलाड़ी इसाक ब्रेकऑफ को 7-5 7-6 से हराकर खिताब अपने नाम किया। विश्व तीरंदाजी पैरा सीरीज जिसका आयोजन गुजरात के अहमदाबाद में किया जा रहा है, शीतल देवी ने आज तीसरे चरण के तीसरे दिन महिला कंपाउंड व्यक्तिगत फाइनल में पहुंचकर भारत के लिए पदक सुनिश्चित कर लिया। भारतीय खिलाड़ियों के बीच हुए सेमीफाइनल में जम्मू की तीरंदाज ने सरिता को 145-143 से हराकर स्वर्ण पदक के लिए क्वालिफाई कर लिया। फाइनल में उनका मुकाबला कजाकिस्तान की आईजादा सिदान से होगा। सरिता के पास कांस्य पदक के मैच में चीन की वांग हुईटिंग से भिड़ने पर भारत के पदक तालिका में पदक जोड़ने का एक और अवसर होगा। इस प्रकार महिला के कंपाउंड इवेंट में भारत को एक पक्का पदक मिल गया और एक अन्य पदक अभी भी दौड़ में है, जिसमें विश्व नंबर एक शीतल शीर्ष स्थान पर नजर रखे हुए। आज के अंक में इतना ही। अगले सप्ताह हम फिर मिलेंगे एक नए अंक में। तब तक के लिए नमस्कार।
1: दर्पण। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेल दर्पण। प्रस्तुति हमारे प्रयागराज केंद्र की थी।
2: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। थोड़ी देर बाद होगा हमारा अगला कार्यक्रम।

एहसास की धूप छाओं में हवाओं के संग गूंजती है दिशाओं में रेडियो की तरंग। जुड़िए 1026 किलोहर्ट्ज़ और 100.3 एफएम आकाशवाणी प्रयागराज के साथ, धड़कन हर दिल की।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में प्रस्तुत है पंडित प्रेम कुमार मलिक का धमार गायन। राग है रागेश्री, बोल हैं कुंज बिहारी दो तेरो बलैया। आइए सुनते हैं पंडित प्रेम कुमार मलिक का धमार गायन।

राग रागी श्रीमें धमार गायन। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। 11 बजने को हैं, कुछ ही पलों बाद आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। समाचारों के लिए कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अंजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने अपनी फिनटेक यात्राओं को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। इसमें नवाचार और वित्तीय समावेशन को सबसे अधिक महत्व दिया जा रहा है। मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में उन्होंने कहा कि नई प्रौद्योगिकियां वित्तीय क्षेत्र में नई संभावनाएं खोल रही हैं।
1: 21वीं सदी का दूसरा क्वार्टर हमारे लिए और भी नई संभावनाओं लेकर आया है। एजेंटिक एआई, टोकनाइजेशन, क्वांटम, ऐसी टेक्नोलॉजीज फाइनेंशियल सेक्टर में नई संभावनाओं के द्वार खोल रही है। अब हमारे सामने चुनौती है इन संभावनाओं को वास्तविक इम्पैक्ट में कैसे बदले।
0: मोदी ने कहा कि भारत साइबर सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहा है।
1: हमें भारत में साइबर सिक्योरिटी को टॉप नॉच बनाना है। हमारी इंडस्ट्री के पास अपने इथिकल डेटा प्रोटेक्शन स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। हमें एक मजबूत फिनटेक रेगुलेटर इंडस्ट्री इनोवेशन इकोसिस्टम बनाना है और हमारे पास एक फिनटेक कंज्यूमर प्रोटेक्शन इंडेक्स होना चाहिए जिसके आधार पर हर कंपनी की पारदर्शी रेटिंग हो सके।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत ने अपनी फिनटेक यात्रा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। इसमें नवाचार और वित्तीय समावेशन को सबसे अधिक महत्व दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले महीने यूपीआई के 2400 करोड़ से अधिक लेन देन हुए। भारतीय यूपीआई अब 11 देशों में संचालित हो रहा है। श्री मोदी ने यूपीआई को फिनटेक क्षेत्र की बड़ी उपलब्धि बताया। श्री मोदी ने कहा कि भारत की 7.8% की विकास दर दुनिया को एक नया भरोसा दे रही है। प्रधानमंत्री ने बताया कि 3 दशक के लंबे इंतजार के बाद जापान ने भारत की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को BBB+ से बढ़ाकर A- कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। श्री मोदी ने पश्चिमी क्षेत्र के लिए विशेष माल ढुलाई गलियारे के 3 प्रमुख खंडों को राष्ट्र को समर्पित किया। इसके साथ ही माल ढुलाई गलियारे के संचालन का मार्ग प्रशस्त हो गया है। श्री मोदी ने कहा कि ये गलियारा विकसित भारत की जीवन रेखा है।
1: ये 21वीं सदी के भारत के लिए बहुत ऐतिहासिक कार्य संपन्न हुआ है। ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इस बात का साक्षी है कि बीते 12 साल में देश की काम करने की संस्कृति कैसे बदली है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरा है और अब अपनी उन्नत रेलगाड़ी और मेट्रो कोच का निर्माण कर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज 3 दिन की श्रीलंका यात्रा पर कोलंबो पहुंचे। रक्षा मंत्री रक्षा और समुद्री साझेदारी को मजबूत करने सहित कई मुद्दों पर बातचीत करेंगे। वे कोलंबो में भारतीय समुदाय से भी बातचीत करेंगे। रक्षा मंत्री के साथ रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को होने वाली ब्रिक्स बैठक के दौरान कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि इन बैठकों के दौरान रूस यूक्रेन संघर्ष सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि भारत युद्ध समाप्त करने के लिए किसी भी तरह की मदद करने के लिए तैयार है। नेपाल में आई भीषण बाढ़ पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने तुरंत मदद पहुंचाई और राहत बचाव और पुनर्निर्माण के प्रयासों में आगे भी सहयोग जारी रखेगा। उन्होंने बताया कि अब तक 7 विमानों के जरिए 95 टन राहत सामग्री नेपाल भेजी जा चुकी है। उन्होंने बताया कि मारे गए कई भारतीय नागरिकों की पहचान अब तक नहीं हो पाई है। श्री जायसवाल ने बताया कि भारत चीन सीमा मुद्दे पर लगातार संवाद कर रहे हैं। दोनों देशों के बीच वरिष्ठ सैन्य कमांडर स्तर की बैठक अरुणाचल प्रदेश के वाचा और चीन के दमाई में हुई है। रूस ने यूक्रेन संघर्ष को समाप्त करने के लिए भारत के शांति प्रयास